हमारे श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अलमास्टर जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026। सुबह के 5:53 और 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात 6:05 पर। कार्यक्रम पेश करेंगी रेनू भट्ट। 7:05 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर बबीता रावत के साथ, और 8 होगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। रेनू भट्ट लेकर आएंगे कार्यक्रम, और आप सुनेंगे 10:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम पूजा आनंद के साथ।

श्रोता सुनेंगे 11:05 पर बॉलीवुड ट्रेल्स, कंचन कानन आपके साथ होंगे और 12:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक और 1:05 पर कार्यक्रम होगा रेनबो हेल्पलाइन। शालिनी खंडेलवाल आपके लिए लाएंगी आशियाना कार्यक्रम 2:00।

श्रोता सुनेंगे रेडियो डॉक्टर 3 बजे हीना मौज के साथ, और 5:05 पर कार्यक्रम होगा सिटी लाइट। मैसेज मसाला मिक्स आप सुनेंगे 6:05 पर प्रवीण शर्मा के साथ, और वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम होगा 7:05 पर, पेशकश मनन ठकराल की रहेगी। और 9 बजे आप सुनेंगे आपकी याद आती रही प्रियंका त्रिपाठी के साथ ये कार्यक्रम। इसके बाद साथी सुनेंगे 10:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक, और 11 बजे आपका पसंदीदा कार्यक्रम होगा रंग महफिल। तो साथियों, ये थी नजर हमारे आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 6 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में अब समाचार होंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के दिल्ली चैनल यानी कि एफएम रेनबो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट सुप्रभात में। हमारा दिन खुशनुमा रहे, अच्छा रहे, इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। वो प्रयास हमारे हाथ में है कि कैसे हमें चीज़ों को आगे ले जाना है। बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बेहद खूबसूरत ट्रैक सोनू निगम और अलका याग्निक वसुंधरा की आवाज़ में।

ऑलराइट और जब हम प्रयास करते हैं ना और हम उन प्रयासों को सफल होते हुए पूरा होते हुए देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे जो प्रयास हैं वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं या कहीं ना कहीं कमी पड़ जा रही है क्योंकि रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आ रहे हैं, अच्छा दुख बहुत होता है उसमें, लेकिन हमें लगता है कि हमारे प्रयास थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। जब हमें एक प्रयास में, एक अटैम्प्ट में, दूसरे अटैम्प्ट में, तीसरे अटैम्प्ट में सफलता नहीं मिलती, सफलता मतलब जो चीज़ हमें लगता है कि ये चीज़ हमें मिल जानी चाहिए, हो सकता है जो चीज़ या जिस पड़ाव पर हम हैं, जिस स्टेटस पे हम हैं, वो दूसरे का सपना हो, लेकिन हमें चाहिए कि जो चीज़ हमारे लिए हमें उपयुक्त लगती है। अब ऐसे में जब हमें चीज़ें नहीं मिलती है ना या हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आता है तो हमें लगता है कि यार हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। अपने साथ वालों से हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं या फिर हम दूसरे की सक्सेस को या दूसरा जो चीज़ें अचीव कर चुका है उससे कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। जब ये कंपैरिजन शुरू हो जाता है ना वहाँ पर चीज़ें बहुत गड़बड़ा जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अपने पेस के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से उस जगह पे है और उस चीज़ को अचीव करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ना हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। व्यक्ति का स्टेटस क्या है, व्यक्ति को कितना सपोर्ट मिला है, व्यक्ति के पास और क्या क्या साधन रहे वो चीज़ अचीव करने के लिए, सब मैटर करता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ना हमें अपनी ग्रोथ को देखना चाहिए। लेकिन हमें चीज़ें ना बहुत ही इंस्टेंट चाहिए होती है, हमें चाहिए होता है कि बस हमने बोला और ये चीज़ हमें मिल जाए। और अगर ना मिल पाए एक दो बार में या तीन बार में, इन अटेम्प्ट्स में, इन प्रयासों में ना मिल पाए, तो कहीं ना कहीं हम ना दुखी हो जाते हैं, मन हार जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। मन हार जाते हैं, दिल हार जाते हैं, पर क्या करें, दिल ही तो है, दिल को भी बुरा लगता है। आप सुन रहे हैं सुप्रभात रेणु भट्ट के साथ।

दिल दिल ही तो है, और दिल को सब कुछ चाहिए होता है, उसे मनाना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है, लेकिन हमें हमारी परिस्थितियां पता होती हैं। और हम जब सफलता की कहानी पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो उस व्यक्ति के संघर्ष, उसको मिलने वाली सारी असफलताओं, उसको ये सामने आने वाली चुनौतियाँ और उसकी मेहनत जो है, हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हमें हमेशा ये सारी सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। किसी को इंस्टेंट सफलता नहीं मिलती। हम कहते हैं ना कि किसी सिंगर का गाना रातों रात हिट हो गया, वो ओवरनाइट स्टार बन गया, या किसी की फिल्म हिट हो गई, या किसी की बुक जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई है, या फिर इसका तो पहले ही अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो गया। किसी भी चीज़ को पाने के लिए ना, उसके पीछे का जो संघर्ष है, वो किसी को नहीं पता होता है। कितने संघर्षों पर आप चले हैं, कौन कौन सी चुनौतियाँ आपके सामने आई। व्यक्ति को सिर्फ उसका, अगर हम बाहरी दुनिया की बात करें, तो सिर्फ उसका जो रिजल्ट है उस पर वो रिएक्शन देता है, और उनके रिएक्शन को, क्योंकि आप उनको नहीं जानते, वो आपकी मेहनत नहीं जानते, आपके सामने आने वाली चुनौतियों को, ऑब्स्टेकल्स को नहीं जानते, तो उनकी बातों से अपने आप को डिमोरलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको सफलता नहीं मिलती है, लोग आपको आके कुछ भी बोल जाते हैं, तो व्यक्ति के सामने जो संघर्ष होते हैं ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये संघर्ष का अपना एक हम कह सकते हैं कि प्रभाव होता है। वो प्रभाव से व्यक्ति टूट भी सकता है, वो उस प्रभाव से व्यक्ति बहुत मजबूत भी हो सकता है। किस तरह से चीज़ों को लिया जाता है सामने जो आ रही, इस पर बहुत ज़्यादा बातें निर्भर करती हैं। आप सभी के लिए KK और वसुंधरा दास की आवाज़ में बेहद बेहद खूबसूरत ट्रैक,

अब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम ये जानते हैं कि जब हम बात करते हैं अपनी सफलता की, तो उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई होती हैं। एक लकड़हारा था जो नया नया उसने अपना काम शुरू किया था। जो राजा था उसके काम के प्रति लगन को देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित था। प्रोत्साहन पाकर उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और पहले ही महीने में उसने 18 पेड़ काट डाले।

तक खुश हुआ। अगले महीने भी उसने उतनी ही मेहनत की, लेकिन वो सिर्फ 15 ही पेड़ काट पाया। तीसरे महीने भी उसने पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन पेड़ काटने की संख्या जो है वो घटती जा रही थी। अब इस बात से वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। राजा उससे मिलने आता है और उसकी जो कमज़ोर उत्पादकता है उसके बारे में उससे बात करता है कि क्या हुआ कि अचानक से उसका जो आउटपुट है, उसका जो परफॉर्मेंस है, वो गिरने लग गया है। और उसने कहा, यानी कि लकड़हारे ने राजा को कहा कि अब लगता है कि शायद उसकी ताकत कम हो गई है या फिर काम करने के लिए वो बूढ़ा हो गया है। उसकी बात राजा सुनता है और उससे पूछता है, तुमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी कब तेज की थी? और ये जानकर उसे आश्चर्य होता है कि इतने महीनों में उसने एक बार भी अपनी कुल्हाड़ी को तेज नहीं किया था, और यही एकमात्र कारण था जिसकी वजह से वो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहा था। काम तो वो कर पा रहा था, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो नहीं आ पा रहा था। और इस बात को जब वो जानता है तो उस बात की अहमियत को समझता है कि काम तो आप अपनी मेहनत से कर रहे हैं, जितना आपकी अंदर लगन है उस लगन से आप कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ से आप कर रहे हैं उस चीज़ को भी तैयार रखने की ज़रूरत है। यानी कि जो आपके आसपास आपके जो संसाधन हैं वो भी बहुत इफ़ेक्ट करते हैं आपकी सफलता को। तो इस वजह से उसने अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ किया, उसका काम फिर से सही और अच्छा हो गया। तो लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन की प्राथमिकताओं में संतुलन भी बनाए रखना चाहिए और उन सभी चीज़ों को देखना चाहिए जो कि हमसे जुड़ी हुई हैं, जो हमें उस लक्ष्य को पाने में हेल्प करती हैं, जिनके माध्यम से हम वो लक्ष्य प्राप्त कर पा रहे हैं, उनका भी उतना ही तेज़ होना, उतना ही डेडिकेटेड होना ज़रूरी है जितना कि हम अपने लक्ष्य को लेकर हैं। जब ये सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं ना, तब देखिए जो भी सफलता है, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, कितने अच्छे से आपके सामने आती है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
5: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सुप्रभात आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर रेणु भट्ट के साथ, और आप सभी का दिन शुभ हो, हम यही चाहते हैं और हम पूरे प्रयास करते हैं। हम बार बार ये बात रिपीट करते हैं और ये बात हमें रिपीट करनी भी चाहिए, क्योंकि हमें अपने लिए अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। आप हमारे लिए क्या बोलना चाहते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको मेल करना है feedback@fmrainbow.com पर, feedback@fmrainbow.com पर आपको हमें मेल करना है। मेल करके बताना है कि क्या बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। आप बिंदास मेल करें, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है हमारा चैनल सुनने में तो आप वो भी बता सकते हैं, और आप हमसे जुड़े रह सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी। और जिस कार्यक्रम में मैसेजेस लेने का मौका मिलता है उसमें आपके मैसेजेस ज़रूर शामिल किए जाते हैं, तो आप बिंदास हमसे जुड़ सकते हैं। और अभी आप इंजॉय कर सकते हैं बेहद खूबसूरत ट्रैक जो हम आप सभी के लिए लेकर आए, के और पलक मुचाल की आवाज़ में।

तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो एफएम रेनबो पर सुन सकते हैं पूरे दिन भर। अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:05 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर बबीता रावत के साथ, और उसके ठीक 1 घंटे बाद यानी कि 8 बजे मैं आऊँगी आपसे मिलने गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे घंटे में। बबीता रावत आपके लिए ढेर सारे मेलोडीज लेकर आएंगे, ट्रैक्स लेकर आएंगे, दिल के तराने गाने नए पुराने में। ठीक 9 बजे का समय है, आप सुन सकते हैं और ज़रूर सुने आप। और 10:05 पर आप सुनेंगे मैचलेस म्यूजिकार पूजा आनंद के साथ। बॉलीवुड की सभी ताज़ा तरीन हलचल लेकर आएंगी कंचन कानन 11:05 में बॉलीवुड ट्रेल्स पर। और 12:05 पर आप सुन सकते हैं वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम प्ले इट कूल, पूजा रहेंगे आपके साथ। और कंचन दोबारा मिलने आएंगे आपसे 1:05 पर रेनबो हेल्पलाइन लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं स्लीप प्रॉब्लम्स एंड कॉन्स्टेंट फटीग कॉजेज एंड हेल्थ इफेक्ट्स, इस टॉपिक पे हमारे एक्सपर्ट रहेंगे डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला। आप MBBS हैं, MD रेजिडेंट GTB हॉस्पिटल से। आशियाना लेकर आने वाली है शालिनी खंडेलवाल, 2 बजे का समय रहेगा। और आप 3 बजे सुन सकते हैं रेडियो डॉक्टर, हमारा टॉपिक है रेयर डिजीजेस एंड डेंटल हेल्थ। एक्सपर्ट्स रहने वाले हैं डॉक्टर नीरज गुलाटी, आप डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हरमीत सिंह डेंटल स्टाफ सर्जन डॉक्टर RML हॉस्पिटल। अल्फा जन लेकर आएंगी शालिनी खंडेलवाल, 4:05 का समय रहेगा। और हिना मौज के साथ आप सुनेंगे सिटी लाइट्स 5:05 पे। 6:05 के समय मैसेज मसाला मिक्स का तो जो भी मैसेजेस और बातें आप शेयर करना चाहते हैं अपने अपनों के साथ आप ज़रूर मैसेज करें। और मनन ठकराल रहेंगे कंट्री कार्निवल में 7:05 के समय है म्यूजिक मस्ती लेकर। दोबारा प्रवीण शर्मा आपसे मिलने आएंगे 8 बजे, आपकी याद आती रही में रहेंगे प्रियंका त्रिपाठी। और कार्यक्रमों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, प्रियंका ही लेकर आएंगी रंगे महफिल 11:05 पर। हम चाहते हैं आप इन तमाम प्रोग्राम से हमारे साथ बने रहें, इसके साथ ही आप 24x7 हमारे साथ रहें साल के 365 दिन। आप बस हमें ही सुनते रहें, हमारे साथ बने रहें, जो भी बात आप हमसे कहना चाहते हैं आप हमसे साझा करते रहें। और अभी फिलहाल सुने बेहद खूबसूरत ट्रैक सोनू निगम की आवाज़ में आप सभी के लिए।

पर अगर हम अपनी लाइफ में जब पीछे देखते हैं तो पीछे देख के चाहे हमारी लाइफ जैसी भी हो, हमें अपने दिल में ना ग्रजेस नहीं रखने चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। अपनी स्टोरी को, अपने जिस चैप्टर पे हम हैं, जिस जगह पे हम हैं, उसे दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली हो, सपोर्ट मिला हो, इसलिए हम इस लेवल पे हैं। हो सकता है सामने वाले को उतनी चीज़ें नहीं मिली हो, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि सामने वाले को बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली हो और हमें उतनी सपोर्ट में ना मिली हो। तो जो भी आपको मिलता है, जो भी हमारे पास है, उसमें खुश रहना चाहिए। लाइफ में जब हम पीछे देखें ना, तो बस हमें ये देख के खुश रहना चाहिए कि क्या चीज़ें हमने सीखी हैं। जितनी भी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, जितनी भी असफलताएं आई हैं, सफलताएं आई हैं, जो भी हमने मेहनत की है, प्रयास किए, उससे हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, जीवन को जीना है, तो हमें आगे देखना चाहिए। आगे यानी कि भविष्य में, और आगे हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाएं। इतना प्रयास तो कर ही सकते हैं।

करेंगे हमारा जीवन उतना ही अच्छा बेहतर होगा। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ना करें, करें जहाँ पर आपको लगता है कि जायज़ है, लेकिन कई बार चीज़ें होती हैं ना वो बदलती नहीं है, हम जितने प्रयास कर लें वो वैसी ही रहती है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होती, वो हमें अपने प्रयास से हमें खुद को नहीं ठीक करना होता, कई बार सामने वाले को हमें लगता है कि ये चीज़ ठीक हो जानी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो आप उसके चक्कर में आप अपना दिन मूड ख़राब ना करें, अपने प्रयासों को ना छोड़ें। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है बदलना, उसके एक्सेप्ट कर लेना बहुत ज़्यादा सही ऑप्शन है। चीज़ों को एक्सेप्ट करें, लाइफ को बहुत सिंपल रखें, जितना सिंपल आप रख सकते हैं लाइफ को ना, उतनी ही सिंपल लाइफ होनी चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। ग्रजेस ना रखें अपने मन में, जो चीज़ आपको मिल गई, जो आपकी है वो आपको ज़रूर मिलेगी, इस बात का विश्वास रखें। और इसी बात के साथ अब मैं रेणु भट्ट ले रही थी आप सभी से अनुमति, जल्द मिलूंगी ठीक 1 घंटे बाद, 1 घंटे 5 मिनट बाद मिलूंगी आपसे गुड मॉर्निंग डेली NCR के दूसरे घंटे में। अपना ख्याल रखें, अपना अपना का ख्याल रखें, गुड बाय एंड टेक केयर, और बने रहे हमारे साथ यानी कि FM रेनबो पर। सुप्रभात सुन रहे थे आप, लेकिन हम आपके लिए ढेर सारे कार्यक्रम लेकर आए हैं, और हमारे साथ बने रहें क्योंकि एंटरटेनमेंट का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म होने वाला बिल्कुल नहीं है।

भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोतेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोतेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 1 वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मेरे साथ, मैं हूं आज आपके साथ बबीता रावत। और जब दिन की शुरुआत होती है तो हम दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, बाहर के मौसम का हालचाल लेके। तो बता दूं मैं आपको कि अर्ली मॉर्निंग जब मैं यहां आ रही थी तो सूरज ने अपनी जो तीखी वाली किरणें हैं वो बिखेर दी हैं, यानी कि गर्मियां प्रचंड रूप में आ चुकी हैं। और इसी प्रचंड रूप की गर्मियों के साथ साथ एक उम्मीद तो ये भी बनती है कि हाँ, अब बरसात होने को है। कुछ ही दिन की बात है, बस एक दो दिन में ही बारिश का मौसम भी बदलता हुआ नजर आ जाएगा। अभी फिलहाल गानों के साथ हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपके साथ बबीता। प्रोग्राम है बॉलीवुड का बहुत कुछ, बहुत कुछ। जी हाँ, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

बहुत से ख्याल आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, हाँ बहुत से विचार भी आपके दिमाग में आ रहे हैं क्योंकि दिन की शुरुआत हो चुकी है। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर से और मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ। वैसे जब भी हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारे जो काम में है, जो हमारे व्यवहार में है, वो हमारी अपनी शख्सियत को साफ झलकाती है। और ऐसे ही अगर हम बात कहें तो अच्छे संस्कार और अच्छे व्यवहार ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है जो जिंदगी भर हमारे काम आती रहती है। क्यों ऐसा है ना? वैसे जिंदगी की बात कहें तो जिंदगी का आज का दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है 18 मई 2026, सोमवार का दिन, शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083, ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि 5:55 शाम तक रहेगी और उसके बाद चेंज हो जाएगी तृतीय तिथि में। वैसे सूरज ने 5:30 सुबह सुबह अपनी किरणों को बिखेर दिया है और जब बात की जाती है सनसेट की तो आज शाम को 18:57 पर एक लंबे दिन के बाद सूर्यास्त होगा। टेम्परेचर कहें तो मिनिमम 31 से 32 डिग्री और मैक्सिमम 44 से 45 डिग्री होने वाला है और हवाओं की रफ्तार भी आज थोड़ी सी तेज़ होगी 21 किलोमीटर पर आर की, और ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो 24% होगी इस वक्त ह्यूमिडिटी आज के दिन। AQI 147 है इस वक्त दिल्ली का। तो भाई मौसम तो इतना कूल कूल नहीं है लेकिन हमारे गानों के साथ ये कूल कूल ज़रूर हो जाएगा।

0: और अब आप सुनिए आकाशवाणी एट 90।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओं, इस अंक में हम जानेंगे पूर्वोत्तर भारत के पहले रेडियो स्टेशन के बारे में। 1 जुलाई 1948 को पूर्वोत्तर भारत में रेडियो के एक गौरवशाली सफर की ऐतिहासिक शुरुआत हुई। शिलांग और गुवाहाटी में एक साथ ऑल इंडिया रेडियो के ट्विन स्टेशन का जन्म हुआ। गुवाहाटी केंद्र ने अपनी सेवाओं का आगाज उजान बाजार घाट पर स्थित एक खूबसूरत कमिश्नर बंगले से किया था। इन केंद्रों का उद्घाटन शिलांग में तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई और गुवाहाटी में मौलाना मोहम्मद तैबुल्ला द्वारा किया गया। 8 अप्रैल 1989 को इंटीग्रेटेड नॉर्थ ईस्ट सर्विस INES की शुरुआत हुई, जिसने पूरे पूर्वोत्तर को एक साझा प्रसारण मंच से जोड़ दिया। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

बहुत सारी बातें आपको बतानी हैं आज के दिन की खास, क्योंकि आज का दिन बहुत है खास भारत के लिए और विश्व इतिहास में भी। जब इतिहास की बात आती है तो हम जरूर से बताते हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में आपको।

पुंडलिक का मुंबई में प्रीमियर हुआ था। वहीं भारत के लिए आज गर्व का दिन भी है, क्योंकि भारत ने 1974 में राजस्थान के पोखरण में अपना पहला सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। इस ऐतिहासिक ऑपरेशन को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था, और जिसके बाद भारत परमाणु संपन्न देशों की कतार में शामिल हो गया था। जो घटनाएं हैं ना, वो चिरकाल तक यूं ही इतिहास में दोहराई जाएंगी, क्योंकि भारत का इतिहास ही गौरवशाली रहा है और आगे भी रहता आएगा। यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर प्रोग्राम में मैं हूं बबीता आपके साथ।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें।

0: विजिट करें registration.touristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है आपके लिए गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ। आज के दिन की खास बात ये भी है कि आज है वर्ल्ड म्यूजियम डे, और वर्ल्ड म्यूजियम डे हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। और जब इस दिन की बात की जाती है तो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, शिक्षा को बढ़ावा देने और इनके बीच का जो अंतर है, सांस्कृतिक संवाद है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए, म्यूजियम्स को इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करने के लिए, जी हाँ, म्यूजियम्स के जो इम्पोर्टेंस है उसको अवेयरनेस, उसकी अवेयरनेस के लिए ये दिन समर्पित है। और भारत की बात की जाए तो भारत में भी बहुत सारे म्यूजियम संग्रहालय हैं, और जब भारत की बात आती है तो यहाँ सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो है कोलकाता में, और इसका नाम है भारतीय संग्रहालय। म्यूजियम की बात की जाए तो म्यूजियम बीते समय के इतिहास, संस्कृति और क्रिएटिविटी को हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए एक सौगात के रूप में है, और जिसे हमें किसी भी देश की जो संस्कृति है उसकी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जब जानकारी की बात की जाती है तो बहुत सारी बातें इन बातों में छुपी हुई होती हैं। जब हम किसी भी म्यूजियम में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर जो क्रिएटिविटी होती है, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में, उस जगह की सौगात हमें मिलती है उन म्यूजियम्स में। तो वर्ल्ड म्यूजियम डे का जो उद्देश्य है वो म्यूजियम की सुरक्षा को देना है, और जिससे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, वो बाउंड्री के बीच बहुत मजबूत बंधन में बनी रहे। फिलहाल अभी ये गाना आप सभी लोगों के लिए, और भी बहुत कुछ है मेरे पास, सुनते रहिए मेरे साथ आकाशवाणी रेनबो।

0: कि मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी बातें अभी हैं हमारे पास बताने के लिए, तो बताते चलें। आज के दिन हम याद करते हैं मुकुंद दास जी को, जो भारत के बांग्ला भाषा के कवि और गीतकार, संगीतकार और देशभक्त के रूप में जाने जाते हैं, और आज उनकी पुण्यतिथि है। इन्होंने ग्रामीण स्वदेशी और आंदोलन के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी उत्कृष्ट कृतियों में मातृ पूजा है और इसका प्राथमिक विषय देशभक्ति और स्वतंत्रता है। और भी बातें होंगी आपके साथ, लेकिन अब एक छोटा सा ब्रेक।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में, मैं बबीता रावत आपके साथ। और जब आज के दिन की बात आती है तो आज के दिन हम कृष्णा पुट्टाभी जोईस जी को भी याद करते हैं। आज इनकी पुण्यतिथि है। कृष्णा पुट्टाभी जोईस भारत के जाने माने योगाचार्य थे जिन्होंने अष्टांग विन्यास योग नाम की योग शैली का विकास किया था। इसके अलावा पंचानन महेश्वरी जो कि एक सुप्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक थे, इन्हें भी हम याद करते हैं। इन्होंने एंजियोस्पर्म्स के टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन की टेक्निक को के जन्मदाता है ये। और इन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स बुक लिखी। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। और इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी ने इन्हें 1958 में बीरबल सहानी पदक से सम्मानित किया। तो ये सारी बातें हैं आज के लिए। फिलहाल अभी बातें और भी होंगी। स्पोर्ट्स पल्स का समय हो रहा है। अगले ही गाने के बाद आप इस प्रोग्राम को भी इंजॉय करेंगे।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
1: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
2: हिस्ट्री मेड इन टैम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
3: स्पोर्ट्स पल्स
4: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों, शिवेंद्र का प्यार भरा नमस्ते स्वीकार कीजिए। स्पोर्ट्स पल्स का एक और संस्करण लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। 13:30-14 मिनट का समय मिलेगा और जैसा हम हमेशा कहते हैं, स्पोर्ट्स पल्स खेल दुनिया की हर धड़कन को करीब से, शिद्दत से, मोहब्बत

से महसूस करने की हमारी कोशिश का नाम है स्पोर्ट्स पल्स। खेल दुनिया में तमाम गतिविधियां चल रही हैं, रोमांचकारी गतिविधियां चल रही हैं। इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल के नाम से जिसे हम जानते हैं टूर्नामेंट, वो अपने बिजनेस एंड की ओर अग्रसर है और इनफैक्ट खिताब की दौड़ में जो टीमें बनी हुई हैं उनमें कुछ टीमें हैं जिन्होंने अब अंतिम पायदान की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। और आरसीबी जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, मौजूदा चैंपियन है, वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में भी कामयाब हो चुकी हैं। आईपीएल के बारे में बात करेंगे। कल दो मैचेस खेले गए थे, पंजाब और आरसीबी के बीच मुकाबला हुआ था धर्मशाला में, और दिल्ली और राजस्थान रॉयल्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर मैच खेला गया था, जहां पर बड़े इंतजार के बाद दिल्ली ने जीत दर्ज की। और इसके अलावा बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी थाईलैंड ओपन में अपनी चुनौती पेश करते हुए नजर आ रहे थे। अन्य भारतीय खिलाड़ी भी थे, लेकिन सबसे आगे खिताब की दौड़ में जो जोड़ी पहुंची थी या जो खिलाड़ी पहुंचे थे वो थे सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। एक और खास बात यह है कि ये जो दोनों खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट पहले भी दो बार जीता हुआ था 2019 में और 2024 में। ये भी एक संयोग है कि अंतिम बार इस जोड़ी ने, सात्विक और चिराग ने, जो कोई खिताब जीता था वो था थाईलैंड ओपन ही। और थाईलैंड ओपन के फाइनल में एक संयोग की बात है कि सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को ये जो सुपर 500 टूर्नामेंट था उसके फाइनल में रविवार को यानी कल इंडोनेशिया के लियो रोली कर्नांडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से 12-21, 23-25 से हार का सामना करना पड़ा। दुनिया के चौथे नंबर की भारतीय जोड़ी है सात्विक और चिराग। 4 चैंपियनशिप पॉइंट बचाए इस जोड़ी ने। 53 मिनट तक चला खिताबी मुकाबला। सीजन में पहला फाइनल भारतीय जोड़ी खेल रही थी सात्विक और चिराग की जोड़ी, लेकिन इस हार के बाद इस सत्र में उनका स्वयं का खिताब जीतने का इंतजार और बढ़ गया है। वैसे हम आपको बता दें, पहले भी स्पोर्ट्स पल्स में हम जिक्र कर चुके हैं कि वर्ष 2025 भारतीय बैडमिंटन के लिए कोई बहुत बेहतरीन खुशनुमा साल नहीं रहा था, क्योंकि इंडिविजुअल टूर्नामेंट में जूनियर वर्ल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन ऑफकोर्स हुआ था, वो गुवाहाटी में हुआ था। वहां भारत ने लंबे अंतराल के बाद मेडल जीते थे, वो टीम चैंपियनशिप थी। लेकिन इंडिविजुअल इवेंट में आयुष शेट्टी ने यूएस ओपन जीता था साल की शुरुआत में, पिछले साल की हम बात कर रहे हैं। और साल खत्म होते होते लक्ष्य सेन ने यूएस ओपन की जो सफलता थी आयुष शेट्टी की उसको एक तरीके से दोहराया था और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता था। उसके बाद इस बार ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट भी भारत के लिए काफ़ी खुशनुमा रहा, लेकिन जो एक टाइटल जीतने वाली बात है वो देविका सिहाग अकेली ऐसी भारत की खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस साल जो BWF सर्किट है जिसमें सुपर 100, सुपर 300, सुपर 500, सुपर 1000 जैसे टूर्नामेंट आते हैं, सुपर 750 टूर्नामेंट आते हैं, देविका सिहाग ने अकेला इंडिविजुअल टाइटल जीता है। और एक जोड़ी के तौर पर सात्विक और चिराग थाईलैंड ओपन में खिताब के नज़दीक पहुंचे थे, लेकिन संयोग की बात है कि वो खिताब से दूर हो गए। रैकेट गेम्स की बात को ही जारी रखते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है और बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 24 मई से यह टूर्नामेंट शुरू होने वाला है पेरिस में रोला गैरो की लाल बजरी पर। यानी अगले सप्ताह जब हम आपके पास आएंगे तब फ्रेंच ओपन के बारे में जरूर विस्तार से बात करेंगे, वहां क्या कुछ हो रहा है। लेकिन एक खिलाड़ी है जो कि फ्रेंच ओपन के खिताब की दौड़ में इस समय सबसे आगे नजर आ रहे हैं और उनका नाम है इटली के यानिक सिनर। यानिक सिनर ने इतिहास रचते हुए इटालियन ओपन 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। रोम के प्रतिष्ठित फोरो इटालिको में खेले गए फाइनल मुकाबले में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को लगातार सेटों में 6-4, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ ही सिनर ने एक नया इतिहास रचा है। पिछले 50 साल में यानी आधी शताब्दी में इटालियन ओपन जीतने वाले वो पहले इटालियन मेल टेनिस प्लेयर बन गए हैं। इससे पहले 1976 में एड्रियानो पनाटा ने यह खिताब जीता था। एक और खास बात, नोवाक जोकोविच के खास रिकॉर्ड की बराबरी भी की है यानिक सिनर ने। उनकी ये जीत सिर्फ घरेलू खिताब तक ही सीमित नहीं रही, टेनिस इतिहास की एक और बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की। नोवाक जोकोविच के बाद वो ऐसे दूसरे खिलाड़ी बने हैं यानिक सिनर जिन्होंने सभी 9 ATP मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट जीते हैं, मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट जीत लिए हैं। जोकोविच ने यह उपलब्धि 2018 में हासिल की थी। 24 साल के सिनर ने बहुत ही कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल कर ली है। लगातार 29वां मैच जीता, शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। क्ले कोर्ट पर इस साल उनका रिकॉर्ड हो गया है 17-0 का।

0: आखिरी हार जनवरी इनफैक्ट फरवरी 2026 में कतर ओपन में जब जैकब मेंसिक ने यानिक सिनर को पराजित किया था, तब आखिरी मैच हारे थे। 17 मैच लगातार क्ले कोर्ट पर जीत चुके हैं। और एक और संयोग है साथियों कि यानिक सिनर केवल फ्रेंच ओपन अकेला ऐसा ग्रैंड स्लैम है जिसको अभी तक जीत नहीं पाए हैं। और ऑफकोर्स इस बार तो उनकी चुनौती बहुत ही मजबूत लग रही है, सबसे बड़े दावेदार वो नजर आ रहे हैं फ्रेंच ओपन जीतने के। और जब उन्होंने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता, खिताब जीता, उसके बाद उन्होंने फ्रेंच ओपन की ओर भी इशारा किया। आइए सुनते हैं जीत के बाद कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे इटली के यानिक सिनर। इटालियन ओपन 50 साल के बाद इटली के किसी खिलाड़ी ने जीता है और वो है यानिक सिनर।
1: Started very well. A lot of tension from my side. If it turns out as a winner, also as a loser today, I witnessed something new for me today, where I know what's really on the line. And you know, winning here as an Italian in Italy, it means a lot to me. And it was a really important day for us, also in doubles vision. You know, with Simone and Andrea, and yeah, so we are very happy to make Italian people as proud as we can. And also from my side, yeah, the last tournaments I've played, incredible. No, so now most important is to rest up a couple of days and not think about tennis, not think about anything else, and recover physically, and then hopefully be ready for Paris.
0: यह उम्मीद है कि पेरिस के लिए पूरी तरीके से स्वस्थ होकर के कोर्ट पर उतरेंगे यानिक सिनर। और कार्लोस अल्कराज ने पहले ही संकेत दे दिया था, बता दिया था, इशारा कर दिया था कि वो फ्रेंच ओपन में मौजूद नहीं रहेंगे। तो हालांकि चुनौतियां तो मिलेंगी यानिक सिनर को, लेकिन खिताब के सबसे बड़े दावेदारों में वो शामिल होंगे। और सिनर हालांकि कह रहे थे कि नॉट थिंक अबाउट टेनिस अगले कुछ दिनों के लिए, लेकिन ऐसा संभव तो नहीं लगता। एक ऐसा खिलाड़ी जो लगातार टेनिस कोर्ट पर अपनी उपलब्धियां अर्जित करता रहता है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि फ्रेंच ओपन में एकमात्र जो ग्रैंड स्लैम उनकी किटी से, उनकी झोली से अभी अटका हुआ है, कहीं बाहर पड़ा हुआ है, उसको वो 2026 में अपने कब्जे में खींच करके ले आएंगे। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रोला कैनो की लाल बजरी पर जो 24 मई से पेरिस में शुरू हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी से वापस आते हैं।
2: इस समय आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
0: बहुत बहुत स्वागत आपका स्पोर्ट्स पल्स में। एक बार फिर से चलते हैं आईपीएल के क्रिकेट मुकाबले की ओर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स को हराकर प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली है। टीम 13 मैचों में 18 पॉइंट्स के साथ टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। आरसीबी अब लीग स्टेज में टॉप 2 से बाहर नहीं हो सकती है और डिफेंडिंग चैंपियन मौजूदा चैंपियन है। दूसरी ओर पंजाब किंग्स को लगातार छठी हार मिली, जिससे टीम के नॉकआउट स्टेज में पहुंचने के चांस कम हो गए हैं। और कल एक और मैच खेला गया था, दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल को हराकर एक स्थान की छलांग लगाई है। टीम 12 पॉइंट्स के साथ सातवें पायदान पर पहुंच गई है। रविवार को जो मुकाबला हुआ उसमें ऑफकोर्स दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया अरुण जेटली स्टेडियम में। दिल्ली में राजस्थान ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 193 रन बनाए। दिल्ली ने 194 रन का टारगेट 19 ओवर और 2 गेंद में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। राजस्थान की लगातार तीसरी हार रही। इस हार के बाद राजस्थान के प्लेऑफ में पहुंचने का इंतजार लंबा हो गया है, लेकिन दिल्ली की उम्मीदें अभी कायम है। दिल्ली को तेज शुरुआत दी अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने। राहुल ने 42 गेंदों में 56, पोरेल ने 31 गेंदों में 51 रन बनाए। और दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने 18 गेंदों में नाबाद 34 रन बनाकर टीम को संभाले रखा। आखिर में आशुतोष शर्मा ने 5 गेंदों में 18 रन बनाए, एक चौका एक छक्का लगाया और दिल्ली को जीत दिला दी। तो जाहिर सी बात है कि जीत बहुत ही कहते हैं जैसे नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। और अक्षर पटेल जो टीम का नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली कैपिटल्स का, उन्होंने जीत को कैसे शब्द दिए, आइए सुनते हैं।
3: घर पे जीतते तो बहुत ही अच्छा लगता है और अगर लगातार इतना हारने के बाद जब जीते तो और भी स्पेशल लगता है। एंड लास्ट मैच था सीजन का होम में, तो आई थिंक बहुत ही स्पेशल है। एंड यू नो खुशी होती है जब घर पे जीतते हैं। जब भी 3-4 मैच हम हारे, आई थिंक वो क्लस्टर में विकेट गिर रहे थे, तो आज वो बेटर लगा कि यू नो कि जब भी विकेट गया उसके बाद पार्टनरशिप हुई एंड अंत में गेम फिनिश किया।
0: अक्षर पटेल जीत को शब्द देते हुए, दिल्ली कैपिटल्स ने कल का मुकाबला जीता। मिशेल स्टार्क टीम की जीत के नायक रहे। बल्लेबाजों ने भी योगदान दिया, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला मिशेल स्टार्क को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने 4 विकेट हासिल किए और कुल मिलाकर के 40 रन दिए। और इनफैक्ट मिशेल स्टार्क ने कल एक ही ओवर में 3 विकेट हासिल किए, जिसने मैच का रुख पलट दिया। ये है प्लेयर ऑफ द मैच मिशेल स्टार्क।
4: We had different wickets throughout the time we played here in Delhi. Didn't bowl too bad in the power play, but they got away to a good start, and then we adjusted really.

0: well, and I think the rest of the bowling innings we brought it back pretty well towards the end there, and then a total we thought we could chase down, and KL's been doing that all season for us, which is fantastic. And then to get the 2 points and finish off home side of the draw with a win is always nice.
1: जहां जीत के साथ होम ग्राउंड पर यानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर दिल्ली कैपिटल्स ने अपने मुकाबलों का समापन किया है, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक और ऐसी टीम है जो कि इस समय बेहतरीन फॉर्म में चल रही है। प्लेऑफ के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। रविवार को पहले मैच में पंजाब किंग्स को टीम ने 23 रन से हराया। धर्मशाला में बेंगलुरु ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की। 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए डबल नेल्सन। जवाब में पंजाब 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सके। टीम का नेतृत्व कल कर रहे जितेश शर्मा रजत पाटीदार की जगह पर। आरसीबी के कप्तान रजत शर्मा के स्थान पर जितेश शर्मा ने सक्षम नेतृत्व दिया टीम को। ये हैं जितेश शर्मा।
2: All control, I think, in the batting and the bowling, we were in control. We were not under pressure, frankly speaking. We were like control. We know what we want to do on this wicket because we batted on that, and the batters have given a very good feedback what is working on that wicket. We planned particularly for a particular batsman and we were executing that properly.
1: तो सब कुछ उम्मीद के मुताबिक चल रहा है, ऐसा मानना है जितेश शर्मा का, जो कि कल रजत पाटीदार की जगह पर टीम को नेतृत्व कर रहे थे, टीम को लीड कर रहे थे, और आरसीबी ने एक टीम परफॉर्मेंस की बदौलत कल का मुकाबला जीता। और कल इस मुकाबले में यानी आरसीबी और पंजाब के बीच में जो मैच हुआ, वहां पर मैन ऑफ द मैच बने वेंकटेश अय्यर, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की। 73 रन बनाए, 40 गेंदों का सामना किया, 8 चौके 4 छक्के उसमें शामिल थे। वेंकटेश अय्यर दरअसल वो खिलाड़ी हैं जिनको बहुत ज्यादा स्टार्ट टीम में मिला नहीं और आरसीबी की ओर से, और इनफैक्ट वो पहले केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला करते थे, लेकिन कल का मैच जीतकर और मैन ऑफ द मैच जीतकर बहुत प्रसन्न थे वेंकटेश अय्यर।
3: Technically, it's my second game. I've been a part of the playing 11, and today's the first time I like properly got to bat. So that's the more pleasing thing than getting a man of the match and also 2 points. So really happy. It's a very professional setup. The cricket part of it, management, it's just unbelievable. So you've spent a lot of time at KKR. So yeah, there will be an emotional bond, but I've really felt at home here.
1: वेंकटेश अय्यर, जिन्होंने कल मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता, और जैसा हमने जिक्र किया था कि पहले केकेआर के लिए खेला करते थे, बहुत ज्यादा स्टार्ट आरसीबी में मिले नहीं, लेकिन कहते हैं ना, जब मौका मिले तो चौका मारा जाए, तो वेंकटेश अय्यर ने कल वही किया। फुटबॉल की बात कर लेते हैं। फुटबॉल में इंग्लिश प्रीमियर लीग में बहुत ही दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कल नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3-2 से हरा दिया। इसके साथ ही उन्होंने अगले साल के चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया। ब्रेंटफोर्ड और क्रिस्टल पैलेस के बीच मुकाबला 2-2 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। एवर्टन घरेलू मैदान पर सन्दरलैंड से 1-3 से हार गए। न्यूकासल ने वेस्टहैम को पराजित किया 3-1 से। एस्टन विला ने विला पार्क यानी अपने घरेलू मैदान पर लिवरपूल को हराया 4-2 से। हालांकि अभी जो टाइटल है उसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद यही है कि आर्सेनल जिस तरीके से खेलती हुई नजर आ रही है, बहुत ज्यादा उनके लिए मुश्किलें नहीं होनी चाहिए, बशर्ते वो अपने बाकी बचे हुए मैचेस में खराब प्रदर्शन करें और मैनचेस्टर सिटी को मौका दे दें। मैनचेस्टर सिटी ने एफ ए कप का खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने चेल्सी को 1-0 से हराया। एंटोन सेमेन्यो ने टीम की ओर से एकमात्र गोल किया। तो सिटी के पास सीजन में ट्रिबल का मौका है, क्योंकि एफ ए कप जीत चुके हैं, लीग कप भी जीत चुके हैं, और अगर सब कुछ उनकी उम्मीद के मुताबिक जाता है तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब भी जीत सकते हैं। बर्थडेज की बात कर लेते हैं। आज फ्रेड पेरी जाने माने टेनिस खिलाड़ी थे, अपना बर्थडे मना रहे हैं। हिम्मत राय गोल्फर, उनका बर्थडे है 19 मई को। मनदीप झांगरा, एंड्रिया पिरलो जाने माने फुटबॉलर, अपना बर्थडे मनाएंगे 20 मई को। अंजुम चोपड़ा का बर्थडे होगा, जो कि भारत की पूर्व कप्तान हैं, क्रिकेटर रही हैं। सारा टेलर इंग्लैंड की क्रिकेटर, उनका बर्थडे होगा 21 मई को। सनावे थॉमस भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी, अपना बर्थडे मनाएंगे। फिलहाल कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त। शिवेंद्र को दे अनुमति, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।
4: India win by 137 runs. They go 2-1 up in the series.
5: Sports Pulse.
6: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।

मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। मैं हूँ आपके साथ रेणु भट्ट, लेकर आई गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं मुझे पता है। और जिस तरह का वेदर चल रहा है, क्योंकि वेदर में चेंज आ रहा है और इस चेंजिंग वेदर में ना अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर मुझे पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, किस तरह से कैसे अपने आप को ठीक रखना है।

0: क्या क्या बचाव करने हैं, कौन से वेदर में क्या चीज आपको फॉलो करने है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि इस समय पे बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत बहुत ज्यादा गर्मी है, और ये नंबर अभी थोड़ा बढ़ने ही वाला है। और इस बढ़ती गर्मी में अपने आप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। काफी चीजें करनी होती है ताकि हमें गर्मी ना लगे, गर्मी का शिकार हम ना बने, लू ना लगे, लू का शिकार हम ना बने। और बाद में जब वेदर चेंज होगा कुछ समय बाद, क्योंकि हम मानसून की तरफ बढ़ रहे हैं, तब भी अपना ख्याल रखना जरूरी है। अब इन सब चीज़ों का ख्याल तो हम रखेंगे डेफिनेटली, लेकिन अभी हम आपके लिए बेहद खूबसूरत ट्रैक लेकर आए दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में आप सभी के लिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR सुन रहे हैं आप रेणु भट्ट के साथ। ढेर सारी बातें मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए एज यूजुअल, लेकिन इस गाने से बाद हम लौट के जब आएंगे तब ढेर सारी बातें करेंगे। इस गाने को सुन लेते पहले।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,

जब सुरक्षा की बात आती है, सुरक्षा लेने की बात आती है, सुरक्षित रहने और रखने की बात आती है, तो सड़क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, सड़कों पे जब आप जाते हैं ना अपना व्हीकल लेकर के, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप सड़क पे जाते हैं। इस बात की अहमियत को समझें कि इस फील के साथ ना निकलें कि बस गाड़ी ही तो चला रहा हूँ। नहीं, गाड़ी ही तो चला रहे हैं, यही तो बहुत बड़ी बात है। और इस बात की जिम्मेदारी को समझे कि आपके साथ साथ आपकी जान तो आपके हाथ में है, बहुत लोगों की जान आपके हाथ में, इसीलिए सुरक्षित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सुरक्षा के बारे में और भी बात करेंगे फिर कभी, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली जल बोर्ड न्यू रोहतक रोड पर कमल टी पॉइंट से आनंद पर्वत गली नंबर 10 तक भूमिगत पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रहा है। इस वजह से इस कार्य के चलते सड़क की एक लेन बाधित है और ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि ये कार्य 30 जून तक जारी रहेगा। इसलिए यहाँ पर आपको डायवर्जन मिलना है और आपको अपना अल्टरनेटिव रास्ता लेकर चलना है। और सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक जितने भी वाहन चालक हैं, कमल टी पॉइंट से जखीरा फ्लाईओवर और आनंद पर्वत के बीच के मार्ग पर आवाजाही करने से बचें। और जखीरा फ्लाईओवर या पंजाबी बाग जाने वाले जो वाहन चालक हैं, कमल टी पॉइंट से दाईं ओर स्वामी नारायण मार्ग लेकर पुरानी रोहतक रोड के जरिए जखीरा अंडरपास तक पहुंच सकते हैं। ईदगाह या रानी झांसी फ्लाईओवर की तरफ से आने वाले जितने भी वाहन चालक हैं, न्यू रोहतक रोड पर जाने से बचें और रानी झांसी फ्लाईओवर के साथ साथ सर्विस रोड लेकर रामबाग रोड और रोड नंबर 40 से पुरानी रोहतक रोड पर जाएं। और बसें और जितने भी भारी वाहन हैं वो कमल टी पॉइंट से दाईं ओर स्वामीनारायण मार्ग पर डाइवर्ट किया जाएगा उनका रास्ता, वहीं से उन्हें बाईं ओर रोहतक रोड पर, पुरानी रोहतक रोड पर मुड़ना होगा। तो ये तो मैंने पूरा आपको बता दिया। आप वहां पर से जाते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि क्या क्या डाइवर्जन आपको मिल रहे हैं। नहीं जाते हैं और जाने वाले हैं, अभी जाने वाले हैं, तो मैंने आपको बता दिया इस जगह पे, यानी कि न्यू रोहतक रोड पे जा रहे हैं तो क्योंकि वहां पर यातायात बाधित है, वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पहले ही अपना समय बचाएं और वहां पर रूट कोई और लेकर जाएं ताकि आपको रास्ते में फंसना ना पड़े।

एक अकेले गाने में आपने ढेर सारी आवाजें सुनी, लेकिन जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है। और कुमार सानू की आवाज़ जैसे ही आती है ना, कानों में मिश्री से घुल जाती है। मुझे पता कि आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा और बहुत अच्छा ट्रैक आपने सुना। लेकिन एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ, और बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए परास्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इसके लिए यूनिवर्सिटी ने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पीजी यानी कि CSAS PG 2026 पोर्टल खोल दिया है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ यूनिवर्सिटी ने पीजी बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन भी जारी कर दी है, और उन्होंने छात्रों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले इस बुलेटिन को बहुत ही अच्छे से पढ़ें, जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोग अच्छे से पढ़ लें, फिर उसके बाद आप अप्लाई करें। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, और इसमें जो एडमिशन होगा, जो भी पीजी पाठ्यक्रमों में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो CUET PG 2026 के स्कोर पर आधारित होगा। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखें, और DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी डिजी लॉकर से छात्रों का ब्यौरा खुद ही ले लेगा। तो ये तो थी कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। CUET PG में शामिल होना होगा, कोर्स की पात्रता आप सभी को पूरी करनी होगी, पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है, पीजी पोर्टल पर अनिवार्य है आपको आवेदन करना, टेस्ट पेपर में CUET स्कोर ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कंपलसरी हैं, ये कुछ ऐसी शर्तें जो हर स्टूडेंट को पूरी करनी है। इन सबको आप ध्यान में रखें, उसके बाद आप इसको आवेदन करें और देखें कि कौन सा कोर्स में आप जाना चाहते हैं, और उसे अच्छे से करें। ऑल द वेरी बेस्ट हमारी तरफ से। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, रेणु भट्ट के साथ आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पाँच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: बढ़ाएं।
1: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर. रेणु भट्ट है आपके साथ. और अगर इस समय पर हम टेम्परेचर पर नजर डालें ना, तो 36 का आंकड़ा अभी हमारा उसके बीच में 36 डिग्री सेल्सियस है अभी का टेम्परेचर अगर हम बात करें दिल्ली के. और मैक्सिमम टेम्परेचर की ओर नजर डालें तो 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस. 31 इज टू हाई और 43 भी बहुत ज्यादा है. 36 इस समय के लिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी बस 8:30 बजे ही है, 8:31 ही हुए हैं. और इतनी सुबह सुबह इतना ज़्यादा टेम्परेचर, यानी कि हमें रखना अपनी सेहत का ख्याल, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. वो

बहुत ज़्यादा धूप में और गर्मी में ना जाएं। अगर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बाहर जाना तो अवॉइड करें आप 10 से 11 बजे के बाद बाहर जाना, बिल्कुल अवॉइड करें 4 से 5 बजे तक इस टाइम पे, क्योंकि पीक में गर्मी होती है, इसलिए अपने आप को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे यही नंबर्स रहने वाले हैं और हो सकता है कि बढ़ भी जाए, तो इसीलिए आप प्रिकॉशन रखें, दूर ज़्यादा से ज़्यादा आप अवॉइड करें बाहर जाना, छाता लेके ज़रूर जाएं अगर आप अपने आप को कवर नहीं कर पा रहे हैं तो, और पानी की बॉटल अपने साथ रखें। दो चीज़ें हैं जो बहुत बहुत ज़रूरी हो जाती है इस समय पर इतने ज़्यादा टेम्परेचर के साथ। और आप हमें सुन पा रहे हैं अलग अलग माध्यम से, आप फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से हमारे साथ हैं और आप ऐप के थ्रू भी सुन रहे हैं, आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमसे यूं ही जुड़े रहें पूरे साल, साल के 365 दिन 24x7, और बिंदास तरीके से आपको अपनी बातें हम तक पहुंचानी, यानी कि जो भी बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, आपकी सभी बातों का बहुत बहुत स्वागत है, वेरी वार्म वेलकम। आप करेंगे हमें मेल feedback@fmrainbow@gmail.com पर, feedback@fmrainbow@gmail.com पर आपको हमें मेल करना है और बताना है कि क्या बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो करिए मेल।

आपके दिल की खिड़कियां कोई जबरदस्ती खोल रहा है, कोई दिल में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन घर के और दरवाजे खिड़कियों को टाइटली बंद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां कोई आएगा तो बॉस बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि अगर पार्किंग से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है ना, तो आप दिल्ली नगर निगम के ऐप पर और कॉल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नंबर है 1-55-305, ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और नगर निगम नागरिक निगम ऐप 311 पर भी आप बता सकते हैं अगर आपको पार्किंग से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है। तो अगर हम इस समय की बात करें, अगर हम आज की बात करें, तो पार्किंग एक बहुत बहुत बड़ा मसला होता जा रहा है और बहुत विवेकपूर्ण तरीके से हमें इसका सोल्यूशन भी ढूंढना है। सोल्यूशन हमारे हाथ में तो यही है कि हम बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ ना खरीदें। ये बहुत ही बहुत अजीब बात है कि एक घर में एक से ज़्यादा गाड़ियों का होना और हर व्यक्ति घर का एक एक गाड़ी लेकर दिल्ली की सड़कों पर निकल जाए। और आप इस बात को सोचिए कि अगर सभी ऐसा करने लगे तो आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी सड़कों पे। सड़क भी हमारी है, गाड़ी भी हमारी, ये शहर भी हमारा है और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास है, तो बहुत विवेकपूर्ण तरीके से सारी चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि संसाधनों को किस तरह से इस्तेमाल करना है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें उसे बहुत कैशुअली लेना है या उसे बहुत ही बचा कर चलाना है। क्योंकि हमारे पास जितने भी संसाधन है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमें उसे यूज़ करके ख़त्म नहीं कर देना है, बल्कि हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो चीज़ें देनी है, उनको एक अच्छी चीज़ देनी है। हमें भीड़ भाड़ वाली सड़कें नहीं देनी है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं देना है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें और अपनी जिम्मेदारियों को भी हम समझें। सारी जिम्मेदारी हम सरकार पर तो नहीं छोड़ सकते, वो जितना कर रही है वो कर रही है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी जो है हमें अपने एंड पर निभानी है। इस बात के ध्यान रखें, पार्किंग से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप नागरिक निगम ऐप पर 311 पर आप बता सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या फिर हेल्पलाइन नंबर 1-55-305 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। इन सुविधाओं की भी आपको जानकारी होनी चाहिए और इसका इस्तेमाल भी आपको करना चाहिए। सिर्फ लड़ने से बात नहीं होती, दिमाग चलाएं और इन चीजों का इस्तेमाल करें।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
5: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, रेणु भट्ट के साथ। और आपको एक क्विक अपडेट में दे दूं कि सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 11th क्लास में जो एडमिशन्स हैं, नॉन प्लान जो दाखिले हैं, उसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया। जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं, वो 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। याद रखें, 20 मई तक आवेदन करना है आपको शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाकर। वेबसाइट है www.edu.del.nic। इस पर आप विजिट करें और पूरी जानकारी लें, आप एलिजिबिलिटी देखें और क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए देखें, और 20 तारीख तक एडमिशन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, इस बात को याद रखें।

ऑलराइट और अपने सेहत का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है और इस बात को लेकर हमें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपने आप को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपनी हेल्थ को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक सही रहेंगे तब तक ही हम दूसरे की केयर कर पाएंगे। अगर हम बीमार हो गए तो हम दूसरे को कैसे ही देख पाएंगे, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, योग करना चाहिए, चाहे जितना भी समय आप दे पाएँ, 5-10 मिनट से अगर आप शुरू कर सकते हैं तो करिए, अगर आपके पास समय नहीं है और आप कहते हैं कि आपके पास पूरे 24 घंटे में से बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है, 10 मिनट से शुरू कीजिए, देखिए जब धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद ही ये समय बढ़ाएंगे। और अगर आप बाहर जा सकते हैं, योग कक्षाएं ले सकते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने 20 मई से योग कक्षाएँ शुरू होने वाली है, सभी आयु वर्ग के लिए कार्यक्रम है और इनका जो उद्देश्य है वो है कि लोगों को भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रखना, क्योंकि इतनी हैक्टिक लाइफ हो गई है हर किसी की, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप, सभी के जीवन में स्ट्रेस है, सभी अपने जीवन में कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हम बहुत थक गए हैं। तो इसको आप तभी दूर कर सकते हैं जब आप फिट रहें, तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और फिट रहने की बात है कि DDU अस्पताल में, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल परिसर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योग केंद्र बनाया जाएगा और ये सितंबर तक ये कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि बुजुर्गों को बेहतर उपचार में मदद मिले और योग वो करते रहें और स्वस्थ रहें। तो योग आप भी करें और स्वस्थ रहें।

और अब मेरे जाने का समय हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ वो प्रोग्राम जो आप मेरे जाने के बाद आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर सुन सकते हैं। आप सुनेंगे थोड़ी देर बाद, यानी कि ठीक 5 मिनट बाद आप सुनेंगे दिल के तराने गाने, नए पुराने। बबीता रावत आएंगे आपसे मिलने के लिए। 10:05 पर समय है वेस्टर्न म्यूजिक का, मैचलेस म्यूजिक का लेकर आएंगी पूजा आनंद, और बॉलीवुड की सभी ताजा तरीन हलचल लेकर आएंगी कंचन कानन 11:05 पे। तो हम चाहते हैं कि आप इन तमाम कार्यक्रमों में हमारे साथ बने रहें और यूं ही अपना साथ देते रहें, क्योंकि यहाँ पर एंटरटेनमेंट का सिलसिला खत्म होने वाला बिल्कुल नहीं है। मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर, फिर जल्द मिलूंगे आपसे ठीक कुछ दिनों बाद 22 तारीख को।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं। प्रोग्राम शुरू हो चुका है आपके लिए।
2: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ, और आपके साथ होंगे नए पुराने गानों का साथ भी।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ। और इस वक्त हो चला है एक रेट्रो सॉन्ग का। और अब मैं जो गाना आपको सुनाने वाली हूँ वो है हावड़ा ब्रिज से आशा भोसले की आवाज में और मधुर बाला पर फिल्माया गया ये गीत। सुनिए और एंजॉय कीजिए।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुरानों के साथ साथ हम बताते हैं आपको मौसम का हाल भी। तो बताते चले कि आज का जो टेम्परेचर है लगभग 44 से 45 डिग्री मैक्सिमम और 31 से 32 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है और आने वाले समय में भी कुछ दिनों के लिए येलो अलर्ट गर्मी का जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से तेज लू की संभावनाएं बन सकती हैं। तो ऐसे में आप सभी लोगों को बिल्कुल अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, अपने साथ पानी की बॉटल लेके चलना है, साथ ही साथ तेज धूप से बचने के लिए छाता या फिर कॉटन का दुपट्टा, इस तरीके की चीज़ें ले सकते हैं, या अपने आप को बिल्कुल हाइड्रेट रखिए। और जैसे मौसम चेंज होगा उसके बाद हम इस मौसम का मज़ा भी लेंगे, क्योंकि इसके बाद आएगी बरसात और बरसात का मौसम तो हर किसी को अच्छा लगता है। फिलहाल अभी हम जो गाने सुन रहे हैं वो है दिल के तराने, गाने नए पुराने। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ।

0: शब्दी हो गई बल्ले बल्ले।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने में अब वक्त है एक रेट्रो सॉन्ग का, और ये गाना है मधुमति फिल्म से, और इतना प्यारा गाना है, मन तो कर रहा है इस गाने को सुनते ही रहे, सुनते रहे। और अब आप भी सुनिए मेरे साथ।

और ट्रैफिक अपडेट के बारे में भी हम आपको बताते चलते हैं. अगर आप DNT नोएडा दिल्ली में आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं DNT के थ्रू, तो वहाँ पर आपको ट्रैफिक देखने को मिल सकता है. उसके अलावा ओखला बर्ड सेंचुरी से अगर सिद्धार्थनगर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा शंकर विहार से गुरुग्राम की तरफ अगर जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आप ट्रैफिक को देखेंगे. तो अगर आप इन रास्तों से जाने वाले हैं या जा रहे हैं तो आप बिल्कुल इन जगहों पर जाने से पहले अपने समय की निश्चितता को देख लें कि किस जगह पर कितने समय में आपको पहुंचना है, और उसी समय के अनुसार आप घर से

निकले। और साथ ही साथ अगर आपको कहीं भी हैवी ट्रैफिक दिखाई दे रहा है या कुछ ट्रैफिक की अड़चनें दिखाई दे रही हैं तो हम तक भी आप मैसेज के द्वारा पहुंचा सकते हैं। 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमें बता सकते हैं कि आप कहीं पर क्या ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो उसके बारे में हमें बता सकते हैं।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने में आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ मैंने प्यार किया का सॉन्ग। और मैंने प्यार किया का सॉन्ग इसलिए सुनाने वाली हूँ कि इस फिल्म में एक किरदार था, माँ का किरदार, और वो किरदार निभाया था रीमा लागू जी ने। आज उनकी पुण्यतिथि है, उनको याद करते हुए और बॉलीवुड में उनके किरदारों की बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारे किरदार निभाए, ख़ास तौर से माँ का किरदार उन्होंने बहुत ज़्यादा निभाया है। और ख़ास तौर से जब कहें तो सलमान खान की कई फिल्मों में उन्होंने उनकी माँ का किरदार निभाया। और वैसे कयामत से कयामत तक, मैंने प्यार किया, साजन जैसी फिल्मों में भी उन्होंने एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में अच्छी भूमिका निभाई। चलिए सुनते हैं मैंने प्यार किया का ये गीत।

हम तो अक्सर आपको मिलते रहेंगे कहाँ, इसी मोड़ पर, आकाशवाणी रेनबो पर। और वैसे भी मेरे जाने का वक्त हो चला है, लेकिन मैं आपसे वादा ये करती हूँ कि आपको मैं हमेशा यहीं पर मिलूंगी। आप मेरी खनकती हुई आवाज़ यहीं पर सुनते रहेंगे, लेकिन और भी बहुत सी आवाज़ें हैं जो आपके लिए आज के दिन भर बहुत सारी बातें लेकर आ रही हैं। जी हाँ, पूजा आनंद वेस्टर्न म्यूजिक का मैचलेस म्यूजिक आर नेक्स्ट प्रोग्राम 10 बजे होने वाला है। कंचन कानन 11 बजे लेकर आएंगी बॉलीवुड ट्रेल्स, बॉलीवुड की बहुत सारी बातें उनके साथ होगी। इसके बाद प्ले इट कूल पूजा आनंद के साथ एक बार फिर से, और कंचन कानन रेनबो हेल्पलाइन में होंगी आपके साथ। और आज टॉपिक है स्लीप प्रॉब्लम एंड कॉन्स्टेंट फटीक, कॉज एंड हेल्थ इफेक्ट्स। एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला MBBS MD रेजिडेंट DTB हॉस्पिटल से हैं। उसके बाद प्रोग्राम होगा आशियाना में शालिनी खंडेलवाल होंगी आपके साथ। और 3 बजे प्रोग्राम होगा रेडियो डॉक्टर, टॉपिक रेयर डिजीज एंड डेंटल हेल्थ। एक्सपर्ट्स डॉक्टर नीरज गुलाटी डेंटिस्ट, डॉक्टर हरमीत सिंह डेंटल स्टाफ सर्जन डॉक्टर RML हॉस्पिटल से। और इस प्रोग्राम में अगर आपको बहुत सी जानकारी लेनी है डेंटल इश्यूज़ के बारे में, तो फिर आप फ़ोन कर सकते हैं 011-234-2108 पर, या फिर 011-234-2802 पर, और व्हाट्सएप के द्वारा भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं 9868107070। आप सभी को पता है यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी अपनी बात लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। इसके अलावा 4 बजे प्रोग्राम होगा अल्फा जेन शालिनी खंडेलवाल के साथ। आज यूथ स्पीक होंगी जिया, और यूथ स्पीक में जब गेस्ट जिया होंगी तो बहुत सारी बातें होंगी यूथ की भी। इसके बाद 5 बजे हिना मौज लेकर आएंगी सिटी लाइट्स, और 6 बजे प्रवीण शर्मा MMM यानी कि मैसेज।

मसाला मिक्स लेकर आएंगे। बहुत सारी बातें होंगी मैसेजेस के द्वारा आपकी हमारी, और 7 बजे प्रोग्राम मनन ठकराल लेकर आएंगे कंट्री कार्निवाल, 8 बजे प्रोग्राम होगा म्यूजिक मस्ती का, प्रवीण शर्मा होंगे आपके साथ, 9 से 10 का आपका कार्यक्रम आपकी याद आती रही प्रियंका त्रिपाठी के साथ, और 10 बजे वेस्टर्न म्यूजिक का बंच मनन ठकराल फिर से लेकर आएंगे रेनबो शोकेस, और 11 बजे प्रियंका त्रिपाठी होंगी आपके साथ, रंगे महफिल सजाएंगी बहुत सारी गजलों के साथ, आपको एंटरटेन करेंगी। फिलहाल अभी मेरे जाने का वक्त हो चला है और मैं लेती हूँ आपसे विदा, लेकिन ये मुलाकात आगे भी बनी रहेगी आने वाले समय में। सुनते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिएगा, ताकि हम यूं ही मिलते रहें आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। गोथेनबर्ग पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा

0: भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दो देशों के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये दौरा दोनों देशों के साथ भारत मित्रता के दायरे को और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को बढ़ाना और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। शपथ लेने वाले 21 मंत्रियों में सतीशन सहित 14 विधायक पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद श्री सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एचडी देवेगौड़ा ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान देश के लिए बेहतरीन योगदान दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एचडी देवेगौड़ा को धरती का सपूत बताया। श्री शाह ने कहा कि किसानों और ग्रामीण भारत के लिए उनके आजीवन समर्पण ने देश पर अमिट छाप छोड़ी है। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांग शान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अब हम कब तक हम करेंगे
1: ऐसे घबराओ नहीं कभी तो कहीं न कहीं बादल बरसेंगे
0: मिलेंगे कभी न तुम जरा बतला दो हम कब तक

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी

0: काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: रुक जाना हो जाना, हम सिर्फ दो बातें. ट्रस्ट मी, डू ट्राई एंड बी केयरफुल ऑन द रोड्स. यू डोंट वांट द पुलिसमैन सेइंग दैट एंड सिंगिंग दैट सॉन्ग टू यू एट ऑल. वेल, दैट वाज माय वे ऑफ मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर इन द मॉर्निंग. बट कमिंग बैक टू द सॉन्ग, दिस सॉन्ग वाज फ्रॉम द मूवी वॉरंट, व्हिच केम इन 1975. देवानंद, ज़ीनत अमान ऑफ कोर्स, आर टी बर्मन, एंड लिरिक्स बाय आनंद बख्शी. व्हाट कैन आई से विद दिस सॉन्ग एंड द मूवी वाज सिंपली अमेजिंग. व्हाट अ मूवी, व्हाट अ सॉन्ग. एंड वन थिंग I can be sure about. Sometimes these songs are the ones that can change the way we think about the day. They make us smile, they make us feel oh so happy. That's exactly what we want to do. But this movie was something totally different. Go and check it out and try and make your day more happening when you get to watch some of these old yesteryear classics, which are all about legendary movies. Thank you so much for tuning in, because this is the place you love to be. Matchless Music Hour, live only on Akashvani FM Rainbow 102.6, musically yours. Let's take that break. Stay close, stay tuned. We'll be back in just a couple of seconds.
1: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashvani. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
3: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा.
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा. एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: A perfect weekend song, a perfect song for all those drives, but a perfect song when you want to be hearing some good music when you're stuck in traffic. Well, for all those of you stuck in traffic and wondering which way to turn, trust me, just relax and enjoy the music. You just can't help it but be late, because yes, the traffic is very heavy, especially across Delhi. But also do remember, the traffic police is conducting a special drive against people who are driving on the wrong side of the road. Oh, it's the worst thing possible, but nevertheless, that's what they're doing. So be careful. If you don't want to pay a fine, do try and follow the rules. Well, this movie was 1981 Bulandi, and a complete, of course, a Hindi language crime thriller drama. It had just about everything. Rajkumar, Asha Parekh, Danny Tenzongpa, and Kim in pivotal roles. This song, especially which you just heard, a beautiful track, was picturized on Danny and Kim. Well, a movie which you want to watch, the music director, who else but R.D. Burman himself. Let's take a break. Stay close. Stay tuned. Remember, you tune in to the Matchless Music Hour, live on Akashvani FM Rainbow 102.6, musically yours. With me, Pooja Anand.
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केरलम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई यूडीएफ सरकार ने आज तिरुवनंतपुरम में शपथ ली।
1: नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याज विश्वस्तुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और आईयूएमएल नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। तिरुवनंतपुरम में 21 सदस्यीय सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जारी है। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और

द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। श्री मोदी की ये नॉर्वे की पहली यात्रा है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करना, रक्षा औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करना, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रक की टक्कर सामने से आ रही वैन से हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य सहित 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में 6ठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। तेल की बढ़ती कीमतों में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद वैश्विक बाजार के कमजोर रुझानों के चलते घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स के साथ। मैं आ गई हूँ कंचन, प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स जिसमें बातें होती हैं फिल्मों की, फिल्मी हस्तियों की। और नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने पूरे परिवार के साथ जुड़े होंगे एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक।

जी इस गर्मी में घूमना फिरना मौज मस्ती तो बनती है, क्योंकि बच्चों की चल रही है गर्मी छुट्टी और पड़ रही है बहुत गजब वाली गर्मी। तो बहुत ही ध्यान से अपना ख्याल रखते हुए इस गर्मी छुट्टी का बहुत ही आनंद ले आप अपने बच्चों के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और बॉलीवुड सरताज के सवाल का इंतज़ार तो आपको बेसब्री से रहता है, तो आपके लिए भी एक आसान सा सवाल आज बताएंगे और जो सबसे पहले सही उत्तर हम तक पहुंचाएंगे ना, वो बन जाते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। तो ध्यान से सुनिए आज का सवाल। दोस्तों बॉलीवुड में बहुत से कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी पहली फिल्म से बहुत हिट होते हैं, ऑडियंस के दिल में बहुत जगह बनाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वो बॉलीवुड को अलविदा कह देते हैं। ऐसी ही एक अभिनेत्री रही हैं फिल्म मैंने प्यार किया में। तो आपको बताना है कि सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया में वो प्यारी सी अभिनेत्री जो है वो कौन है। जल्दी से अपना उत्तर हम तक पहुंचा दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और जो सबसे पहले सही उत्तर हम तक पहुंचाते हैं ना वो

0: आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और समय हो चला है 11:17:42। रुकते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा, सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंडो पर रात 9 बजे
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, जिसमें बातें होती हैं फिल्मों की, लेकिन बॉलीवुड सरताज भी हम घोषित करते हैं। और इसके लिए आपके पास एक बहुत ही आसान सा सवाल होता है, और आज का सवाल एक बार फिर से हम दोहराते हैं। आपको बताना है कि सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया में वो प्यारी सी अभिनेत्री कौन है। जल्दी से आप अपना उत्तर हम तक पहुंचाइए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और अपना नाम आप ज़रूर लिखें। और प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स, जिसमें फिल्मों की बात होती है। अब देखिए ना, बॉलीवुड में इतनी सारी फिल्में बनती हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म बनती है बॉलीवुड में। तो अभी अभी फिल्म रिलीज़ हुई है पति पत्नी और वो दो, इसी शुक्रवार को फिल्म रिलीज़ हुई है। लेकिन फिल्म का जो है ना, पहले ही दिन थिएटर में बहुत ही बुरा हाल था, लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और लोगों ने कहा कि मुदस्सर अजीज़ की इस फिल्म में बिल्कुल भी दम नहीं है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बिल्कुल हंसी नहीं आई जितनी की उम्मीद थी। लेकिन फिर जो है खेल थोड़ा सा उल्टा हो गया। पति पत्नी और वो दो की कमाई में वीकेंड में दमदार उछाल देखने को मिला, और फिल्म ऑडियंस के मन में धीरे धीरे धीरे जगह बनाती नजर आ रही है। तो आपने ये फिल्म देखी, आपको हंसी आई, आपको लगा कि आयुष्मान खुराना का काम बहुत अच्छा है, कहिएगा। कभी इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं आपके साथ कंचन।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। वैसे हॉरर मूवीज जो है ना वो बहुत पसंद आती है लोगों को। स्त्री भेड़िया, थामा और स्त्री टू के बाद मेडॉक फिल्म की कॉमेडी हॉरर फिल्म आ रही है शक्ति शालिनी। सैयारा से हिट होने के बाद अनीत पड्डा काफी डिमांड में हैं और उनके फैंस उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें देखने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शक्ति शालिनी में अनीत का डबल रोल होने वाला है। एक रोल है शक्ति का और दूसरा शालिनी का। तो इस फिल्म में भी अच्छाई और बुराई के बीच की जंग को दिखाया गया है। ये फिल्म जो है जनवरी 2027 के फर्स्ट हाफ में रिलीज होने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि अनीत पड्डा इसमें कितनी खूबसूरत लगी हैं और अपने काम से दिल में जगह बना पाती हैं या नहीं बना पाती हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके साथ कंचन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: तुम मेरी राखो लाज हरे।
5: हमारे हृदय के भाव जुड़े प्रभु से और हम सब करें आराधन। आपके लिए आकाशवाणी ला रहा है आराधना चैनल।
4: अम्बे चरण कमल है तेरे।
5: शीघ्र ही होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आकाशवाणी ऐप पर आराधना चैनल।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

जी, आपके भी बहुत सारे सवाल के जो उत्तर हैं हम तक पहुंच रहे हैं, और हम घोषित करेंगे बॉलीवुड सरताज। लेकिन सलमान खान की फिल्म ना कितना भी ख़राब परफॉर्म करे, वो 100 करोड़ का बिजनेस जो है वो कर ही लेती है, और क्योंकि उनके ज़बरदस्त फैंस हैं। और सलमान खान ने कहा है कि वो आज तक 38 साल के करियर में अपनी किसी भी स्क्रिप्ट को पूरी तरह से वो पढ़ते नहीं हैं, वो फिर दिल से जुड़ते हैं और स्क्रिप्ट को पढ़ने के बजाय उसे फील करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो ज़्यादा सोचने से बच सकें। और उन्होंने स्वीकार किया कि वो अपनी स्क्रिप्ट या विचारों को खुद लिखते हैं, यानी साफ है कि वो स्क्रिप्ट के एक एक पन्नों को पढ़ने के बजाय उसके मूड को, उसके ट्रीटमेंट को और उसके कमर्शियल पोटेंशियल को समझकर आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, और इसमें हम घोषित करेंगे कि हमारे बॉलीवुड सरताज कौन है। हमने आपसे पूछा था कि फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान के साथ वो प्यारी सी जो अभिनेत्री थी वो कौन है। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, जुड़े रहिए फिल्म रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, और हमने पूछा था कि फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान के साथ वो प्यारी सी अभिनेत्री कौन है। तो बहुत सारे गलत उत्तर, बहुत सारे सही उत्तर हम तक पहुंचे हैं। पंकज का सही उत्तर है, वहीं सलीम मलिक जी का भी सही उत्तर पहुंचाया है उन्होंने, और अभी अभी ये सरोज जी का उत्तर आया है, वो कहती हैं कि किमी काटकर जी, बिल्कुल ही गलत उत्तर है। तरुण कोहली जी का भी सही उत्तर है, सूरज कुंड से उन्होंने सही उत्तर पहुंचाया है, और सलीम मलिक जी का सही उत्तर है। साथ ही एक आरके जी का एक मैसेज है जो कि कह रहे हैं कि गानों की फरमाइश कर रहे हैं, लेकिन उनका उत्तर जो है वो सही है। हरीश गौड़ जी का भी सही उत्तर है, पंकज महाराष्ट्र से सही उत्तर हम तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही एफएम रेनबो पर बहुत से लोगों ने गीतों की फरमाइश की है जो कि हम अभी नहीं कर सकते। मणिका सिक्किम से वो भी सही उत्तर पहुंचा रही हैं। मोहम्मद कासिम का भी सही उत्तर है, ज़िला बिजनौर से, और यहाँ पर एक गलत उत्तर है, सोनम कह रही हैं कौन, भाग्यश्री कह रही हैं अभी ये सही उत्तर है। वैसे संजय खत्री जी कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से भी सही उत्तर हम तक पहुंचा रहे हैं, और अभी अभी भाग्यश्री कह रहे हैं शालू शादीपुर से, दानिश खतौली से भाग्यश्री कह रहे हैं। तो जिन दोस्तों ने भाग्यश्री उत्तर दिया है उनका सही उत्तर है भाग्यश्री। इस फिल्म के ज़रिए छा गई थी बॉलीवुड में, और उनकी वो मासूमियत जो है ना लाखों करोड़ों दिलों में जगह बना पाई, लेकिन भाग्यश्री फिर फिल्मी दुनिया से अलविदा वो कहती चली गई। थोड़ी सी फिल्मों में वो नज़र आईं, कुछ एक आध फिल्मों में नज़र आईं, लेकिन फिर किसी ख़ास फिल्म में वो काम नहीं कर पाईं, लेकिन अभी भी वो उतनी ही खूबसूरत लगती हैं और उतनी ही फिट है, और अक्सर वो सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं और अपने फिटनेस मंत्र जो है ना वो युवाओं को देती रहती हैं कि किस तरह से वो फिट रह सकती हैं। तो सही उत्तर है भाग्यश्री, जिसमें उन्होंने सुमन के किरदार को निभाया था और दिलों पर छा गई थी। और हमारे जो बॉलीवुड सरताज हैं वो हैं मेरठ से सलीम मलिक, लेकिन सलीम मलिक जी आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं इसलिए आपसे बात नहीं हो पाएगी आज इस प्रोग्राम में। आपको बॉलीवुड सरताज बनने पर ढेर सारी शुभकामनाएं, जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक। और भाग्यश्री पर फिल्माया यही बहुत प्यारा सा गीत लता जी की आवाज़ में।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, और सलमान खान की एक फिल्म आने वाली है मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस। ये फिल्म कब रिलीज होगी इसकी घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन इस फिल्म में है चित्रांगदा सिंह। तो इंतज़ार होगा कि सलमान खान इस फिल्म में क्या किस खास अंदाज में दिखाई देते हैं। मैं कंचन यहीं पर लेती हूँ विदा, जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक। आप सभी का शुक्रिया जो आप जुड़ते हैं एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर वे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम स्थापित भारत भरण घटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नी

वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917, जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़क कर 23,530 पर था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

से कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सरकारी सहायता टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: Well, who's next?
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन। मैं आपके साथ कंचन। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ जुड़े होंगे एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक। दोस्तों, हमारी सेहत अच्छी रहे ये कोशिश तो हम सबकी रहती है, लेकिन कभी काम काज, कभी भागा भागी या कभी अपनी आदत के चलते जाने अनजाने हम अपनी नींद से ही समझौता कर लेते हैं और रिजल्ट ये होता है कि नींद से जुड़ी हुई परेशानी और लगातार थकान की समस्या बनी रहती है। तो क्यों ज़रूरी है अच्छी नींद, ताकि थकान हमारी डिक्शनरी में बिल्कुल ना हो, और इसी विषय पर हम बात करेंगे प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन में। और आज स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला, रेजिडेंट डॉक्टर जीटीबी हॉस्पिटल। सर, एफएम रेनबो के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और सारे सामीन को भी मेरा आदाब और नमस्कार।
1: सर, अच्छी नींद की जब बात होती है तो अच्छी नींद आखिर है क्या, कैसे हम इसको परिभाषित करें कि अच्छी नींद क्या है?
2: जी गंजन जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अच्छी नींद के हम आमतौर पे पैरामीटर ये सोच लेते हैं कि अगर हम प्रॉपर घंटे नींद ले रहे हैं, यानी कि नींद की क्वांटिटी बराबर ले रहे हैं, तो वो अच्छी नींद हो जाती है
1: जी।
2: लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ नींद की क्वालिटी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहाँ इतने स्ट्रेसेस हैं और हम उससे बचने के लिए अलग अलग तरह के मेडिटेशंस और बाकी एक्सरसाइजेज या इस सब चीज़ या न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देने की कोशिश करते हैं, वहाँ हम शायद स्लीप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। स्लीप शायद सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, या सबसे बॉडी की बॉडी एज वेल एज माइंड की रिकवरी के लिए।
1: जी, तो अगर सर से आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जुड़ जाइए एफएम रेनबो के साथ। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर आप नींद से जुड़ी कोई भी समस्या, कोई भी जानकारी आप सर से हासिल कर सकते हैं। साथ ही फ़ोन नंबर भी खुले हैं हमारे नंबर से 2342 1084, और दूसरा नंबर है 2342 1080, और दिल्ली के बाहर से अगर कॉल कर रहे हैं तो 011 जरूर मिलाए। प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक।

0: साहब, नींद किसी ने भी चुराई हो, लेकिन अच्छी नींद बहुत जरूरी है। सर आज हमारे स्टूडियो में हैं और हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला, रेजिडेंट डॉक्टर जीटीबी हॉस्पिटल। सर, नींद की जब बात होती है तो अच्छी नींद आखिर क्यों जरूरी है?
1: जी कंचन जी, हमारी बॉडी में नेचर ने, फितरत ने एक सुविधा रखी है रिकवरी की। हम जो पूरे दिन प्रोडक्टिविटी का प्रोडक्टिव काम करते हैं, उसमें हमारा माइंड भी, हमारी बॉडी भी एग्जॉस्ट हो जाती है, थकान हो जाती है। उस थकान से रिकवरी के लिए ये नेचुरल मैकेनिज्म है, और शायद इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल मैकेनिज्म कोई और सा नहीं है नींद के विषय सा। क्योंकि जब आप नींद ले रहे होते हैं तो वो सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी से रेस्ट नहीं है, बल्कि वो एक एक्टिव रिकवरी का फेज है। बॉडी के जो जो आपने कॉम्पोनेंट्स यूज़ करे हैं या जो जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, चाहे वो सेलुलर लेवल पे हो, चाहे वो मैक्रो लेवल पे हो, उस सब के अंदर ही नींद के अंदर एक रिकवरी का वो छुपा हुआ है।
0: जी, जोया पूछ रही है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से कि जो नींद की कमी है उसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं, घातक नतीजे हो सकते
1: जी
0: हैं?
1: नींद के तो एक्यूट और क्रॉनिक, यानी कि फौरन जाहिर हो जाने वाले और कुछ टाइम में एक्यूमुलेट होने वाले बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी नींद का कौन सा कंपोनेंट लैक कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है नींद ना आने पर। एक तो ये कि आपकी नींद बार बार टूट रही है रात को, यानी नींद की क्वालिटी की कमी है। आप रात में बार बार उठते हैं किसी भी काम की वजह से, मे बी आपको वॉशरूम जाना हो या फिर वैसे ही आपकी नींद खुल जाए ड्यू टू सम बैड ड्रीम और समथिंग एल्स। दूसरा ये होता है कि आप इंसोम्निया ही हैं, आपको नींद ही कम आ रही है लगातार। तो उन दोनों केसेस में आपको जो फिजिकल प्रॉब्लम्स आने लगेंगी वो अलग अलग होती हैं। मान लीजिए आपकी नींद की क्वालिटी कम है तो आप दिन में फिर फटीग्ड महसूस करेंगे, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स होंगी, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, हो सकता है आपको एंग्जाइटी, पैल्पिटेशन

0: हाइपरटेंशन, घबराहट, बीपी का इशू होना स्टार्ट हो जाए। और दूसरी तरफ अगर आप इनसोम्निया कहें तो फिर उसके दूसरे तरह के कॉजेज होते हैं। बाकी नींद एक ऐसा फैक्टर है जिसकी कमी की वजह से फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पे इफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस करा मेमोरी, कंसंट्रेशन, एंग्जाइटी। बॉडी के लेवल पे आपका वेट गेन हो सकता है, आपको लेथार्जी फील हो सकती है, आप डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दिल की बीमारियों के लिए, रोग के लिए भी प्रोन हो सकते हैं। तो इस तरह के डिपेंडिंग अपॉन आप एक नींद की कौन सी कमी हो रही है, किस तरह की नींद की आपकी कमी हो रही है, आपके अलग अलग फिजिकल या मेंटल सिम्टम्स आ सकते हैं।
1: जी, राजेश कुमार चौहान पूछ रहे हैं जालंधर से कि अच्छी नींद का मतलब क्या समझा जाए और क्या जरूरी है कि 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है और रात को 5-6 घंटे की नींद, अगर गहरी नींद अच्छी है, नींद के दिन के समय में कितने घंटे की नींद जरूरी है।
0: अच्छा, देखिए इन्होंने पूछा कि अच्छी नींद कैसे पता लगे कि हम ठीक ठाक नींद ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अच्छी नींद का सबसे बड़ा पैरामीटर यह है कि जब आप सुबह को उठें तो आप फ्रेश महसूस करें, आप अगले दिन जाने के लिए एक्टिव महसूस करें, आप तरोताजा महसूस करें, आपकी रिकवरी अच्छी हो चुकी है, ये सबसे बड़ी इस बात की अलामत होगी। उसके अलावा ये जो इन्होंने पूछा कि क्या कितने घंटे की नींद जरूरी है, देखिए हमारी जो नींद की एक साइकिल है NREM से REM, वो लगभग 90 से 120 मिनट की होती है। तो इसमें अच्छा होता है अगर आप दिन में रात को 4-5 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएं। तो अगर आप 99.9% लोगों में फॉल करते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 7 से 9 घंटे की नींद रात भर में ले लेनी चाहिए। अब इसके हमेशा अपवाद या एक्सेप्शंस तो होते ही हैं।
1: जी, और सर जैसा कि हम लोग ऑफलाइन बात कर रहे थे, ऑफ एयर बात कर रहे थे कि आजकल जो बच्चे हैं जिनके एग्जाम हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, उन पे काम का बोझ बहुत अधिक रहता है, उनके वाइवास होते हैं, उनके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, उनको थीसिस लिखनी पड़ती है और कहीं ना कहीं नींद जो है ना वो खराब होती है। तो ऐसे में बच्चे क्या करें, कैसे नींद को पूरी करें?
0: देखिए जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें जो वर्कलोड हमारे ऊपर आ चुका है उससे तो हम शायद सिस्टमैटिक लेवल पर डील कर पाए, इंडिविजुअल लेवल पर ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम अपने लिए ये बेहतर कर सकते हैं कि हम उसमें एक तो बिहेवियरल चेंजेस करें, यानी कि जब हमने पूरे दिन बहुत मेहनत करी है, बहुत काम किया है, रात को हम अनवाइंड करें, हम स्क्रीन्स कट ऑफ करें, हम खाने की जो जो लास्ट डिनर है वो स्लीप से 3-4 घंटे पहले तक ही ले लें, बस अनवाइंड करें, कुछ मेडिटेट करें, कुछ दिन में फिजिकल एक्टिविटी ऐड करें। और जैसे कि आपने कॉलेज स्टूडेंट्स का जिक्र किया, उनमें अक्सर एक और चलन है, कैफीन इंटेक बहुत होता है उनका, या तो कॉफ़ी पी रहे होते हैं या कोई रेड बुल या कोई और इस तरह के एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले रहे होते हैं। तो वो उस तरह के ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली इन द लेटर हाफ ऑफ द डे, दोपहर तक या शाम तक। तो अगर आप जितनी ज़रूरत हो एक या दो बार आप ले सकते हैं, पर रात के समय के शाम सूरज ढलने के बाद आप वो ना लें ताकि वो आपकी नींद से इंटरफेयर ना करे।
1: जी, और विवेक अग्रवाल जी मेरठ से पूछ रहे हैं कि रात को बराबर नींद खुल जाती है, क्या करना चाहिए, मॉर्निंग के टाइम नींद अच्छी आती है?
0: हो सकता है कि इन्होंने जो अनवाइंडिंग है, यानी कि इसको आप ऐसे समझें कि एक गाड़ी अगर बहुत तेज स्पीड में चल रही है और हमको उसको पार्क करना है गैराज में जाकर, तो पहले हमें उसकी स्पीड स्लो करनी शुरू करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप तेज स्पीड में 60 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और वहीं जाके आप गैराज में पार्क कर देंगे उसको। आप पहले उसको उसकी स्पीड को डीएस्केलेट करेंगे, 60 से 50, 40, 30 पे लाएंगे, तब जब आपकी गाड़ी रुकने वाली होगी तब आप जाके पार्क करेंगे। तो विवेक जी को ये करना चाहिए कि रात को सोते समय अनवाइंडिंग करें, यानी ये ना हो कि उनकी लाइट्स भी बहुत ज़्यादा ब्लू लाइट है उनकी वो ऑन है, या फिर उनका स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, वो फ़ोन या लैपटॉप या मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं बिस्तर पर लेटकर, या फिर वो अपने दिमाग को कोई और ख्याल में मुब्तला कर स्टिमुलेट कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर उनके माइंड को तो पता है कि वो सोने जा रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी को अभी भी लगता है कि ये दिन ही है और जागने का समय है। तो इसलिए हो सकता है कि शुरुआत के 1-2-3 घंटे उनकी बॉडी को यही अडेप्ट करने में लग जाएं कि रात हो चुकी है और सोने का समय हो चुका है। इसलिए उनकी नींद सुबह के समय ज्यादा गहरी है और रात को नहीं है इतनी।
1: जी, सोने की समस्या जो है ना, सोने से जुड़ी समस्या आजकल लोगों में देखी जा रही है और बहुत सारे मैसेजेस हमारे स्क्रीन पर चमकते जा रहे हैं। अंकित जी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब वो 14 से 15 घंटे सोते हैं और कभी उनका उठने का मन नहीं करता है और उठने के बाद वो बहुत ही लेजी फील करते हैं, क्या करना चाहिए?
0: ये तो सीरियस प्रॉब्लम है। अगर 15 घंटे वो लगातार ही सोए जा रहे हैं तो उन्हें तो फिर अब एक मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए अपनी, शायद उनको कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। वो फिजिकल अपने फैमिली

0: फिजिशियन से कंसल्ट करें, गेट देयर जनरल बॉडी चेकअप डन, विटामिन लेवल्स, थायराइड लेवल्स, ये सब एक बार चेक कर लें। उसके अलावा अगर लगातार 15 घंटे की नींद आ रही, मतलब वो 15 घंटे सो रहे हैं उसके बाद भी रिकवरी नहीं हो रही, यानी स्लीप की क्वालिटी बहुत खराब है, तो
1: जी
0: क्या वो बीच बीच में जाग तो नहीं रहे हैं, क्या वो स्नोर तो नहीं करते हैं, खर्राटे तो नहीं आ रहे हैं, बीच में सांस तो नहीं रुक जाती है, इस तरह की चीजें, ये तो उनको इंडिविजुअल केस बेसिस पे ही एक डॉक्टर से कंसल्ट करना
1: जी।
0: चाहिए।
1: तरुण कुमार जी का एक सवाल है कि जब कभी उन्हें ड्यूटी के लिए सुबह 4 बजे उठना होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि उनकी नींद रात में बार बार खुल जाती है और वो ठीक से सो नहीं पाते, और ऐसी स्थिति में यदि वो रात की अधूरी नींद की भरपाई के लिए दिन में कुछ समय के लिए आराम करते हैं या सो लेते हैं तो क्या या ये सेहत की दृष्टि से सही माना जाएगा? क्या दिन का आराम रात की नींद की कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकता है?
0: दिन का आराम बिल्कुल रात की नींद की कमी को पूरा कर सकता है, बस उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा ना हो, वरना वो अगली रात की नींद के साथ इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देगा।
1: जी।
0: तो जो नींद के नैप, जो दिन के नैप्स हैं, उस नैप्स की स्वीट स्पॉट ये है कि वो आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे के बीच का हो, उससे ज्यादा ना हो। अगर आप दिन में 1.5 घंटे से ज्यादा सोना स्टार्ट कर देंगे तो वो आपकी अगली रात की नींद के साथ इंटरफेयर करेगा, फिर वो अगली नींद की क्वालिटी खराब करेगा।
1: जी, तो सर जब हम नींद की बात करते हैं तो क्या ये हमारा एक मेंटल ये मेकअप भी होता है कि चलिए आलस से आ रहा है तो जब चाह सो गए? क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि हमारी हॉबी है सोना।
0: जी, अगर सोने को हॉबी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो इसमें तो ये कि फिर अपने आलस को ही उन्होंने बहाना बना दिया ये सोने का। बाकी अगर बार बार सोते रहेंगे, मतलब अगर मान लीजिए जोक्स अपार्ट, अगर हॉबी बना लेंगे तो आप जाहिर है वो जब भी आपको टाइम मिलेगा आप दिन में बार बार करेंगे। तो ये जो ब्रोकन नींद है, यानी ब्रोकन स्पेल्स ऑफ स्लीप, थोड़े थोड़े नैप्स बार बार लेने की जो आदत है, ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इसलिए हार्मफुल है क्योंकि रात को आपको जितनी डीप स्लीप में जाना चाहिए, जितनी गहरी नींद आनी चाहिए, उतनी गहरी नींद नहीं आ पाएगी फिर अगर आप दिन में बार बार सोते रहेंगे तो।
1: जी सर, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं और सुनते हैं उनकी बात। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, आप अपने नाम बताएं और
2: हेलो
1: जी। हेलो जी, आपको सुन पा रहे हैं? शायद इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ी देर में हम अपने कॉलर से बात करेंगे। सर जब नींद की बात आती है तो हमारे बुजुर्गों का ख्याल आता है क्योंकि बुजुर्गों की जो नींद होती है ना वो बहुत बिखरी हुई के है।
0: जी जी।
1: तो ऐसे में क्या करना चाहिए? वो सुबह उठ जाते हैं फिर पूरे दिन उनकी इच्छा नहीं होती है कि वो किसी काम में लगे, तो ऐसे में बुजुर्गों को कैसे ध्यान रखने की जरूरत है?
0: ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कंचन जी। तो मैं बुजुर्गों के लिए पर्टिकुलरली और बाकी सबके लिए भी एक जर्नल तौर पर कुछ नींद के लिए टिप्स दे देता हूँ यहाँ पर, ये अच्छा मौका है इस चीज के लिए। वो ये कि अच्छी रात की नींद की तैयारी रात को ही नहीं दिन में शुरू हो जाती है। जब आप सुबह सोकर उठें उसके बाद आपका थोड़ा सन एक्सपोजर जरूर होना चाहिए, आपकी आंखों को और स्किन को थोड़ा सन एक्सपोजर मिले, थोड़ा आप धूप दिखाएं 10-15-20 मिनट, बेहतर रहेगा कि अगर वो सुबह की धूप हो ना कि दोपहर की, पहली बात तो ये। उसके बाद बुजुर्गों में एक टेंडेंसी ये होती है कि वो चाय बहुत पीते हैं या कुछ और इस तरह के जिसमें कैफीन हो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ये कोशिश करें कि अगर उनको कितना भी इंटेक करना है वो दोपहर तक ही हो, दोपहर के बाद वो ये इंटेक ना करें और कुछ फिजिकल एक्टिविटी दिन में ऐड कर दें
1: जी।
0: थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या वॉक या वो जितनी उनकी फिजिकल कैपेबिलिटी है, जितनी उनकी तवाना तो उस हिसाब से जितना वो कर सकते हैं थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी दिन में जरूर ऐड करें, तो वो फटीग एक्यूमुलेट होगा तो शाम को उनको बेहतर नींद आएगी
1: जी। और जो महिलाएं मेनोपॉज के दौर से गुजर रही हैं उनकी नींद भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: तो ऐसे में महिलाओं को क्या कुछ करने की जरूरत है ताकि नींद जो है बहुत अच्छी हो उनकी?
0: जी, जो मेनोपॉज है वो एक बड़ा सेंसिटिव पीरियड होता है किसी भी विमेन, किसी भी वुमेन की, किसी भी औरत की जिंदगी में, क्योंकि उनका हार्मोनल चेंजेस इतने ज्यादा हो रहे होते हैं तो उनकी बॉडी और माइंड दोनों बहुत फ्लक्चुएशन से गुजर रहा होता है उस टाइम पर। तो उस टाइम पे उनको जरूरी है कि जितनी चीजें उनके हाथ में नहीं है, यानी कि हार्मोनल चेंजेस वो तो नहीं है, लेकिन जितनी चीजें उनके कंट्रोल में है उसके लिए वो अपने एंड से एफर्ट्स करें। उन एफर्ट्स के लिए एक बेहतर न्यूट्रिशन हो सकता है, कुछ सप्लीमेंटेशन हो सकता है, मतलब विटामिन लेवल्स रेगुलरली चेक कर लें, उसके हिसाब से अपने डाइट प्लान मॉडिफाई कर लें, कुछ एक्सरसाइज इंक्लूड कर लें, न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन एंड बिहेवियरल चेंजेस फर्स्ट है
1: जी। और सर जब नींद की बात होती है तो बहुत सारे बच्चे

0: जो हैं वो स्क्रीन पर लगे रहते हैं और एक आदत बन चुकी है कि हम अपने स्क्रीन टाइम को सीमित नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में स्क्रीन के प्रति जो है कैसे उनकी दूरी बढ़ाएं ताकि नींद जो है अच्छी हो।
1: जी, स्क्रीन दो तरह से हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। पहली बात तो जो हम स्क्रीन पे आमतौर पे देख रहे होते हैं वो रील्स वगैरह होती हैं,
0: जी
1: तो वो हमारे माइंड को स्टिमुलेशन जोन में रखते हैं, यानी कि वो एक्साइटेड रखते हैं, हमको डोपामीन निकलता रहता है लगातार। दूसरा ये कि स्क्रीन्स ब्लू लाइट एमिट करते हैं। ब्लू लाइट एमिट करने से अगर आप शाम के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं फोन या स्क्रीन का, तो ऐसा लगता है माइंड को और बॉडी को कि अभी भी दिन है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये जो ब्लू लाइट है ये नेचुरली तो रात को नहीं होती है, ये दिन में सन की रेज में जरूर शामिल होती है। तो इन दोनों वजहों से, एक तो स्टिमुलेशन जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम हो रहा है और दूसरा ब्लू लाइट एमिशन, उन दोनों वजह से नींद पे सबसे ज्यादा अगर आजकल कोई घातक इफेक्ट कोई चीज करती है तो वो ये साधन है, ये उपकरण है जिसे मोबाइल फोन बोलते हैं। नींद हमारे लिए एक सुविधा थी और हमने उस सुविधा से अपने आप को रोकने के लिए साधन बना लिए हैं। तो इससे इसलिए सबसे अच्छा ये है कि आप जब बेड टाइम हो उससे कम 4 घंटे पहले कोई भी स्क्रीन वगैरह कट ऑफ कर दें। आप बुक पढ़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, कुछ और इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन्स रात को खास तौर पे कट ऑफ कर दें।
0: जी, जबकि होता उल्टा है कि
1: उल्टा होता है। जी जी
0: जो
1: जी
0: जो रात बढ़ती है स्क्रीन टाइम जो है वो
1: जी जी
0: बढ़ता
1: जी
0: चला
1: जी जी
0: जाता
1: जी
0: है।
1: जी
0: नवलू वरक पूछ रही हैं कि क्या दिन में सोना डॉक्टर साहब उचित है?
1: ये हमने बात कर ली इस बारे
0: जी
1: में, दिन में सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते जो आपका नैप है, जो आपने झपकी ली है नींद में, उसका ड्यूरेशन लिमिटेड है, सीमित है।
0: जी तो दोस्तों अगर नींद से जुड़ी आपकी भी कोई समस्या है या थकान बनी रहती है तो आप डॉक्टर साहब तक सीधे सवाल पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9868107070 और डॉक्टर साहब की पसंद के बहुत ही प्यारे प्यारे गीत हम सुनवाते रहेंगे इस प्रोग्राम में।

मन कस्तूरी रे। जग दस्तूरी रे मन कस्तूरी।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला, रेजिडेंट डॉक्टर जीटीबी हॉस्पिटल, और बातें हो रही हैं अच्छी नींद की, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छी नींद लेंगे तो थकान जो है ना वो हमारी डिक्शनरी में तो बिल्कुल होगी ही नहीं। सर, बहुत से लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि जो लोग अपने काम के प्रति बहुत अधिक समर्पित होते हैं तो उन्हें लगता है कि जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए तो नींद बिल्कुल नहीं लेना है, तो ऐसे में वो लोग क्या करें?
2: देखिए, ये तो एक अपने आप में बहुत नीश प्रॉब्लम है। इस तरह के लोग आजकल तो कम कम ही होते जा रहे हैं। लोगों को अपने काम से दिलचस्पी कम हो रही है, एलियनेटेड महसूस करते हैं। मीर का तो मिसरा है, पैदा कहाँ है दहर में ऐसे परागंदा तबा लोग, तो वो। लेकिन मैं उनके लिए एक ये सजेशन दे सकता हूँ कि आपका अगर कोई काम पेंडिंग रह गया है और वो काम अब नहीं हो सकता, तो अब आपके वो दिमाग में एक टैब खुला हुआ है और वो टैब रात भर खुला रहेगा और वो आपकी नींद के साथ मुसलसल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहेगा। तो आप एक काम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप एक जर्नल रख लें, उस जर्नल में उस प्रॉब्लम के बारे में लिख दें। तो जब आप उस चीज़ को लिख देते हैं तो वो रिफ्लेक्टिव राइटिंग होती है या कुछ वरी जर्नलिंग होती है। इस तरह का अगर आप कुछ नुस्खा आजमाएं तो वो हो सकता है कि उसकी इमोशनल पोटेंशियल को थोड़ा कम कर दे और वो आपकी नींद के साथ आगे जाके कम डिस्टर्बेंस कर क्रिएट कर।
1: जी, और नींद से जुड़ी जब समस्या होती तो कैसे लोग एक स्वस्थ तरीके से अपना रूटीन बनाकर चले ताकि वो नींद भी पूरी कर ले और अपने सारे काम जो है उसे भी समय पर पूरा कर ले?
2: जी, ये हमने टुकड़ों टुकड़ों में तो बात कर ली है इस पूरे टॉक के दौरान, मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि जो नींद, अच्छी नींद है वो रात से नहीं, उसकी प्रक्रिया सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है, सुबह से ही शुरू हो जाती है। तो पहला ये कि सन एक्सपोजर, थोड़ा 10-15-20 मिनट धूप ज़रूर आपको लगानी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो कैफीन इनटेक है उसको लिमिटेड रखें, चाय कॉफ़ी को दोपहर के बाद ना पिए। तीसरा ये कि सोने से पहले स्क्रीन्स कट ऑफ करना स्टार्ट कर दें और डिनर सोने से एटलीस्ट 3-4 घंटे पहले करें। कुछ फिजिकल एक्टिविटी दिन में इंक्लूड कर लें, कुछ ना कुछ, कुछ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, कुछ और ऐसे जो भी आप करना चाहें वो उसमें इंक्लूड कर लें। और लास्ट में रात को जब आप सोने जा रहे हो तब आप कुछ लाइट वॉक या कुछ लाइट म्यूजिक, या जैसे हम रेडियो भी सुन सकते हैं, या ये कि कुछ मेडिटेशन कर लें, बेसिकली अनवाइंडिंग, जिस भी चीज़ से आपको रिलैक्सेशन महसूस हो वो सब रिलैक्स कर लें। कुछ लोग आयुर्वेदा अपनाते हैं तो वहाँ पे कैमोमाइल टी या फिर तुलसी टी या कुछ इस तरह की हर्बल टी या सूप भी पी लेते हैं आफ्टर डिनर, उससे भी उन्होंने अनवाइंडिंग में, या कुछ वार्म मिल्क, कुछ थोड़ा गर्म दूध इस तरह का लेने के लिए भी उनको वो रिलैक्सेशन और एंग्जाइटी और उस सब में हेल्प करता है। तो जिस भी, जो भी आप, यू मेक योर ओन अनवाइंडिंग शेड्यूल जिससे भी आपको हल्का महसूस हो, आपको स्ट्रेस कम हो और आप दिन भर का लोड उतारते रहें और अपने कंधों पर से जब बोझ उतर चुका है तब उसके बाद बिस्तर पर जाएं।
1: जी, और प्रियंका का मैसेज आया है कि उनके पिताजी की उम्र जो है वो 70 से अधिक है, वो बैठे बैठे कहीं भर पर भी सोने लगते हैं और वो ये दिन रात कभी भी किसी भी जगह, चाहे वो कहीं पर भी हो, पार्टी में हो, घर में हो, चार लोग बैठे हो, तभी भी ये।
2: जी, मैं उनसे पूछूंगा कि उनका वजन वगैरह अगर ज्यादा है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक बीमारी है जिसमें आपको रात को सांस नहीं आती, आपकी श्वास नली पे प्रेशर पड़ने की वजह से आपकी नींद बार बार खुलते रहती है। ऐसे लोग रात को तो पूरा 8-10 घंटा सो जाते हैं लेकिन उनकी नींद की क्वालिटी बहुत खराब रहती है क्योंकि बार बार सांस रुकने की वजह से उनकी रात में कई बार आंख खुलती है और जब वो रात को रिकवरी पूरी नहीं होती तो दिन में उनको बार बार नींद आती है। और बिल्कुल यही सिम्टम्स उसके आ रहे होते हैं कि वो कहीं भी पार्टी में हो या कहीं गए हो या कुछ काम कर रहे हो, उनको बार बार नींद आती रहती है और वो इन जनरल बड़ा लिथार्जिक महसूस करते हैं। इसके बारे में उनको अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, अपने फैमिली फिजिशियन से बात कर लेनी चाहिए।
1: जी, और सर, जब छोटे बच्चों की नींद होती है, जो 5 से 7 साल के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, वो भी कभी भी सो जाते हैं या बहुत देर रात तक जगते हैं और फिर स्कूल जाने के समय में उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है?
2: 5-7 साल के जो बच्चे हैं आजकल, एक तो उनमें भी स्क्रीन का बहुत ट्रेंड आ गया है, माँ बाप उनको फ़ोन या टीवी या लैपटॉप इस तरह के स्क्रीन्स मुहैया करा देते हैं, तो रात को वो अक्सर

0: जब स्कूल से और ट्यूशन से फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद वो उसमें लग जाते हैं। तो एक तो वो अवॉइड कराएं उनको, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखें कि वो जंक फूड कम खाएं और घर का खाना जिसमें सारे वाइटामिन्स, सब्जियां, प्रोटीन बराबर मात्रा में हो वो उनका प्रॉपर रहना चाहिए, ताकि उन्हें लेथार्जी या थकान उस सेंस में ना हो। उसके बाद ये कि ये उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोने का माहौल ठीक से बनाएं, ब्लू लाइट्स अवॉइड करें, रात को लाइट बंद करें और उनको स्टिमुलेशन वाले जितनी चीज़ें होती हैं उससे उनको परहेज कराएं एक टाइम के बाद, शाम के बाद। तो उससे उम्मीद है कि वो टाइम पर सोने लगेंगे और सुबह तरोताज़ा उठेंगे, स्कूल में भी बेटर परफॉर्म करेंगे।
1: जी, और आजकल बच्चों में क्या बड़ों में भी जंक फूड का जो प्रचलन है वो बहुत
0: जी जी
1: अधिक
0: जी
1: है,
0: जी
1: बहुत अधिक। क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं होता। तो क्या ये सारी चीजें हमारी नींद को प्रभावित करती हैं?
0: जी जंक फूड बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ कैलोरीज दे रहा है आपको और कुछ जो सारे असेंशियल वाइटामिन्स या मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स आपको बॉडी के लिए चाहिए वो तो दे नहीं रहा है, सिर्फ कैलोरीज दे रहा है। तो वेट गेन भी करा रहा होता है आपको, शुगर स्पाइक भी करा रहा होता है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी करा रहा होता है, और ये सारे फैक्टर्स हैं जो नींद, एक अच्छी नींद के आगे बाधा बन जाते हैं।
1: तो क्या करना चाहिए ऐसे में?
0: ऐसे में ये करें कि आप, तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होता है बिहेवियरल चेंजेस, जिनके बारे में हमने बात कर ली कि रात को कैसे अनवाइंड करना है। दूसरा होता है बेहतर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आप हरी सब्जियां या सैलड्स ये सब अपने हर मील में इंक्लूड करना स्टार्ट करें। प्रोटीन पे ज्यादा, जो लोग अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स या मीट, या अगर वेजिटेरियन है तो पनीर या सोयाबीन या डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा आप उपयोग करें। कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, कुछ कुछ नियमित एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, और अगर इससे भी कुछ कमी रह जाती है तो डॉक्टर की कंसल्टेशन में कुछ सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। जैसे कई बार वाइटामिन डी या वाइटामिन बी, इन कमी की वजह से भी आपकी नींद या फिर फटीग आपको या थकान हो सकती है।
1: जी, तो क्या अगर किसी व्यक्ति में बहुत अधिक थकान रहती है या हमेशा थके थके से रहते हैं, तो क्या इसकी वजह सिर्फ नींद की कमी है
0: नहीं
1: या
0: नहीं नहीं
1: और भी बहुत
0: बिल्कुल
1: सारी
0: भी नहीं,
1: वजह?
0: नींद इसकी एक वजह है। आज हमने इस पर ज्यादा फोकस इसलिए करा क्योंकि हमारा टॉपिक ये था, बाकी इसके अलावा बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थायराइड की बीमारी हो सकती है, वाइटामिन की कमी हो सकती है, लिवर किडनी हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई और मेडिकल इशू हो सकता है, उन सब की वजह से आपको नींद कमी हो जाए, नींद की क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो उसके लिए हमें रेगुलरली चेकअप डॉक्टर के पास, एनुअल या फिर 6 मंथली चेकअप कराते रहना चाहिए, और कोई भी अगर सिम्टम आ रहा होता है तो उस सिम्टम को एक वार्निंग की तरह उस पर एक्ट करना चाहिए, उसे परस्यू करना चाहिए, ये नहीं कि आप उसको इग्नोर करते रहें।
1: जी, तो दोस्तों सर से और भी बातें हम जानेंगे, लेकिन सर की ही पसंद के बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही मीठे मीठे गीत हम सुनवाते रहेंगे FM रेनबो पर। जुड़े रहिए दिल से दिल तक।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी बिल्कुल, ये है आपका FM रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, और मैं आपके साथ कंचन, साथ ही हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला। और आज बात हो रही है कि कैसे आप अच्छी नींद लें ताकि थकान आपसे कोसों दूर रहे। सर, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे मैसेजेस हमने ले लिए, अब चलते चलते क्या संदेश देंगे हमारे श्रोताओं को ताकि वो अपनी नींद जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से पूरी कर सकें, सेहतमंद रहें और थकान उनकी डिक्शनरी में ना हो।
5: जी, मैं सब जाते जाते बस यही संदेश देना चाहूँगा सारे सामीन को, श्रोताओं को, कि नींद को प्रायोरिटाइज करें, नींद को अपनी जिंदगी का उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा समझें जितना आप बेदारी को या जाग कर काम करने को समझते हैं। उसके लिए आप नियमित जितने उपाय हैं वो भी अपनाएं, स्क्रीन्स कट ऑफ करें, डिनर सोने के टाइम से पहले करें, रात को ब्लू लाइट अवॉइड करें, मेडिटेट करें और अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, अपने जंक फूड अवॉइड करें और दिन में हो सके तो कैफीन इंटेक अवॉइड करें। इससे आपकी नींद रात को क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों बेटर होगी। और अगर आप स्लीप प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपका वर्क ऑटोमेटिकली प्रायोरिटाइज हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप जब काम कर रहे होंगे तो बेहतर काम कर पाएंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे।
4: जी, एक मैसेज अरुणा जी का आया है कि उनके पिताजी की नाइट ड्यूटी रहती है लेकिन वो सुबह में भी फिर सो नहीं पाते हैं, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए?
5: जी, अगर नाइट ड्यूटी है तो नाइट ड्यूटी के अलावा, नाइट ड्यूटी में आप एक काम कर सकते हैं कि सुबह को जब आप वापस आ रहे हैं तो आप जो ब्लू लाइट फिल्टर्स होते हैं वो वाले चश्मे उनको दे सकते हैं ताकि कुछ सूरज का जो इफेक्ट है वो अंडू हो। जब वो सुबह को वापस घर लौट जाएं उसके बाद कुछ देर तक एक अंधेरे कमरे में रह सकते हैं, स्क्रीन्स अवॉइड कर सकते हैं ताकि जब बाहर की धूप है उससे उनके ब्रेन को ये सिग्नल ना मिले कि अभी अभी दिन निकला हुआ है और उनको नींद प्रॉपर ना आ पाए। बाकी कोशिश करें कि अगर नाइट ड्यूटी है तो उसके बीच में जो जो गैप्स होते हैं उसमें रात को ही सो लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक भी होती है, हमारी एक जैविक घड़ी भी है जो अंदर ही अंदर चल रही है। तो नाइट ड्यूटी वैसे तो अननेचुरल है क्योंकि उसके अगेंस्ट जा रही है, लेकिन अगर मजबूरी है तो कोशिश करें कि जो बीच में दिन मिल रहे हैं उसमें ये ट्राई होना चाहिए कि कम से कम तब वो अपनी चीजों को कंट्रोल करें।
4: जी, संजय का मैसेज है, वो कह रहे हैं कि उन्हें नशे की आदत है, वो शराब पीते हैं और स्मोक भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी नींद प्रभावित हो जाती है।
5: जी, ये जो अल्कोहल है और एक जो दूसरा नींद की दवाइयां होती हैं, इन दोनों का एक ही बात है, वो ये है कि ये आपको बेहोश तो कर देती हैं लेकिन ये आपको सुला

0: आती नहीं है। अल्कोहल पी के कई लोग पास आउट हो जाते हैं, रात को रोजाना शराब पीते हैं या फिर कोई और नींद की दवा खाते हैं और उसके बाद पास आउट हो जाते हैं। तो उससे होता यह है कि आप बेहोश हो गए, आपको लग रहा है कि आप सो गए हैं, लेकिन बॉडी में जो स्लीप की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो रही होती है। तो उसमें तो यही होता है सबसे पहला इफेक्ट कि जितने भी तरह के एडिक्शन है, भले ही वो स्मोकिंग का हो जिसमें निकोटीन एडिक्शन है या फिर अल्कोहल का हो, उस एडिक्शन को कम किया जाए और उस एडिक्शन से होने वाले नुकसान को समझा जाए, और वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत नुकसानदायक है।
1: सर, आजकल हम लोग प्रकृति से थोड़े से दूर होते जाते हैं, तो अच्छी नींद के लिए और थकान से बचने के लिए प्रकृति से जुड़ना कितना जरूरी है, आप मानते हैं?
0: प्रकृति से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैंने शुरुआत में अभी तक कई बार मैं दोहरा भी चुका हूँ इस बात को कि धूप या सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, हम लोगों का आजकल बिल्कुल नहीं होता। हम अपने बंद कैबिन्स में रहते हैं, ऑफिसेस के उसमें रहते हैं। उसके अलावा जितने भी नेचुरल लैंडस्केप्स हैं वो सब आपको एक तरह से रूहानी तस्कीन भी पहुँचा रहे होते हैं, यानी आपको एक सोलफुल एक्सपीरियंस भी दे रहे होते हैं। यू फील मोर रिलैक्स्ड, मोर काम,
1: बिल्कुल
0: एंग्जाइटी कम कर रहे होते हैं आपकी। तो अगर आप वैसे ही रहेंगे तो वो सिर्फ नींद के अलावा नेचर से कनेक्ट होने की तो पूरी जिंदगी में काफी आपको फायदे वाले एक्सपीरियंसेस मिलेंगे।
1: जी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, आप इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक। मैं कंचन यहीं पर लेती हूँ विदा। अगला प्रोग्राम आशियाना लेकर आएंगी हमारी दोस्त शालिनी। दीजिए विदा मुझे, नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फैमिली शो आशियाना आपके अपने 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर। और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक खास टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो हर घर से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का टॉपिक है कि क्या घर के काम करना सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है या फिर परिवार का हर सदस्य बराबर का भागीदार है। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि आज मैंने अपनी पत्नी की मदद कर दी, आज तो मैंने अपनी मम्मी की बड़ी हेल्प की थी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या घर के काम में हाथ बटाना मदद कहलाता है या फिर ये परिवार के प्रति हमारी एक साझा जिम्मेदारी है। आज इसी टॉपिक पर, इसी जरूरी टॉपिक पर करने वाले हैं हम खुलकर ढेर सारी बातें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और शुरुआत इस प्यारे से गाने के साथ।

बिल्कुल दोस्तों, ख्वाबों के तिनकों से आशियाना बनता है और आशियाना में बहुत सारे काम होते हैं। और अब ना ज़माना बिल्कुल बदल गया है। आज की जो नारी है ना, वो घर भी संभाल रही है और ऑफिस भी। ऐसे में अगर पति, बच्चे या परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो छोटे छोटे से काम को बांट लें तो घर में प्यार भी बढ़ता है और सम्मान भी। क्योंकि परिवार ना कोई वन मैन शो नहीं है, बल्कि ये तो है टीम वर्क। और घर के जो इतने सारे काम हैं, अगर अकेले एक बंदा करेगा तो सोचिए कितना टाइम और मेहनत लगेगी। और जब आपको दोहरी जिम्मेदारी संभालनी हो, ऑफिस भी और घर भी, तो ज़रूरत ये है कि सब लोग एक टीम की तरह मिलकर काम करें और आपके आशियाने में बना रहे प्यार और सब कुछ हो फर्स्ट क्लास।

बिल्कुल दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे आशियाने में सब कुछ फर्स्ट क्लास हो, यानी सब कुछ टिप टॉप रहे, हंसी खुशी सब कुछ रहे और कभी भी कोई बहस ना हो, कोई मन मुटाव ना हो, कोई तकरार ना हो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपस में एक सामंजस्य बना रहे और घर के काम होते रहे। आई एम टेलिंग यू, अगर घर के काम टाइम से होते रहेंगे तो कभी आपको कोई बहस देखने को नहीं मिलेगी। और होता क्या था ना कि पहले के समय में जो घर के काम होते थे उनको महिलाओं की जिम्मेदारी समझा जाता था, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि आज जो नई पीढ़ी है वो ये समझ रही है कि खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना या फिर घर संभालना, ये कोई ना जेंडर रोल नहीं है बल्कि लाइफ स्किल है। अगर बेटा अपना कमरा साफ करता है, पति किचन में हाथ बटाता है, तो वो किसी पर एहसान नहीं कर रहे बल्कि वो लोग रिश्तों की बराबरी को निभा रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। तो अगर आप अपने घर में ऐसा नहीं कर रहे हैं तो चलिए आज से करिए एक नई शुरुआत और घर के कुछ कामों की जिम्मेदारी खुद उठाइए। आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।

102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना। और दोस्तों, वैसे परिवार में ना झूठ कपट की कोई जगह नहीं होती, बल्कि परिवार के लोगों के लिए सम्मान होना चाहिए। एक बात बताइए, क्या आपके घर में काम बटे हुए हैं? क्या आपके पिता या पति किचन में मदद करते हैं, या फिर आपकी माँ आज भी सब कुछ अकेले संभालती हैं और आप बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि मेरी माँ तो बीमारी में भी या किसी भी सिचुएशन में सबका ध्यान रखती हैं और सारे काम करती हैं। सोचिए ज़रा। और वाकई में अगर ऐसा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी सिचुएशन में आपका क्या रोल होना चाहिए, क्या रुख होना चाहिए।

तो अपनी माँ के प्रति भी थोड़ा सा प्यार जताइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर्स डे पर ही प्यार दिखाना है या किसी खास आयोजन पे। हर दिन माँ के प्रति, घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए, उन्हें समझिए, उनसे बात करिए, उनसे कम्युनिकेट करिए। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी आशियाने की खुशियों के लिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

बिल्कुल दोस्तों, हौले हौले सब होगा, क्योंकि सालों से घरों में कुछ ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं जो आज के ज़माने में बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि आज ना बहुत कुछ बदल चुका है, सबके रोल घर में बदल गए हैं। अब महिलाएं घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं, तो ऐसे में कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। और वो सब कुछ बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे, उसमें समय लगेगा, लेकिन उसमें ज़रूरत है आप सभी को अपने रोल को पहचानने की, और कहीं ना कहीं एक टीम की तरह अपने आशियाने में काम करने की। ऐसा नहीं कि अपने आराम को देखें और बस आराम से बैठे रहें। तो देखिए अपने घर में क्या कुछ काम है और खुद से इनिशिएटिव लीजिए और धीरे धीरे सारे काम निपटाइए। और जब टीम की तरह काम होगा ना घर का, तो और जब काम हो ही जाएगा तो कहीं कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, कोई मनमुटाव नहीं होगा, और बस एक दूसरे के साथ जो आपका बॉन्ड है ना वो और स्ट्रांग हो जाएगा।

दोस्तों वाकई में कई बार परिवार में बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है कि सब बिना कहे ही एक दूसरे की बात समझ जाते हैं और सारे काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं, और तब बस यही लगता है कि वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ फैमिली। और पता है, और जब घर में बच्चे होते हैं तो उनकी परवरिश की कोशिश की जाती है कि सारी अच्छी बातें सीखे, लेकिन बच्चे वो सीखते हैं जो वो घर में देखते हैं। इसीलिए जब वो अपने पिता को घर का काम करते हुए देखते हैं, अपने बड़े भाई को काम करते हुए देखते हैं, तो वो बचपन से ही वो सम्मान और बराबरी सीखते हैं। वो सीखते हैं कि घरेलू काम ना किसी एक जेंडर की जिम्मेदारी नहीं है। तो सच कहूँ तो घर के काम करते करते ना थकान तो सबको होती है, लेकिन काम करना, हाथ बटाना सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और ये सोच के नहीं कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, बल्कि ये सोच के कि हाँ, घर का काम है, हम सबको मिलके करना है। तो फिलहाल आकाशवाणी रेनबो पर बातों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है हमारे साथ।

0: कोयल सी तेरी बोली, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: आए हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

बिल्कुल, आपका और हमारा साथ बना हुआ है। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और आज आशियाना में बात हो रही है अपने घर और परिवारजनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने की। क्योंकि जहाँ पर ना जिम्मेदारियाँ बांटी जाती हैं, वहीं पर रिश्ते टूटते नहीं हैं बल्कि मजबूत होते हैं। इसीलिए अपने आशियाने में ज़रूरत है आपको कामों को बांटने की, जिससे किसी एक पर ना ज़्यादा लोड ना पड़े और साथ ही साथ काम ख़त्म करके परिवार जनों के साथ समय बिताने का, उनके साथ कम्युनिकेट करने का समय आपको डेली की बिजी लाइफ में मिल सके। समय हो गया है 2:44 और मेरे जाने का समय करीब आने वाला है, लेकिन आकाशवाणी पर आपके पसंदीदा गानों का सिलसिला थमने वाला नहीं है।

0: है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

हमेशा गुनगुनाते रहना और एंजॉय करते रहना परिवार में, ये तभी हो पाता है जब घर में नहीं होता कोई क्लेश और सारे काम होते रहते हैं। जब एक टीम की तरह आप अपने आशियाने में हर काम को निपटाते हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है तो प्यार भी बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना में आज बात हो रही है जिम्मेदारी को समझने की, अपने परिवार में एक टीम की तरह काम करने की। दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि माँ या पत्नी बिना शिकायत के सब कुछ काम करती रहती हैं, लेकिन क्या हमने कभी पूछा है आप थक गई होंगी, या कभी बिना कहे एक कप चाय बनाई है, या रसोई में दो मिनट साथ खड़े होकर बातें करते करते कुछ काम निपटाए हैं। यकीन मानिए, ये जो छोटे छोटे से काम, छोटी छोटी सी बातें होती हैं ना,

ये रिश्तों में प्यार भर देती है। तो जरूरत है चार कदम साथ चलने की और हर दम साथ निभाने की।

बिल्कुल दोस्तों, बस चार कदम साथ चलने की ज़रूरत है, हाथ में हाथ मिला के और एक टीम की तरह, एक टीम स्पिरिट के साथ घर में एक बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। अगर कहीं आपको लग रहा है कि आपके घर में कलेश कुछ बढ़ने लगा है, तो अपने आप को नियंत्रित करिए, गुस्से को कंट्रोल करिए और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाइए। क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है कि घर चलाना, घर के सारे काम करना, फिर चाहे वो कुकिंग हो या फिर बाकी के काम, वो सिर्फ महिलाओं के काम नहीं है, बल्कि परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी है। और जब जिम्मेदारियां साथ निभाई जाती हैं, तभी परिवार सच में परिवार बनता है। इसी खूबसूरत सोच के साथ फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं एक बढ़िया से गाने के साथ। आप दीजिए अपनों का साथ, हाथ बटाइए और बढ़ाइए प्यार।

समय 2:56 और फिलहाल मेरे जाने का समय है। आपको छोड़ जाते हैं इस बढ़िया से गाने के साथ। आगे आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर, इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है हमारे साथ।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा। आज कार्यक्रम में हमारा विषय है प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस, यानी मौखिक और दंत समस्याओं से कैसे बचाव करें। और इस खास विषय पर हमारे साथ हैं डॉक्टर हरमीत सिंह, जो हैं डेंटल स्टाफ सर्जन डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: थैंक यू जी, थैंक यू।
1: श्रोताओं, ओरल हेल्थ हमारे पूर्ण स्वास्थ्य का आईना होती है। अगर मौखिक स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो संपूर्ण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है, खासकर हमारे पाचन तंत्र पर। और इस विषय से जुड़े आपके पास भी हैं सवाल, तो आप हमें करिए कॉल, जिसके लिए हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1080 और 2342-1082। आप हमें व्हाट्सएप से मैसेजेस भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर है 9868-107070। डॉक्टर साहब, अगर हम दांतों और मौखिक स्वच्छता की बात करें तो ये कितना ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए? दांत और मुंह में परेशानी आने के कारण क्या है, क्यों ये ख़राब होते हैं दांत?
2: देखिए, ओरल कैविटी जो मुख है, इसको पहले इट इज़ अ मिरर इमेज ऑफ जनरल हेल्थ ऑफ द बॉडी, मींस पूरे जनरल हेल्थ का स्टेटस जो है ओरल कैविटी से पता चल जाता है। ठीक है, अगर उसके जनरल कंडीशन, पेशेंट की डेंटल कंडीशन की पुअर है, कि उसमें दांतों में कैविटीज हो रही हैं, उसके मसूड़े खराब हैं, उसमें पायरिया लग रहा है, और यहाँ उसके मुंह के अंदर सफ़ेद निशान या कैंडिडाइसिस जिसको बोलते हैं वो हो जाता है, या उसके कोई इम्पैक्टेड टीथ हैं उसकी वजह से स्वेलिंग है, या पेशेंट कोई आर्टिफिशियल डेंचर्स पहनते हैं, तो उसको कैसे मेंटेन करना है, ये सब हम आज इस प्रोग्राम में हम जानेंगे। इसके अलावा टीएमजे की प्रॉब्लम्स हैं, जो जॉ का जॉइंट होता है, जबड़ा जो हिलता है जॉइंट, तो उससे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल पब्लिक में, और उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मुंह में काफ़ी अल्सर्स हो जाते हैं कई बार, वो सिस्टेमिक डिसीजेज जो बॉडी की जनरल डिसीजेज हैं उससे रिलेटेड हैं, कई बार फीवर के साथ अल्सर्स आ जाते हैं और कैंसर तक का रूप ले लेते हैं, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इस शो में।
1: जी, तो सुना श्रोताओं आपने, आज हम डिस्कस करेंगे दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की और मुंह में होने वाली परेशानियों की। देखिए, अगर आपके पास इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल है ना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे नंबर है 011-2342-1080 और 2342-1082। व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, इस खास विषय पर बहुत सी जानकारी आपसे लेंगे, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कैविटी की। अगर बात कैविटी की करें तो कौन सी लापरवाही है जिसकी वजह से दांतों में कैविटी की समस्या हो जाती है?
1: देखो, डेंटल कैविटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा सभी दांतों में, ऑलमोस्ट जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं सब में कैविटीज़ होती हैं। और जो इसका प्रमुख कारण है वो है कि हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं करना। जैसे कि हम हमेशा पब्लिक में और पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि ब्रश जो है ट्वाइस डेली करना चाहिए, 2 मिनट के लिए करना चाहिए, और कौन सी टूथपेस्ट के साथ करना चाहिए ये भी बताते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट रिकमेंडेड है, जो कि एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री है, उसमें हम हमेशा रिकमेंड करते हैं फ्लोराइड होना चाहिए। बिकॉज फ्लोराइड है वो कैविटीज़ को प्रिवेंट करता है, कि कैविटी को रोकता है। नॉर्मली जो हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है वो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, एनेमल। ओके, बट एनेमल में भी केरीज हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो फ्लोराइड है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट को फ्लोरो एपेटाइट में कन्वर्ट करता है, विच इज स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल हाइड्रोक्सी एपेटाइट। सो हमें हमेशा फ्लोराइड टूथपेस्ट ही यूज करना चाहिए। उसकी क्या कंसेंट्रेशन होनी चाहिए, किस एज ग्रुप में, वो सब मैं आपको साथ साथ इस प्रोग्राम में बताते रहूँगा।
0: जी जी जी डॉक्टर साहब, इसी बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, ले लेते हैं उनका।
1: हाँ जी, जरूर।
0: हेलो।
2: हेलो
0: जी।
2: हाँ, सबसे पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आपको भी
1: नमस्कार।
2: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही अर्ज कर रहा हूँ।
0: जी।
2: तो मेरे 4 छोटे-छोटे सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि कई शख्स कहते हैं हमारे मुंह में 32 दांत हैं, कई कहते हैं 28 हैं, क्योंकि मेरे मुंह में स्वयं 28 दांत हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये मतलब मदर फादर की वजह से ही ऐसा होता है, या फिर हमारा कोई कुदरतन मतलब ऐसी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है। पहला सवाल मेरा ये
0: जी।
2: दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो अक्कल अक्कल दांत होती है, जो अक्कल दांत जिसे कहते हैं,
0: जी जी,
2: अगर अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसका हमें घरेलू स्तर पर क्या करना चाहिए उपाय। तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हम खाना खाने से पहले भी हाथ धोते हैं और खाना खाने के बाद भी हाथ धोते हैं, और ऐसा ही अगर हम जो है दांत साफ करते वक्त ऐसा करें तो कोई हर्ज तो नहीं। और चौथा और आखिरी सवाल वो ये है कि हम कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें, किसी भी पेस्ट को इस्तेमाल कर लें, किसी भी ब्रश को, न जाने होता क्योंकि 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद मुझसे तो सेमल आनी फिर शुरू हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले चिगम का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे 4 सवाल है, प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
0: जी डॉक्टर साहब, इनके सवाल आपने सुन लिए।
1: 3-4 सवाल हैं इनके। तो सबसे पहला सवाल तो इनका ये था कि इनके 28 दांत हैं और इनके 32 क्यों नहीं हैं। तो इसका इसका रीजन ये है कि पहले जो इंसान था, मतलब सेंचुरीज काफ़ी सालों से पहले, तो उस टाइम जो है रॉ फूड खाता था, फ्रूट तोड़ा और वो खा लिया, पका के या सॉफ्ट फूड नहीं खाता था। तो उस टाइम पे 32 दांतों की इंसान को ज़रूरत होती थी। तो जैसे जैसे इंसान की डेवलपमेंट हुई, सॉफ्ट फूड पे आया, तो ऐसे ऐसे 32 जॉ का साइज जो है श्रिंक होता जा रहा है। तो उसकी वजह से जो 32 दांत होते थे, जो लास्ट के मोलर हैं, विजडम टीथ जिसको कहा जाता है, वो अब या तो इरप्ट ही नहीं होते हैं, या इरप्ट होते हैं तो टेढ़ी मेढ़े डायरेक्शन में होते हैं, तो वो फिर फर्दर प्रॉब्लम करते हैं। तो इसलिए चिंता की बात नहीं, अगर आपके 28 दांत हैं तो वो भी नॉर्मल ही है, तो आपको कोई आर्टिफिशियल लगवाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ये है कि अगर इम्पैक्टेड टीथ हैं, जो कि विजडम टीथ जिसे कहते हैं, अगर अगर वो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो फिर आप उसका चेकअप कराइए आपके

0: नियरेस्ट डेंटल सेंटर पे, अगर वो कोई पैथोलॉजी उसके साथ एसोसिएटेड है या वो अगर टेढ़ा है और वो साथ वाले दांत को डैमेज कर रहा है, तो फिर उसका एक्सरे करा करके उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। या कई बार क्या होता है, जो इम्पैक्टेड टूथ है जो अभी निकला ही नहीं है, उसके ऊपर गम की कवरेज होती है, तो वो बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन करती रहती है, उसको शोर थ्रोट भी होता है, कई बार उनको फीवर भी हो जाता है रिकरेंट उसकी वजह से। तो आपका चेकअप होना चाहिए, एक्सरे होना चाहिए। अगर उसके साथ टूथ बार बार प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको सर्जिकली हम रिमूव करते हैं। अगर कोई टूथ में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसके साथ कोई पैथोलॉजी एसोसिएटेड है, कई बार इम्पैक्टेड टीथ के साथ सिस्ट, रसोली या कोई ट्यूमर भी एसोसिएट हो जाता है, तो इसका रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए एवरी 3 ईयर और 5 ईयर। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक एक्सरे जरूर होना चाहिए, कहीं उसके साथ कोई पैथोलॉजी तो एसोसिएटेड नहीं है। तो इस तरह से हम इम्पैक्टेड टीथ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
1: जी जी, तो सुना श्रोताओं आपने कि जो दांत है हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अपना जो हम स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना है वो इन्हीं से चबाते हैं और हमारे पेट तक जाता है, और इनकी खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए। और इसी पर आज हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस की। इससे अगर आपको भी है कोई आपके मन में सवाल या जानना चाहते हैं कोई बात, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ना, जिसके लिए नंबर है 0112342 1080 और 2342 1082। व्हाट्सएप से मैसेजेस के लिए 9868107070 है हमारा नंबर। डॉक्टर हरमीत सिंह है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, हम कैविटी की बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि कैविटी की समस्या क्यों होती है, इसका कैसे पता चले कि किसी को कि उसको कैविटी हो गई है और इसका निदान क्या है?
0: देखिए, कैविटीज़ की जो नॉर्मली समझा जाता है कि कैविटीज़ जो है ब्लैक कलर की, जिसमें होल हो जाता है, वो कैविटीज़ हो गई हैं, ठीक है। बट ये स्टार्ट होता है एज अ डेंटल केरीज, जो कि एक वाइट स्पॉट लीजन की तरह स्टार्ट होता है। ये लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है इस चीज़ के बारे में कि वाइट स्पॉट लीजन्स जो होते हैं डेटर एक्चुअली डेंटल केरीज, जो इनिशियल स्टेज में है, जो कि प्रिवेंट कर सकते हैं उसको कैविटीज़ में प्रोग्रेस होने में। तो वो बहुत अच्छी स्टेज है उसको प्रिवेंट करने की। हम उसको फ्लोराइड टूथपेस्ट एडवाइस करते हैं और उसको फ्लोराइड जेल टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए देते हैं और फ्लोराइड वार्निश अप्लाई करते हैं क्लिनिक में, तो उससे जो है हम डेंटल कैविटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कई बार हमने सुना होगा और देखा होगा, अपने साथ भी होता है कि जब हमें दांत में दर्द होता है तो हमें लगता है कि इसकी क्या वजह है, कि कोई कैविटी हो गई है या ये जो दर्द है वो नॉर्मल है। तो कैसे पता करें कि ये दांत का जो दर्द है वो नॉर्मल है या कैविटी है उसमें?
0: नहीं, देखिए, उसके लिए आपको एक दंत चिकित्सक के पास, डेंटिस्ट के पास ही जाना होगा। वो क्लिनिकली चेक करेंगे कि दांत कि में कैविटी है या कोई उसके साथ गम्स की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या कई बार कुछ लोगों को न्यूरेल्जिया जैसी पेन होती है, करंट की तरह लगता है, तो उसमें दांत की कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी दांत में पेन होती है। कई बार टूथ जो है क्रैक हो जाता है, जो कि विजिबल नहीं होता क्लिनिकली और रेडियोग्राफिकली भी, एक्सरे में भी नहीं दिखता है, तो उसको जो है क्रैक टूथ सिंड्रोम जैसे कि हम कहते हैं, तो वो डेंटिस्ट के पास जाकर ही आप अपना डायग्नोसिस करा सकते हैं और ट्रीटमेंट करा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, हम आगे बात करेंगे। एक श्रोता जुड़ गए हमारे साथ कॉल लाइन पर। हेलो।
2: हेलो
1: जी।
2: हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरी एज 48 है।
0: हाँ जी। और
1: आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम कुंवर सिंह है
1: जी।
2: तो मेरे ये टीथ में गैप आ रहे हैं, तो उसका क्या इलाज है? नीचे वाले दो जो फ्रंट के टीथ में ज्यादा गैप आ रहा है
1: जी,
2: तो उसका सोल्यूशन क्या है? इस एज में क्या किया जा सकता है, ये धीरे-धीरे वाइडन होते जा रहे हैं?
0: देखिए, जैसे कि आपने एज अपना 48 बताया है, तो जनरली इस एज में गैप होना का कारण ये हो सकता है कि आपके टीथ जो हैं वो वीक हो रहे हैं, मीन्स उसके गम्स जो हैं जो इसको होल्ड करके रख रहे हैं वो गम्स वीक हो गए हैं। तो हो सकता है कि उसमें बोन रिजॉर्प्शन हो गया हो, बोन जो है दांतों को छोड़ के नीचे चले जाने की वजह से टीथ का फ्लेयरिंग हो जाता है, तो गैप हो सकता है उसकी वजह। तो आपको एक डेंटल सर्जन से चेकअप कराना चाहिए, तो जो भी उसका कारण है उस कारण को दूर करके उसका सलूशन किया जा सकता है।
1: जी, उम्मीद है कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कैविटी की, अब हम बात करते हैं पायरिया की। ये किस तरह की बीमारी है, इसके क्या लक्षण हैं और बचाव कैसे करें इससे?
0: देखिए पायरिया एक जनरल टर्म है जो कि साइंटिफिकली हम उसको जिंजिवाइटिस या पेरिडोनटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से होता है कि जब कोई पर्सन जो है ठीक से ब्रश नहीं करता है और उसका प्लाक जो है डिपॉजिट रह जाता है दांतों के ऊपर, तो उसकी वजह से जो प्लाक है वो इरिटेट करता है, बैक्टीरिया उसमें ग्रो करते हैं तो वो इरिटेट करते हैं गम्स को, मसूड़ों को, तो उसकी वजह से तो बॉडी का रिएक्शन होता है तो गम्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जैसे ही पेशेंट ब्रश करता है तो उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, और होता यह है कि पेशेंट ये समझता है कि ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्रश करना छोड़ देता है, वो उंगली से क्लीन करना शुरू कर देता है। तो होना ऐसा नहीं चाहिए, अगर आपका प्लाक डिपॉजिट है मसूड़ों के आसपास तो ब्रश रेगुलर करते रहना चाहिए, सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए। और इसके अलावा अगर फिर भी अगर प्रॉपर केयर ना की जाए तो जिंजिवाइटिस फर्दर प्रोग्रेस हो जाती है पेरिडोनटाइटिस में। उसमें क्या होता है, गम्स के साथ साथ बोन भी जो है डाउन मूव करना शुरू कर देते हैं, रिजॉर्प्शन होना शुरू कर जाते हैं, तो उससे जो है पॉकेट्स बन जाती हैं गम्स में, पेरिडोनटल पॉकेट्स जिनको हम कहते हैं, और साथ साथ टीथ की मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो इन सबको टुगेदर हम बोलते हैं पायरिया हो गया है। तो उसके लिए प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक करनी चाहिए और डेंटल फ्लॉस करना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। हम सबको बोलते हैं ब्रश एंड फ्लॉस योर If you want to keep your teeth clean, the teeth.
1: जी श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल ओरल डिजीजेज, यानी मौखिक और दंत समस्याओं से कैसे बचाव करें, इस विषय पर। अगर इससे संबंधित आपके पास भी हैं कोई सवाल या चाहते हैं आप अपनी परेशानी का समाधान, तो आप हमें कॉल करिए ना, नंबर से 01123421080 और 2342102। व्हाट्सएप से मैसेज के लिए नंबर नोट कर लीजिए 9868107070। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आपकी सेहत से जुड़े कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज है हमारे साथ डॉक्टर हरमीत सिंह, जो हमें बता रहे हैं प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस जैसे खास विषय पर बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़े उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल।
2: हाँ जी, जरूर।
1: हेलो हेलो हेलो
3: हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है?
1: जी जी जी।
3: हाँ जी, नमस्कार, मैं सपना बात कर रही हूँ।
1: जी
3: सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे आप लोग प्रोग्राम्स करते हैं, हम सबको इतना बेनिफिट मिलता है इससे।
1: जी, धन्यवाद।
3: और दूसरा ये है कि मेरे दो पेशेंट्स हैं।
1: जी।
3: एक तो ये है कि मेरे पीछे वाले मोलार्स ऊपर और नीचे दोनों में ही कीड़ा लगा है।
1: जी।
3: काला काला
1: जी,
3: जो बहुत ही क्लियरली ऑब्वियसली विजिबल है सभी को, मगर फिर भी डेंटिस्ट ने मुझे बोला कि जब तक वो आपको ट्रबल ना करें तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो मुझे पूछा था कि क्या उसको ऐसे छोड़ना सेफ है, कहीं वो इधर उधर और तो नहीं हो जाएगा
1: जी
3: इन्फेक्शन। नंबर टू, मेरी आरसीटी, एक डेंटिस्ट ने बोला कि मुझे आरसीटी कराना चाहिए, एक और मोलार है मेरा।
1: ओके।
3: उसमें बहुत ज्यादा मुझे पेन था और वो थोड़ा थोड़ा सा हिलने भी लगा है। एक ने बोला कि आप उसको निकलवा लीजिए और दूसरे ने बोला आप आरसीटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने आरसीटी करवा लिया है उसका, मगर अभी भी खाने में मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं है। ऑल्दो पहले के जितना पेन तो उसमें नहीं है, मगर फिर भी वो उतना कंफर्टेबल भी नहीं है खाने में।
1: जी,
3: तो ये पूछा था कि उसका मतलब क्या हमने ठीक किया उसमें आरसीटी कराकर।
1: जी
2: देखिए, आपका पहला सवाल था कि आपके दांतों में काला काला कीड़ा लग गया है पीछे वाले दांतों में। देखिए, काला काला कीड़ा जो है वो कैविटीज ही हैं कि नहीं है, वो या वो सिर्फ एक स्टेन्स ही हैं। जो ब्लैक दिखता है वो जरूरी नहीं कि कैविटीज ही हैं, अगर उसमें होल है तो उसको हम कैविटीज बोलते हैं। हो सकता है वो कुछ स्टेन्स हो, एक्सटेंसिक स्टेन्स हो, जो आप ठीक से क्लीन नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से वो ब्लैक हो गए हैं। तो जरूरी नहीं कि वो कैविटीज ही हैं, तो आप एक चेकअप करा सकते हैं कि वो है कि नहीं है। तो और दूसरी चीज आपने बोला कि वो स्प्रेड ना हो जाए, कैविटीज जो है दूसरे दांतों में ना लगे। देखिए कि इन कैविटीज जो है, डेंटल कैविटीज, वो इन्फेक्शियस नहीं होती कि एक दांत से दूसरे दांत को लग गई, या एक साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड में कैविटी लग गई, या एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में कैविटीज का इन्फेक्शन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डेंटल कैविटीज जो है प्लाक की वजह से होती है, जो प्लाक दांतों के आसपास डिपॉजिट हो जाता है, और जब आप मीठा साथ में खाते हैं तो जो बैक्टीरिया है प्लाक में वो शुगर को कन्वर्ट करते हैं एसिड में, और वो एसिड जो है टूथ को डिसॉल्व करता है, एनेमल को डिसॉल्व करता है, जिसकी वजह से उसमें कैविटीज हो जाते हैं। तो मेन है आपको प्लाक को कंट्रोल करना है प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से और डेंटल फ्लॉस करके, तो इस तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है डेंटल कैविटीज का। और दूसरा क्वेश्चन बताया कि आपका टूथ में पेन था, उसका रूट कैनाल हो गया है, तो आप जो है अपना चेकअप करवा करके आरसीटी के बाद का एक्सरे करा करके देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके कैपिंग, उसमें फुल कवरेज क्राउन उसके ऊपर लगवा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, कैविटी काफ़ी लोगों में एक कॉमन प्रॉब्लम है, और इसकी क्या वजह है और कैसे बचाव कर सकते हैं इससे?
2: देखिए, डेंटल कैविटीज जो हैं काफ़ी टाइम से

0: हैं लोगों में, ठीक है। तो हमारे जो हैं दो मॉडल होते हैं डेंटिस्ट्री में, एक होता है ऑपरेटिव मॉडल जो कि मॉडर्न डेंटिस्ट्री जो डॉक्टर जी वी ब्लैक ने सेंचुरीज एगो दिया था कि दिस इज ऑपरेटिव मॉडल कि कैविटीज हैं उसमें कैविटीज को क्लीन किया उसमें फिल कर दिया, मीन्स ड्रिल एंड फिल जो मॉडर्न डेंटिस्ट्री डेट इज बेस्ड ऑन द। तो कैविटीज तो कम नहीं होंगी, जो जिसको कैविटी हो गई है उसको हमने ड्रिल करके फिल कर दिया, तो हमने प्रिवेंशन के लिए तो कुछ किया नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने प्रिवेंटिव मॉडल अपनाया, नॉन ऑपरेटिव केयर दिया उन्होंने पब्लिक में, तो उससे जो है कैविटीज होने से उन्होंने रोका का, तो उन वो डेवलप कंट्रीज ने काफी हद तक कैविटीज को कंट्रोल कर लिया है। तो उन्होंने क्या क्या अपनाया तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि वो जो है ब्रश जो है आपको एक तो दिन में दो बार ही करना चाहिए, सुबह और रात को 2 मिनट तक करना चाहिए, और पेस्ट कौन सा यूज करना चाहिए और कब से शुरू करना चाहिए ब्रश करना। जैसे जो बेबी है न्यू बॉर्न उसका फर्स्ट टूथ अपीयर होता है 8 to 10 मंथ ऑफ एज में, तो जैसे ही फर्स्ट टूथ अपीयर हो तो उसको जो है सॉफ्ट बेबी ब्रश से उसको क्लीन करना स्टार्ट करना चाहिए, बिना शक आप बिना टूथपेस्ट के कर सकते हैं, ठीक है। और उस बच्चे का फर्स्ट विजिट टू द डेंटिस्ट शुड बी एट हिज फर्स्ट बर्थडे, मीन्स 1 ईयर की अराउंड उसको फर्स्ट विजिट आना चाहिए। सेकेंड जो न्यू बॉर्न टू less than 18 ईयर जो किड्स हैं जो चिल्ड्रन हैं उसमें जो ब्रश है बिना पेस्ट के आप कर सकते हैं, बट 18 मंथ्स to 6 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनको जो है किड्स टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए जिसमें कि फ्लोराइड की मात्रा 500 ppm होना चाहिए, और जो 6 ईयर से अबव हैं उनको 1000 ppm एडल्ट टूथपेस्ट फ्लोराइड वाला यूज कर सकते हैं, तो उससे जो है प्रिवेंशन होगा डेंटल कैविटीज का। और सेकंड ब्रश करना कैसे है, ब्रश करने के अलग अलग टेक्निक होती हैं, जैसे कि हम मोस्ट कॉमनली मॉडिफाइड बास टेक्निक जनरली हम एडवोकेट करते हैं, तो उसमें ये होता है ब्रश के ब्रिसल्स को 45 डिग्री एंगल पे रख करके गम लाइन पर और उसको वाइब्रेटरी मोशन देना है और उसको फिर डाउन मूव करना है टुवर्ड्स द च्यूइंग सरफेस। तो मॉडिफाइड बास टेक्निक आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं तो आप उसको उसका वीडियो मिल जाएगा कैसे करना चाहिए ब्रश। और इसके अलावा आपको जो 18 मंथ से ऊपर मैंने आपको बताया कि 500 ppm टूथपेस्ट यूज़ करना है, 6 ईयर ऑनवर्ड्स जो है एडल्ट टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और ब्रशिंग फ्रिक्वेंसी ट्वाइस डेली करना है, और इसके साथ साथ डेंटल फ्लॉस जरूर करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस है इंटर डेंटल एरिया जो है वो क्लीन करने के लिए होता है, और वो एक थ्रेड की तरह है, वो फिंगर्स पे लगा के सभी दांतों को बीच में से क्लीन करना चाहिए। आजकल जो है एंगुलेटेड फ्लॉस भी आते हैं, हैंडल वाले फ्लॉस जिसको बोलते हैं राइट एंगल्ड फ्लॉस, तो उसमें ये है कि हैंडल लगा होता है उसको होल्ड करके आप इंटर डेंटल एरिया को क्लीन कर सकते हैं, उससे कैविटीज की और गम्स की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। फिर भी आपको रेगुलर एवरी 6 मंथ डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए डेंटल चेकअप के लिए।
1: जी डॉक्टर साहब, इसी बीच में हमारे पास सवाल आ रहे हैं, सरोज मल्होत्रा साकेत मेरठ से लिख रही हैं कि डॉक्टर साहब छोटे बच्चे ठीक से ब्रश नहीं करते, क्या करें, अभी आपने जो बताया, और उसके बाद क्या नीम से दांत की का नीम का दातुन करने से बीमारियों से बचाव हो सकता है, और क्या फिटकरी से गार्गल करते रहना ठीक है।
0: देखिए, अगर बच्चे ब्रश नहीं कर रहे हैं तो अब उनके पेरेंट्स को उनको सिखाना है कि कैसे ब्रश करना है, पेरेंट्स मिरर के सामने खड़े होकर पेरेंट्स उनको सिखाएं कि कैसे ब्रश करना है, वो खुद करें और रात को सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें, खुद भी करें बच्चों को भी करवाएं।

0: कर सकते हैं आप ब्रश करने के बाद।
1: और एक सवाल था कि नीम का दातुन क्या दांतों के लिए फायदेमंद है?
0: देखिए हम यहाँ पर साइंटिफिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एविडेंस बेस्ड, ठीक है। तो हम जो है एज अ डेंटिस्ट, मैं एज अ प्रोफेशनल, मैं तो टूथब्रश एडवाइस करूंगा, सॉफ्ट टूथब्रश करना चाहिए दांतों को क्लीन करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़ गए कॉल लाइन पर, उनका कॉल ले लेते हैं।
0: हाँ जी जरूर।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी,
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
2: मैं हेमलता बात कर रही हूँ दिल्ली से। मेरे दो सवाल हैं डॉक्टर सर से। सबसे पहला सवाल मेरा है कि वैसे टेढ़े मेढ़े दांतों को अगर मुझे ब्रेसेस करवाना है तो उसकी कोई पर्टिकुलर एज होती है या हम कभी भी करवा सकते हैं किसी भी एज में? और अगर हम बड़ी एज में करवाते हैं तो क्या उससे फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि मैंने दांत में ना अपना कैपिंग करवाया था, तो वो 2 साल पहले करवाया था, तो अभी उस जहाँ पे कैपिंग करवाया था जिस दांत में, वो उसमें थोड़ा सा दर्द होता है, कभी कभी होता है और समटाइम बहुत तेज भी होता है, तो क्या मुझे वो कैपिंग चेंज करवानी चाहिए? और एक तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हम लोग दांतों की क्लीनिंग के लिए या उनकी वाइटनिंग के लिए हमें साल में हम कितनी बार उसे करा सकते हैं?
1: जी
2: यही मेरे 3 सवाल है, थैंक यू।
0: देखिए आपका जो सवाल था कि कैपिंग करी हुई है दांत के ऊपर और कैपिंग की वजह से आपको पेन हो रहा है, देखो कैप जो होता है वो तो आर्टिफिशियल मटेरियल है टूथ के ऊपर, तो उसकी वजह से तो पेन नहीं है। पेन तो है कि क्या आपने उस दांत में आरसीटी कराया था कि नहीं कराया था। जनरली आरसीटी के बाद ही हम कैप एडवाइस करते हैं दांत के ऊपर। और अगर अभी भी आपको पेन हो रहा है तो हो सकता है आपने आरसीटी ना कराया, उसमें कैविटी हो जो नीचे नर्व को टच कर रही है, उसकी वजह से पेन हो सकता है। और दूसरा, अगर आप ठीक से इंटरडेंट कैप के साथ इंटरडेंटल एरिया में क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं डेंटल फ्लॉस से या इंटरडेंटल ब्रश से, तो वहाँ पर गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी माइल्ड पेन हो जाता है। तो आप अपने घर के पास जो भी डेंटिस्ट हैं आप उनको उनके पास चेकअप कराइए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए।
1: सर इनका सवाल था कि क्या टेढ़े मेढ़े दांत को ठीक कराने की कोई उम्र है या किसी भी उम्र में कराए जा सकते हैं?
0: देखिए अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो जितना जल्दी कराएंगे उतना ईजिली हो जाए, और जितना डिले करेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा और प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो जल्दी से जल्दी आपको कराना चाहिए इसका।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और सवाल आया है व्हाट्सएप पे। सुनील कुमार विश्वकर्मा लखनऊ से पूछ रहे हैं, क्या टूथपेस्ट के स्थान पर दंत मंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है? इनकी उम्र 52 वर्ष है और ज्यादातर दांत इनके घिस चुके हैं, ऐसा लिखा है इन्होंने।
0: देखिए जो मंजन जिसको हम टूथ पाउडर कहते हैं वो जो है एब्रेसिव होता है, वो दांत को घिस देता है। आप खुद ही कह रहे हैं कि दांत घिस गए हैं, वो दांत घिस ही इसलिए गए हैं कि आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो हम पाउडर नहीं एडवाइस करते हैं यूज़ करने के लिए। टूथ पेस्ट यूज़ करना चाहिए, फ्लोराइड वाला टूथ पेस्ट जिसमें कि एडल्ट में एटलीस्ट 1000 mg/ppm 1000 ppm का फ्लोराइड होना चाहिए, तो पेस्ट यूज करना चाहिए।
1: जी जी जी। दिनेश कुमार भंडारी हमें नेपाल से लिख रहे हैं कि उनकी उम्र 37 साल है और जो उनके दांत हैं गम से खून निकलता है, क्या समस्या है ये इन्हें बताएं प्लीज।
0: अगर आपको कोई जनरल बीमारी या सिस्टेमिक बीमारी नहीं है तो उसका जो मेन रीज़न जो होता है गम्स में से ब्लीडिंग का, वो लोकल फैक्टर जो कि प्लाक जो गम्स के आसपास डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जिंजिवाइटिस या पेरिडोंटाइटिस हो जाता है, तो ब्लीडिंग होती है ब्रश करते टाइम, कई बार अपने आप भी होना शुरू हो जाता है ब्लीडिंग। तो उसका मैंने पहले भी बताया कि आपको ओरल हाइजीन जो है ठीक रखना है, ब्रशिंग ट्वाइस करना है जिस टेक्निक से बताया वैसे करना है, और सॉफ्ट ब्रश यूज करें और इंटरडेंटल ब्रश या फिर डेंटल फ्लॉस करके प्लाक को कंट्रोल करें। अगर आपके दांतों के आसपास टार्टर डिपॉजिट हो गया है जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, तो उसका आपको प्रोफेशनल स्केलिंग एंड क्लीनिंग करा करके एक बार कराना होगा, उसके बाद उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं दांतों को।
1: जी डॉक्टर साहब, अंगद यादव आजमगढ़ यूपी से हमें लिख रहे हैं कि इनका 5 साल का बच्चा है जिसके ऊपर के दांत काले दिखाई दे रहे हैं और सामने के दांत जो हैं आधे आधे गल गए हैं। बच्चा रात में रोता है और उसको दर्द की शिकायत रहती है। डॉक्टर के पास ये गए थे और उन्होंने बोला है कि बच्चा छोटा है, दांत का दर्द नहीं, उसे किसी तरह की और वजह से दर्द हो रहा है। बच्चे के का दांत जो है वो अभी दूध का दांत है, क्या करें?
0: देखिए 5 साल की उम्र है तो वो दांत तो उसके दूध के ही हैं, डेसिड्यूस टीथ जिसको हम कहते हैं। तो अगर उसके दांत काले हो गए हैं या तो उसमें कैविटीज़ हो गई हैं या फिर उसको कभी चोट लगी होगी जिसकी वजह से वो डेड हो गए हैं दांत, उसकी वजह से भी काले हो जाते हैं। तो अगर उसको उसमें दर्द हो रहा है तो आपको चेक

0: भी कराना पड़ेगा, तो क्या दांतों की वजह से है या नहीं है, अगर है तो फिर उसका ट्रीटमेंट कराना होगा, यही है इसका।
1: डॉक्टर साहब, मुंह से जुड़ी परेशानियों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं कॉल लाइन पे, ले लेते हैं उनको कॉल। हेलो हेलो हेलो, लगता है कॉल कट गया है। सर, हम अभी बात कर रहे थे दांतों की, अब मैं बात आपसे करूंगी मुंह से जुड़े स्वास्थ्य की। एक बेहद कॉमन प्रॉब्लम है मुंह से दुर्गंध आना। ये समस्या कई बार उन लोगों को भी परेशान करती है जो अच्छे से ब्रश करने के साथ साथ टंग क्लीनिंग पर भी ध्यान देते हैं, बट इसका कारण क्या है?
0: देखिए, मुंह से स्मेल आना, जैसे हेलिटोसिस हम कहते हैं, वो मोस्ट कॉमनली तो गम्स की प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से होती है। जैसे आपने बोला कि ब्रश करते हैं, तो ये नहीं बताया आपने कि फ्लॉस भी करते हैं। मैं बार बार एडवोकेट कर रहा हूँ कि ब्रश भी करना है, फ्लॉस भी करना है। डेंटल फ्लॉस जो एक धागे की तरह होता है, वो सभी को डेली करना चाहिए फ्लॉस। तो फ्लॉस आप साथ में करिए, इंटरडेंटल एरिया क्लीन रहेगा तो उसकी वजह से स्मेल नहीं आएगी। अगर ये तो है लोकल फैक्टर जो गम्स की वजह से हो जाता है, यहाँ कुछ कैविटीज़ हैं आपके दांतों में बहुत बड़ी बड़ी, जिसके अंदर के फूड डेब्रिज रह जाते हैं, क्लीन नहीं हो पाते, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो वो फाउल ऑडर प्रोड्यूस करते हैं, तो कैविटीज़ की वजह से भी हो सकती है। तो अगर आपके ओरल हाइजीन पहले चेकअप कराइए, अगर सब ठीक है तो उसका कुछ सिस्टेमिक कारण भी हो सकता है। अगर कुछ आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हेलिटोसिस हो जाती है, या ENT की जैसे पैरानेजल साइनसिस में कुछ साइनोसाइटिस है, उसकी स्मेल भी इसी तरह माउथ के करीब आती है, तो इस तरह से हो सकती है।
1: जी, मुंह के अंदर दुर्गंध आने का कारण हमारा पाचन तंत्र भी हो सकता है पेट से जुड़ी परेशानियां। डॉक्टर साहब, टंग क्लीनिंग जो है वो एक ओरल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ सर ये भी बताइए कि मुंह में छाले हो जाना जो कई बार एक बड़ी समस्या बन जाता है, खासकर गर्मी के सीज़न में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इसकी क्या वजह है? क्या ये छाले ही अल्सर हैं या कुछ और कैसे इनका निदान किया जा सकता है?
0: देखिए, टंग क्लीनिंग तो जरूर करना चाहिए। जब हम ब्रश करते हैं सभी, तो उसी ब्रश से आप टंग को भी क्लीन कर सकते हैं। तो टंग जो है नॉर्मली पिंक कलर का होता है, तो ऐसे उसके ऊपर कुछ डिपॉजिट्स नहीं होने चाहिए, ब्लैक या वाइट कलर का। तो अगर कुछ है तो उसका चेकअप होना चाहिए। तो सेकंड सवाल था आपका कि मुंह में छाले हो जाते हैं। देखिए, छाले तो बहुत तरह के मुंह में हो जाते हैं। बहुत कॉमन जो है वो तो है एप्थस अल्सर होते हैं, वो जनरली होते हैं स्ट्रेस की वजह से, या नींद ना पूरी हो उसकी वजह से, या कुछ कई बार क्या होता है कि जैसे फीवर हुआ तो उसकी वजह से ब्लिस्टर्स हो जाते हैं मुंह के अंदर या लिप्स के पर। तो ब्लिस्टर जब रप्चर होते हैं तो वो जो है वायरल हर्पिस इन्फेक्शन की वजह से भी जो है छाले हो जाते हैं। और इसके अलावा कोई दांत कहीं शार्प है, या कोई कैक आर्टिफिशियल क्राउन लगा हुआ है वो शार्प है, उसके रेगुलर ट्रॉमा की वजह से भी मुंह में अल्सर हो जाते हैं। और कुछ लोगों को जो है हैबिट होती है टोबैको खाने की या स्मोकिंग की, तो उनमें भी अल्सर हो जाता है। तो अगर कोई भी अल्सर, किसी भी तरह का अल्सर है, 2 से 3 हफ्ते की अगर उसकी हिस्ट्री है, तो उसका बायोप्सी इज मस्ट, वो मैंडेटरी है कि उसका बायोप्सी होना चाहिए। अब सेल्फ मेडिकेशन या एक खाली मेडिकेशन से ट्रीटमेंट नहीं होगा, बायोप्सी से रूल आउट करना है कि कहीं इसके अंदर कोई कैंसर की शुरुआत नहीं हो गई है। तो इसलिए जो है,
1: क्या ये ओरल कैंसर से भी सर रिलेट करता है?
0: हाँ जी, बिल्कुल। कोई कुछ रेड फ्लैग फीचर्स होते हैं अल्सर के अंदर, वही मैंने स्टार्ट किया था कि अगर 2 to 3 weeks से ज़्यादा कोई भी अल्सर है तो उसकी बायोप्सी होना चाहिए। अगर कोई अल्सर जो है, अगर हम उसको फील करें और वो रफ फील हो रहा है, फर्म फील हो रहा है, थिक फील हो रहा है, तो वो एक रेड फ्लैग फीचर है कि वो कन्वर्ट हो सकता है कैंसर की तरफ, उसमें हो सकता है। इसके अलावा अल्सर के साथ साथ अगर जॉ बोन के नीचे या मुंह के आसपास कोई स्वेलिंग हो रही है, कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो उस वो भी एक फीचर है, रेड फ्लैग फीचर जिसको कि हम बोलते हैं। अगर पेशेंट को जीरोस्टोमिया है, ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा मुंह के अंदर, और साथ में अल्सर है, तो वो भी एक रेड फ्लैग फीचर है, उसमें कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अल्सर्स अलग अलग तरह के होते हैं, वो एक स्पेशलिस्ट को दिखा करके आप चेकअप कराइए और ट्रीटमेंट लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं होता तो उसका बायोप्सी करा करके उसका डायग्नोसिस होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं, ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो
2: हेलो
1: जी,
2: साहब नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार,
2: कैसे हैं?
1: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
2: मैं अच्छा हूँ। मैं आपका प्रोग्राम से

0: मैं आपका दिल सच चाहता हूँ
1: जी जी।
0: और डॉक्टर साहब का भी शुक्र अपने दिल से करना चाहता हूँ
1: जी जी। आप सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
0: मेरा सवाल ये है जी, मेरा जारदात एक जार मेरी फूट रही है और वो कभी चीज जाती है कभी बंद हो जाती है, और मेरा जारदात कभी चीज जाता है कभी बंद हो जाता है, ठंडा गर्म लगता है
1: जी।
0: अब कोलगेट कौन सा बरतना चाहिए जी?
1: जी जी
0: सवाल है जी,
1: जी आपने सवाल इनका सुन लिया डॉक्टर साहब, इनकी दाढ़ की शायद प्रॉब्लम है।
2: हाँ ये बोल रहे हैं कि सेंसिटिविटी होती है, तो हमने नॉर्मली देखा है कई पेशेंट्स या जनरल पब्लिक जो है कभी भी सेंसिटिविटी होती है तो टेलीविजन पे या रेडियो पे एक एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं कि सेंसिटिव पेस्ट लगा स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमें जो है ऐसे टीवी पर या कहीं एडवर्टाइजमेंट देख करके सेंसिटिव पेस्ट अप्लाई करना नहीं शुरू कर देना चाहिए। तो आपको अगर सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी के बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे कि दांत घिस गए हैं या दांत कहीं से क्रैक हो गया है, दांतों में कैविटीज हो गई हैं, गम्स नीचे चले गए हैं दांतों को छोड़ करके, रूट्स एक्सपोज हो गई हैं, उसकी वजह से सेंसिटिविटी हो सकती है। तो कई कारण है, टूथ क्रैक हो गया है उसकी वजह से हो सकता है। तो पहले तो डायग्नोसिस होना चाहिए कि सेंसिटिविटी हो क्यों रहा है। अपने आप जो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, ओवर द काउंटर जाके सेंसिटिव पेस्ट नहीं लगाना चाहिए, और जो है आप डेंटल चेकअप कराइए और जो भी उसका डायग्नोसिस है फॉर उसका फिर ट्रीटमेंट होना चाहिए
1: जी। प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस पर आज हमें बहुत बेहद जानकारी, खास जानकारियां मिल रही हैं और ये जानकारियां हमारे साथ साझा कर रहे हैं डॉक्टर हरमीत सिंह। कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात कर रहे हैं दांतों और मौखिक स्वच्छता से जुड़े खास विषय पर। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं TMJ की, तो ये किस तरह की बीमारी है और इसके होने के कारण क्या है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है?
1: TMJ, उसको जैसे कि टेम्प्रो मैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं, वो एक जॉ बोन का जॉइंट है। जैसे नी जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट होता है, ऐसे जॉ का भी एक जॉइंट है, इसको TMJ बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जो डिसीजेज हैं उसको हम टेम्प्रो मैंडिबुलर डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो जनरली ये होता है, इस पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो उनको ये बोलते हैं कि उनको मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जॉ मूवमेंट में। सुबह उठते हैं तो उनको जॉ मूवमेंट करते टाइम पेन स्टार्ट होता है। पेन जो है माइल्ड टू मॉडरेट होता है और वो कान के आसपास या जॉ में या कान के ऊपर या कान के बैक साइड में, कई बार नेक तक पेन हो जाता है। तो वो TMJ की वजह से हो सकता है, तो उसका चेकअप कराना चाहिए। तो जनरली उसका हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि आजकल हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें स्ट्रेस बहुत होता है, स्ट्रेस लेवल, और स्ट्रेस की वजह से वो सारा दिन जो है अपने जॉ को क्लिंच करते रहते हैं और कई बार तो अनकॉन्शियसली सोने के बाद भी वो जॉ को क्लिक करते रहते हैं, जॉ को ग्राइंड करते रहते हैं, टीथ को ग्राइंड करते रहते हैं। तो उसकी वजह से जो मसल्स हैं जॉ की, वो जो है स्ट्रेस में आ जाती हैं, स्पाजम में चली जाती हैं। तो उसकी वजह से जॉ में स्टिफनेस हो जाता है, तो फिर मॉर्निंग में पेन करता है
0: जी।
1: तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना ये है कि सबसे पहले तो स्ट्रेस रिलीव करना है कि स्ट्रेस को कैसे रिलीव किया जाए। चाहे आप योगा करके करिए, चाहे एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, तो स्ट्रेस को रिलीव करना है। इसके साथ साथ स्ट्रेस के अलावा सेकंड रीज़न जो नॉर्मली टेम्परोमेंटलर जॉइंट डिसऑर्डर्स का होता है वो स्लीप अगर प्रॉपर ना ली जाए, नींद पूरी नहीं हो रही है स्ट्रेस की वजह से, तो जैसे हम एडवाइस करते हैं 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, उसी तरह TMJ के लिए भी 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। तो मैं एक एडवाइस करूँगा, स्लीप हाइजीन फॉलो करना चाहिए, स्लीप हाइजीन। तो उसमें यह है कि कोई भी इंसान उसको जो है एक कॉन्स्टेंट टाइम पर सोना चाहिए और कॉन्स्टेंट टाइम पर उठना चाहिए, सेम टाइम पर। जैसे रात को अगर 9 बजे 10 बजे सो रहे हैं तो रोज़ उसी टाइम ही सोएं, और उसे सुबह 5-6 बजे उठ रहे हैं तो उसी टाइम ही उठना चाहिए। और दोपहर का या दिन में अगर सोने का टाइम है तो वो उसको लिमिटेड रखें कम से कम। और रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले मोबाइल और स्क्रीन टेलीविज़न जो है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, और जहां आपको सोना है वहां पर आपको नॉइज़ कम कर देनी चाहिए, नॉइज़ नहीं आना चाहिए, लाइट डिम कर देनी चाहिए। और कैफीन को दोपहर के बाद नहीं लेना चाहिए। कैफीन मीन चाय कॉफ़ी जैसे ड्रिंक्स लेते हैं वो शाम को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, तो उसका क्योंकि इफ़ेक्ट रहता है कि नींद नहीं आएगी फिर आपको। और रात के टाइम खाना जो है लाइट खाना चाहिए, और जनरली 2 to 3 hours बिफोर बेड डिनर हो जाना चाहिए। और डेली आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसकी वजह से आपको नींद प्रॉपर आएगी, स्ट्रेस नहीं होगा, तो आपका टेम्परोमेंडिबुलर जॉइंट के डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण यही है। इसके अलावा और भी कारण होते हैं, वो आपको डेंटल चेकअप कराएंगे तो फिर पता चलेगा।
0: डॉक्टर साहब, आपने स्लीप हाइजीन पर इतनी गहरी हमें अच्छी जानकारी दी, तो इसका मतलब तो ये है कि जो हम अपनी दिनचर्या है अगर उसको अच्छा रखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा,
1: आपके हेल्थ के लिए, जनरल हेल्थ के लिए भी ये सब अच्छा रहेगा।
0: डॉक्टर साहब, आपने TMJ की बात करी। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें लिखती है, व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर TMJ डिसफंक्शन एंड व्हाट इज द बेस्ट क्योर फॉर दिस?
1: The reason I have already told you that it is because of the stress and sleep disturbance. Sometimes there is malocclusion or defective restoration, or if there is artificial teeth, occlusion is not there proper. So that all can cause TMJ disorder. So treatment I already explained, stress should be relieved and proper sleep should be taken.
0: Dr. Saab, ek aur important question hai ki, ab baat unki kar lete hain jo denture ka istemal karte hain, unki oral health कितनी इम्पॉर्टेंट है और डेंचर्स के टाइप क्या हैं, क्या इसको लगाने के बाद मुंह की सफाई यानी हाइजीन को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं?
1: बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। जैसे कि अभी हमने स्लीप हाइजीन की बात की, ऐसे ही हम अब डेंचर हाइजीन की बात करना बहुत ज़रूरी है फॉर द डेंटिस्ट, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आर्टिफिशियल डेंचर पहनते हैं, जैसे कि कंप्लीट डेंचर अपर लोअर है, या रिमूवेबल पार्शियल डेंचर है, या फिक्स पार्शियल डेंचर है, कुछ लोग इम्प्लांट्स लगाते हैं उसके ऊपर क्राउन लगा होता है, तो इनका हाइजीन मेंटेन कर, जो तो फिक्स्ड हैं उसको तो आपको डेंटल फ्लॉस और इंटरडेंटल ब्रश करके आपको जो है उसको क्लीन रखना है, और जो रिमूवेबल डेंचर है उसको जो है आपको रेगुलर क्लीन करना है, और रात को सोते टाइम तो उसको उतार करके एक डेजिग्नेटेड जो कंटेनर है रखने के लिए आपने रखा हुआ हो उसके अंदर रखना चाहिए, ताकि गम्स जो है दांतों के नीचे गम्स हैं उनको जो है रेस्ट मिले। और डेंचर हाइजीन के लिए मैं आपको बताऊंगा, ट्रेडिशनली जो था वो ये है कि वेट स्टोरेज, डेंचर को जो है पानी में रखा जाता है ताकि वो जो है उसका जो मटेरियल है वो डैमेज ना हो, या मीन उसमें कुछ चेंजेस ना आए, तो उसको क्लीन जो है कि वो कैसे करना है, जैसे ही आपने डेंचर उतारा उसको सबसे पहले तो उसको वाटर से क्लीन करना है, एक सॉफ्ट

0: ब्रश लेना है, उसके साथ जो भी फूड डेब्रीज हैं उसके ऊपर उसको क्लीन करना है। तो डेंचर को टूथपेस्ट के साथ नहीं, क्योंकि उसके अंदर एब्रेसिव होता है, तो उसके साथ नहीं करना चाहिए। अब नॉर्मल सा एक सोप सोल्यूशन बना करके तो उससे आप क्लीन कर सकते हैं डेंचर को। बट अगर उसमें कोई स्टेन्स हो रहे हैं दांतों के ऊपर, या कोई स्मेल आ रही है या किसी तरह से, तो उसके लिए डेंचर क्लींजिंग टैबलेट्स आते हैं, ठीक है। तो वो उसमें बॉक्स में डाल करके उसको कुछ घंटे के लिए उसके अंदर छोड़ सकते हैं, क्योंकि टैबलेट्स के अंदर वाटर में डालने से एफर्वेसेंस आते हैं, उसमें ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट होते हैं, और बफर होता है जो कि उसको डिसॉल्व करता है उसके अंदर जो भी डेब्रिज हैं उसको क्लीन करने के लिए। इसके अलावा अगर टैबलेट्स नहीं है तो विनेगर जो होता है, जो एसिटिक एसिड होता है, उसको डाइल्यूट करके 1:4 वाटर से डाइल्यूट करके तो उसके अंदर हम कुछ घंटे के लिए या ओवरनाइट रख सकते हैं। बट उसको थॉरली रिंस कर लेना चाहिए सुबह उठ करके अच्छे से बिफोर यू पुट इन द माउथ, तो उसको क्लीन करना है। और इसके अलावा जो आजकल जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, तो आजकल जो डेंचर बन रहे हैं वो बहुत अच्छे मटेरियल से बन रहे हैं, एक्रेलिक जो है अच्छी क्वालिटी का है, तो उसमें डिस्टोर्शन नहीं होता। तो अभी जो एडवोकेट करते हैं कि डेंचर को जो है अब उतारने के बाद वॉश करके क्लीन करके ड्राई करके आप ड्राई कंटेनर में रखिए, क्योंकि वो उसमें श्रिंकेज के चांसेस नहीं है, वो डैमेज नहीं होगा। तो अगर गुड मटेरियल का है तो उसको आप ड्राई स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो ड्राई स्टोरेज का फायदा यह है कि उसके अंदर जो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो नहीं करेंगे, तो उसमें चांसेस ऑफ कैंडिडाइसिस नहीं होंगे पेशेंट को, तो ड्राई भी स्टोरेज कर सकते हैं। बट जैसे कि आपको डेंटिस्ट ने या मैन्युफैक्चरर ने आपको रेकमेंड किया है आपका मटेरियल कैसा है उसको फॉलो करें, ठीक है। और डेंचर से एसोसिएटेड पेशेंट को जो है कैंडिडाइसिस, मुंह के अंदर सफ़ेद निशान हो जाते हैं, मतलब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो डेंचर जो है क्लीन करना चाहिए प्रॉपरली। और एंगुलर कैलाइटिस जिसको बोलते हैं कि माउथ के कॉर्नर पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वहाँ पर बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, उसका मेन कारण तो होता है कि आपका जो डेंचर है अगर वो लूज हो गया है या फिर उसकी हाइट कम बनी है तो उसके माउथ के कॉर्नर पे जो है फोल्ड होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर एंगुलर कैलाइटिस हो जाता है। तो डेंचर की हाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, अगर डेंचर स्टेबल है और वो उसमें हिलता नहीं है, लूज नहीं है, तो फिर वो डेंचर एंगुलर कैलाइटिस और कैंडिडाइसिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं ब्रेसिस जो इस्तेमाल करते हैं उनकी, और जिनके दांतों में ब्रेसिस लगे हैं उनको दांतों की सफाई उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है, ऐसे में कैसे दांतों की सफाई के साथ ओरल हेल्थ को भी बेहतर रखा जा सकता है?
0: देखिए ब्रेसिस जो है दो तरह के आते हैं, एक तो रिमूवेबल ब्रेसिस होते हैं और फिक्स्ड ब्रेसिस होते हैं। रिमूवेबल को तो आपको रोज मतलब निकाल करके उसको वैसे ही क्लीन करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है, रिमूवेबल ब्रेसिस को ब्रश से सोप सॉल्यूशन से क्लीन करना है। इसके अलावा जो फिक्स्ड ब्रेसिस हैं जिसको कि हम नहीं पेशेंट अपने आप नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए उसके लिए स्पेशल ब्रश आते हैं, ऑर्थो ब्रश नाम से ब्रश आते हैं, तो उससे जो है क्लीन हाइजीन क्लीन रखना है। इंटरडेंटल ब्रश यूज करके आप उसको एरियाज को क्लीन रख सकते हैं, तो कहीं पे फूड डेब्रिज या प्लाक डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो अगर प्लाक रहेगा तो उससे टीथ में लूज होने के और ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट फेल होने के चांसेस रहेंगे। तो हाइजीन इंप्रूव करके रखना बहुत जरूरी है ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट के अंदर भी।
1: जी जी डॉक्टर साहब, सागर हमें विजयपुरा कर्नाटका से लिख रहे हैं कि व्हाट ओरल रूटीन वी कैन फॉलो टू कीप आवर टीथ एंड ओवरऑल ओरल हेल्थ इन गुड कंडीशन। और हमारा भी आपसे यही सवाल है कि अब कार्यक्रम में समय बहुत कम रह गया है, तो कैसे अपने दांतों और अपने जो मुंह के स्वास्थ्य को हम अच्छे से रख सकते हैं, इसके लिए डूज एंड डोंट्स क्या हैं?
0: देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा इन्होंने और लास्ट में है, क्योंकि अब समय कम रह गया है तो हमें थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो ये है कि पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो भी कॉरपोरेशन से सप्लाई आते हैं उसमें 1% फ्लोराइड होता है, 1 ppm फ्लोराइड होना चाहिए। तो कम्युनिटी वाटर फ्लोरिडेशन एक वन मेथड है जिससे कि कैविटीज़ को, दांतों की कैविटीज सड़न को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा स्कूल लेवल पर एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए कि ब्रशिंग टेक्निक कैसे करना चाहिए, फ्लॉस कैसे करना चाहिए। आजकल तो बुक्स में भी दिया हुआ है, NCERT बुक्स में भी अवेलेबल है कि ब्रशिंग और फ्लॉसिंग कैसे करना चाहिए। और

0: इसके अलावा डेंटल फ्लॉस, इंटरडेंटल ब्रश मैंने आपको बता ही दिया, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, ऐसे ही नहीं कोई भी टूथपेस्ट उठा करके या पाउडर से या ऐसे, जो एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। एडल्ट में एटलीस्ट 1000 PPM, चाइल्ड में बिलो 6 ईयर 500 PPM टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। और टूथपेस्ट जब ब्रश किया टूथपेस्ट के साथ तो आपको स्पिट करना है 10 मिनट तक, पानी से रिंस नहीं करना, ताकि जो पेस्ट का इफेक्ट है दांतों के ऊपर वो रहना चाहिए। तो स्पिट करें ब्रश करने के बाद 10 मिनट तक पानी से रिंस नहीं करें, 10 मिनट के बाद आप रिंस करिए। इसके अलावा डाइटरी मॉडिफिकेशन होती हैं कि आप जो है शुगर का कंजम्पशन मींस मीठे का जो है कम से कम रखें, स्टिकी और एसिडिक फूड,
1: खासकर रात में,
0: खासकर रात में बिल्कुल, और स्टिकी फूड जो है जो दांतों पे चिपके रह जाते हैं उसको जो है अवॉइड करना चाहिए। एसिडिक फूड जैसे कि लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कोलास पीते हैं तो उसको जो है अवॉइड करना चाहिए। और
1: सर अगर कभी स्टिकी फूड लेते भी हैं तो उसके बाद हमें एकदम ब्रश करना,
0: हाँ, इसके
1: या
0: बाद बिल्कुल उसके बाद तुरंत बाद ब्रश कर लेना चाहिए। और जैसे कुछ बच्चों को जो है टॉफीज या चॉकलेट्स रेगुलर नहीं देना चाहिए, उनको ओकेजनली कभी बर्थडे पे या दे सकते हैं, तो उस टाइम आप उसी टाइम जो है साथ में ब्रश जो है वो कर लेना चाहिए। और एवरी 6 मंथ जो है डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। और बच्चों में जो है पिट एंड फिशर सीलेंट्स होते हैं तो वो हम एडवाइस करते हैं कि अगर पिट एंड फिशर्स हैं, उनको प्रोन है कैविटीज के, तो सीलेंट्स लगा करके कैविटीज को होने से रोक सकते हैं, डेट इज प्रिवेंटिव मेजर। इसके अलावा हम जो जैसे कि व्हाइट स्पॉट लीजन्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कैविटीज जो स्टार्ट होती व्हाइट स्पॉट रीजन से स्टार्ट होते हैं, अगर वहीं पर हम कैविटी फ्लोराइड वार्निश या फ्लोराइड जेल अप्लाई करते हैं तो वो केरीज जो है कैविटीज में कन्वर्ट होने से रुक जाती है। और अगर फिर भी आपको शुगर लेना ही है तो बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं, नेचुरल स्वीटनर आते हैं, जैसे स्टीविया है वो नेचुरल प्रोडक्ट है, वो मीठा है बट उसके अंदर शुगर नहीं है, तो आप चाय में या दूध में।
1: और इसके अलावा सर हम फ्रूट्स भी तो ले सकते हैं जिनसे हमें नेचुरल स्वीटनेस मिलती है, जो
0: हाँ नेचुरल फ्रूट आप खा सकते हैं, बट उसमें भी कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, तो फिर भी आपको उसके बाद भी ब्रश तो करना ही है, ब्रश करना चाहिए। हाँ जी,
1: तो साथियों ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो था प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीज से जुड़ा, जिसमें हमने जाना कि कैसे रखें अपने मुंह के स्वास्थ्य को और दांतों के स्वास्थ्य को बेहतर, और इस पर हमें बेहद खास जानकारी दी डॉक्टर हरमीत सिंह जी ने, जो हैं डेंटल स्टाफ सर्जन डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी खास जानकारी हमें दी। और इसके साथ आज के लिए अपनी दोस्त पूजा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉरस्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज वे नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रही। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ का उनका स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अदहनोम घेब्रेयेसस से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि श्री नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान WHO के महानिदेशक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों और वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारियों में नेतृत्व की सराहना की और साझा प्राथमिकताओं पर WHO के साथ सहयोग और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए कल रात स्विट्जरलैंड पहुंचे। स्वास्थ्य सभा का समापन शनिवार को होगा। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नए मंत्रिमंडल में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल में राज्य विस्तार, विभिन्न सरकारी बोर्डों, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य के महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया गया है। 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐतिहासिक फैसले में सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित की गई है। ग्रुप बी पदों के लिए सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा वर्ष अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रक की टक्कर सामने से आ रही वैन से हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ हूँ आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर। मैं आपकी दोस्त आरजे शालिनी लेकर आई हूँ प्रोग्राम अल्फा जैन। कहते हैं दोस्तों कि सफ़र सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाता, वो इंसान को खुद से भी मिलवाता है। और आज की युवा पीढ़ी सिर्फ घूमना नहीं चाहती है, वो नई जगहों को महसूस करना चाहती है, नई संस्कृतियों को समझना चाहती है और ज़िंदगी को किताबों से बाहर निकल कर जीना चाहती है। किसी के लिए ट्रैवल मतलब पहाड़ों की शांति है, तो किसी के लिए बीच का सुकून, तो किसी के लिए बैग पैक उठाकर अकेले देश देखने का जुनून। तो आज के इस खास शो में हम बात करने वाले हैं यूथ और ट्रैवल की, और हमारे साथ हैं आपके ही बीच से जिया। जिया डीयू से ग्रेजुएशन कर रही हैं, हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, ट्रैवल करना इन्हें बेहद पसंद है। तो करते हैं जिया से मुलाकात। जिया बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो के स्टूडियो में। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, आपको मौका मिला है यूथ स्पीक्स में युवाओं से बात करने का?
2: धन्यवाद शालिनी जी, मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और आज मैं आपके साथ अपने ही जैसे लोगों के साथ बात करूंगी।
1: बिल्कुल जिया, तो एक बात बताओ कि आपके लिए ट्रैवल सिर्फ फन है या ये यूथ की पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट को भी बदल देता है, क्या सोचती हैं आप?
2: मेरे हिसाब से तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू आर ओवरऑल पर्सनालिटी। देखिए ना, हम आज के युवा सब कुछ करना चाहते हैं, ये उम्र ही बहुत खास है नहीं। जब आपको फ्यूचर की चिंता तो बहुत सताती है, मगर आप जीना भी बहुत अच्छे से चाहते हैं, आप आज में जीना चाहते हैं। हम आज के युवा घूमना फिरना चाहते हैं, लेकिन सबका घूमना फिरना कुछ अलग होता है मेरे हिसाब से। कोई 6 महीने के बाद घूमना चाहता है, हर 6 महीने में घूमना चाहता है, किसी को हर महीने एक ट्रिप चाहिए, कोई तो बस तैयार रहता है कि बैग उठाऊं और निकल जाऊं।
1: बिल्कुल जिया, और इसीलिए हम बस अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगले 1 घंटे में हम जिया के साथ निकलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां बातें होंगी ड्रीम्स की, फ्रीडम की और उन रास्तों की जो शायद हमें हमारी असली पहचान तक ले जाए, जहां हमारा दिल चाहता है।

दोस्तों, घूमना फिरना हमारी मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे तो लगता है कि ट्रैवल करने से हमें अपनी बिजी लाइफ से ना केवल एक ब्रेक मिलता है, मगर हम बहुत कुछ सीख भी पाते हैं। कुछ ट्रिप्स कंफर्टेबल होती हैं, कुछ हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालती हैं। कभी आप ज़्यादा सामान पैक नहीं कर सकते, तो कभी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना नहीं मिलता। वैसे आपको कितना टाइम लगता है पैकिंग करने में? कॉम्प्रोमाइजेस तो बहुत तरह के हो सकते हैं। हर एक कॉम्प्रोमाइज़ एक नया लाइफ लेसन बन जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ तो कभी कभार परमिशंस के साथ भी करना पड़ता है। जाने दो ना मम्मी, अक्सर बोलते हैं। जानते हैं यूथ और पेरेंट्स के क्या सोच होते हैं घूमने फिरने के बाद, इस ब्रेक के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी रेनबो। हम बात कर रहे थे ट्रैवल की। अक्सर हम यंगस्टर्स की चॉइसेस से पेरेंट्स कंसर्न्ड रहते हैं। खैर, अब उनका भी क्या कसूर, वो हमारा भला ही तो चाहते हैं ना। मगर एक पहलू ये भी है कि कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं और ये सिर्फ ट्रैवलिंग के साथ ही आ पाते हैं। बहुत लोगों को तो इनफैक्ट ऐसा भी लगता है कि मम्मी पापा के साथ ट्रिप्स तो बोरिंग हो जाएंगी, क्या फ़ायदा। मगर थोड़ा चेंज तो हमारे पेरेंट्स भी डिज़र्व करते हैं ना। मैं तो कहती हूँ इस बात का एक ही सॉल्यूशन है, आप अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ ट्रिप पर ले जाइए और उन्हें खूब घुमाइए। उनसे अपने मन की बातें करिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए और उनके साथ भी थोड़ी मटर गश्ती करिए और ये वाला गाना ज़रूर बजाएं।

दोस्तों के साथ घूमने का मज़ा ही कुछ और है। वो बातें, वो कहानियाँ, वो मज़ा सिर्फ नसीब वालों को ही मिलता है। दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग बिकम्स लेस अबाउट द प्लेस और मेमोरीज़ ही मेमोरीज़ इकट्ठी हो जाती हैं। वो 3 AM कॉन्वर्जेशंस, घर से दूर जाना और कुछ एडवेंचरस करने का थ्रिल, वो म्यूज़िक, वो महफिल, इस सब की बात बहुत बहुत स्पेशल है। दोस्तों के साथ मुझे लगता है कि म्यूज़िक बहुत मैटर करता है। आप अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर जाएं और गाने ना बजाएं, ऐसा होना तो इम्पॉसिबल। अगर आप दोस्तों के साथ कभी ट्रिप पर जाएं तो ये गाना चलाएं और दोस्तों के साथ साथ गुनगुनाएं।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

वेलकम बैक दोस्तों। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हर 5-6 किलोमीटर में आपको भाषा बदलती दिखेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया में हर एक स्टेट अपनी एक कहानी बताता है। ऐसी कहानियां जो वहां के लोकल्स ही जानते हैं, और आप जब इन कहानियों को सुनते हैं तो आप भी बहुत कुछ महसूस कर पाते हैं। यही कहानियां आपके पूरे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को स्पेशल बना देती है। आप कुछ कहानियां लोगों की सुनते हैं तो कुछ आप उन्हें अपनी सुनाते हैं। शायद इसी में असली सुकून है। नए लोगों से मिलना, उनके शहर और जीवन के बारे में जानना, अपनी बिजी लाइफ से एक ब्रेक लेकर खुद के साथ वक्त बिताना और ढेर सारी यादों के साथ पिटारा लेकर घर वापस आना।

दोस्तों, मैं ये सोच रही थी कि एज इंडियंस हमारे पास क्या ही है घूमने को, या ये पूछिए कि क्या नहीं है। हर एक इंसान अपने तरीके से घूमना चाहता है। किसी को पहाड़ियों और वादियों का की खामोशी पसंद होती है, तो किसी को लहरों का शोर या फिर कोई इतिहास महसूस करने का शौकीन होता है। आपकी हर एक ट्रिप यादगार बन सकती है और आपको बहुत कुछ नया सिखा सकती है। अब आप हिमाचल के पहाड़ों की खामोशियां महसूस करने जाएं या फिर समुंदर की लहरों से खेलने, म्यूज़िक तो मस्त है ना बॉस। म्यूज़िक से आपके सफ़र का मज़ा दुगना हो जाता है। और हम आपके लिए लाए हैं ये अमेजिंग सा सॉन्ग।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ट्रैवल की। दोस्तों, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो ज़रूर होना चाहिए, मगर खुल के जीना ट्रैवलिंग हमें बखूबी सिखा सकती है। अपनी सिटी लाइफ से ब्रेक लेकर किसी हिल स्टेशन की शांति को महसूस करना, वहाँ के लोकल्स की कहानियाँ सुनना और सबसे इम्पॉर्टेंट, खुद के ही एक नए वर्जन से मिलना। कभी कभार घूमना फिरना जगह के बारे में नहीं होता, हमारे एहसास के बारे में बन जाता है, और जो हम अक्सर अपनी बिजी लाइफ में मिस कर रहे होते हैं वो हमें फिर से मिल जाता है।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कई लोगों को देखा है, वो अपनी जिम्मेदारियों और घर की भाग दौड़ में इतना उलझकर रह जाते हैं कि ऐसा लगता है कि उनका एक ही दिन लूप में चले जा रहा है। इस बोरिंग जिंदगी से तो कहीं ना कहीं सब ही ऊब जाते हैं, और मेरे हिसाब से एक ब्रेक तो हर कोई डिज़र्व करता है। यूथ के लिए नहीं, मेरी सोच तो ये कहती है कि हर उम्र का व्यक्ति थोड़ा समय तो अपने लिए निकाल ही सकता है। घूमने फिरने से आपकी बॉडी और मूड दोनों ही बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, और बहुत सारी यादें भी बन जाती हैं।

0: तो दोस्तों, अल्फा जेन में आपका सफर कैसा रहा जिया के साथ? जिया ने बहुत सारी ट्रैवल की बातें की और आई एम श्योर आप भी इंस्पायर हुए होंगे कोई प्लान बनाने के लिए। तो जिया क्या कहना चाहोगी जाते जाते?
1: मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो पेंडिंग प्लान्स पड़े हैं ना आपके ग्रुप चैट में, दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ, थोड़ा वर्कआउट करिए उन पे और निकल पड़िए, बैग उठाएं और निकल पड़िए।
0: क्या बात है जिया, मुझे लगता है तुम्हारी इतनी सारी बातें सुनकर

0: ये जो भी दोस्त है ना हमारे जो हमें सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए होंगे एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि कहीं घूम के आए। लेकिन हाँ, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो ट्रेन का सफ़र होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मुझे पर्सनली ना जिया बहुत पसंद है जब हम ट्रेन की खिड़की से अलग अलग नज़ारे देखते हैं। और ट्रेन में ना आप कहीं भी मूव कर सकते हो, सफ़र कितना भी बड़ा हो या छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक अलग ही एक्सपीरियंस दे जाता है।
1: मैं समझती हूँ आपकी बात, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आज तक जितने भी ट्रेन के सफ़र हुए हैं, एक नया व्यक्ति आपको ज़रूर ऐसा मिलेगा जो आपको परिवार जैसा महसूस
0: बिल्कुल, कई
1: करवाएगा।
0: बार अजनबियों के साथ भी थोड़ी सी बातें करने से ना ऐसा लगता है कि जैसे आप उनको जानते हो, और कहीं ना कहीं एक अलग सा अनुभव होता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिलहाल हम हमारे दोस्तों को बस यही कहेंगे कि तो आप भी कुछ ना कुछ प्लान बनाइए। फिलहाल मुझे और जिया को दीजिए अनुमति, क्योंकि आगे आपके लिए आकाशवाणी रेनबो पर इंतजार कर रहा है प्रोग्राम सिटी लाइट, इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है। हम छोड़े जाते हैं आपको इस प्यारे से गाने के साथ, और आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी इस समय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: श्री मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री कल तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुजरात के गांधीनगर में ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों SOM की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि SOM बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के वरिष्ठ अधिकारी वैकल्पिक विवाद समाधान ADR से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। वहीं विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं, ताकि समय पर सहायता प्रदान की जा सके और वे देश के नागरिकों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। केरला में नई UDF सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और रसोईया कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना शामिल है। राज्य में नई विधानसभा का सत्र इस महीने की 21 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जिसमें नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और अध्यक्ष का चुनाव होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान WHO के महानिदेशक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों और वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारियों में नेतृत्व की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हानोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्ले ऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 5:05 हिना मौर जो हाजिर है प्रोग्राम सिटी लाइट्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना शो जहां हम बात करते हैं शहर की रौनक, भाग दौड़, स्वाद, संस्कृति और उन कहानियों की जो दिल्ली एनसीआर

गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए आंखों ही आंखों में कर बातें गुपचुप गुपचुप गुपचुप ओए खुश खुश खुश खुश खुश ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़

0: 200 सिटी लाइव्स प्रोग्राम सुन रहे हैं आप हिना मौज के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। दिल्ली एनसीआर की बात हो तो ये कहना गलत ना होगा कि ये एक शहर नहीं है बल्कि कई रंगों का संगम है। यहाँ सुबह की शुरुआत मेट्रो की रफ्तार से होती है तो शाम ढलते ही कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और साइबर हब की रोशनी शहर को नई चमक दे देती है। और अगर बात की जाए खाने पीने की तो चांदनी चौक के पराठे, करोल बाग की चाट, पुरानी दिल्ली के कबाब और नोएडा गुरुग्राम के कैफेज युवाओं की पहली पसंद बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर सिर्फ घूमने की जगह नहीं है दोस्तों, बल्कि देश का एक बहुत बड़ा एजुकेशन और बिजनेस हब भी है। गुरुग्राम की ऊंची ऊंची इमारतें और आईटी कंपनियां, जहां पुरानी दिल्ली की गलियों और इतिहास की तहजीब हमें देखने को मिलती है। और अगर वीकेंड की बात करें तो लोग परिवार और दोस्तों के साथ इंडिया गेट, अक्षरधाम, लोधी गार्डन या फिर मॉल्स में समय बिताना पसंद करते हैं। दिल्ली एनसीआर की खूबसूरती से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, हर जगह हर चीज़ उपलब्ध और आपके लिए मौजूद है। और दोस्तों, अगर इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हमें अपने शहर को साफ और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़े तो हमें निभानी चाहिए ना, ट्रैफिक नियमों का पालन भी करना चाहिए और पर्यावरण का ध्यान रखें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी आनी चाहिए। बहरहाल वक्त बता दें आपको, 5:12:23 हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और सुनाते हैं आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे ट्रैक्स आपके इंतज़ार में हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, सुनिए प्रोग्राम सिटी लाइट्स हिना मौज के साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: कोयल सी तेरी बोली,
6: हाय
5: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
8: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओं, आज के अंक में हम जानेंगे आकाशवाणी के अभूतपूर्व विस्तार के बारे में। विभाजन के समय भारत के पास केवल 6 रेडियो स्टेशन थे जो 1950 तक बढ़कर 25 हो गए। 1948 में पटना, कटक, गुवाहाटी, नागपुर, विजयवाड़ा और श्रीनगर में नए केंद्रों की स्थापना हुई। 1949 में इलाहाबाद, अहमदाबाद और जालंधर को जोड़ा गया, जबकि 1950 में धारवाड़ और

0: कोझिकोड में सेवाएं शुरू हुई। रियासतों के विलय के साथ ही मैसूर, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, औरंगाबाद और बड़ौदा के रेडियो स्टेशन भी आकाशवाणी नेटवर्क का हिस्सा बने। इस विस्तार ने रेडियो की पहुंच को देश के दूर दराज हिस्सों और विभिन्न भाषाई समुदायों तक मजबूत बनाया। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी @90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी FM रेनबो पर प्रोग्राम सिटी लाइट्स में हिना मौज है आपके साथ। तो आइए जानते हैं कि आज राजधानी दिल्ली और NCR में क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले अगर बात की जाए कला और संस्कृति की, तो अगर आपको पेंटिंग्स, फोटोग्राफी और आधुनिक कला पसंद है तो आज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और इंडिया हैबिटेट सेंटर में कई आकर्षक प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां संगीत, थिएटर और साहित्य से जुड़ी प्रस्तुतियां भी दर्शकों को आकर्षित कर रही हैं। थिएटर और लाइव परफॉर्मेंसेस के शौकीनों के लिए भी आज का दिन कुछ खास है। दिल्ली के कई ऑडिटोरियम्स में नाटक, स्टैंड अप कॉमेडी और लाइव म्यूजिक शो आयोजित किए जा रहे हैं। कनॉट प्लेस और हौस खास के कैफेज में शाम के समय सूफी और बॉलीवुड म्यूजिक की महफिलें सजने वाली हैं। अगर आप संगीत प्रेमी हैं तो आज की शाम दिल्ली NCR में सुरों से भरपूर रहने वाली है। जैज, सूफी और लाइव बैंड्स की प्रस्तुतियां शहर की रौनक को और बढ़ा रही हैं। युवा वर्ग खास तौर पर दोस्तों इन म्यूजिकल इवेंट्स को लेकर काफी उत्साहित दिखाई देते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप जा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और बात अगर शॉपिंग और फूड फेस्टिवल्स की जाए तो दिल्ली के विभिन्न मॉल्स और ओपन मार्केट्स में समर सेल और फूड इवेंट्स चल रहे हैं। चांदनी चौक से लेकर साइबर हब तक खाने पीने के शौकीनों के लिए आज कई नए स्वाद इंतजार कर रहे हैं। पर दोस्तों, मौसम का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है और मौसम की बात करें तो आज गर्मी के बीच हल्की हवाएं और शाम को बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो पानी साथ रखना ना भूलें। और दोस्तों, यही है आज दिल्ली और NCR की कुछ खास हलचल जिसके बारे में हमने आपको बताया। और आप जाइए लेकिन अपनी सुरक्षा और अपने खूबसूरती का ख्याल रखिए, ताकि धूप में आपकी जो त्वचा है वो सही रहे। और आपको हाइड्रेशन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है अपने साथ रखना। तो मुस्कुराते रहिए और खूबसूरत तरीके से अपने जो वक्त है उसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए।

जिंदगी जीने का नाम है दोस्तों, चलते जाइए, बढ़ते जाइए और इसको जीने की भरपूर कोशिश करते जाइए। 5:23:32 खूबसूरत सा प्रोग्राम सिटी लाइट्स चल रहा है और सुन रहे हैं ये प्रोग्राम आप आकाशवाणी FM रेनबो पर हिना मौज के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में जागरूकता बेइंतहा ज़रूरी है। जी हाँ, आज सारी दुनिया में इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन डे के तौर पर हम मना रहे हैं। HIV और एड्स से जागरूकता से रिलेटेड ये दिन मनाया जाता है ताकि हर वर्ष दुनिया भर में कई कार्यक्रमों के ज़रिए ये इस माध्यम से इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम ये संदेश दे सकें और लोगों को ये बता सकें कि डर नहीं, जानकारी ज़रूरी है, भेदभाव नहीं, सहयोग ज़रूरी है। HIV का एक ऐसा वायरस जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है, ये एक ऐसा रोग है। लेकिन आज चिकित्सा विज्ञान की प्रगति ने ये साबित कर दिया है दोस्तों कि सही इलाज और नियमित दवाइयों के सहारे से HIV संक्रमित व्यक्ति भी सामान्य जीवन जी सकता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि HIV छूने, साथ बैठने, हाथ मिलाने या साथ खाना खाने से नहीं फैलता। ये संक्रमण मुख्य रूप से असुरक्षित शारीरिक संबंध, संक्रमित रक्त, संक्रमित सुई या मांस से बच्चे तक पहुंच सकता है। इसलिए जागरूकता, सुरक्षित व्यवहार और समय पर जांच बहुत ज़रूरी है अगर किसी भी तरीके से ये किसी की भी ज़िंदगी में आता है। आज ज़रूरत है हम समाज में फैले भ्रम और डर को दूर करें। HIV से प्रभावित लोगों को दया नहीं चाहिए दोस्तों, बल्कि सम्मान और अपनापन चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प करें कि इसकी जागरूकता फैलाएंगे, भेदभाव मिटाएंगे और इंसानियत से हाथ मिलाते हुए उनको बहुत अच्छे से अपनापन देते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का दिन हमें यही सिखाता है। जगह जगह जो कार्यक्रम होते हैं वो यही सिखाने के लिए, बताने के लिए होते हैं कि हमें ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ लेकर चलना है ताकि उनके जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो अच्छी हो सके, बजाय इसके कि उनका दिल और दुख जाए कि हमसे लोग दूर भाग

रहे हैं, पता नहीं हमें क्या हो गया। तो अपने आप को उन लोगों के प्रति बहुत सहानुभूति देने की ज़रूरत नहीं है, उनका साथ देने की ज़रूरत है। तो आज के दिन ये संकल्प कीजिए कि कोई भी अगर आपके पास, आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है जिसको ये बीमारी है, तो उसको आप पूरा सपोर्ट करेंगे। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, सुनते रहिए प्रोग्राम सिटी लाइट्स। बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक्स हैं आपके लिए, आप एंजॉय ज़रूर करेंगे।

दोस्तों, आज एक और दिन मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे। इस प्रोग्राम्स जो हैं इसके तहत बहुत सारे शुरू किए जा रहे हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर बच्चों की बात की जाए तो उनसे रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगी इस वक्त। इस के अंतर्गत जो चीज़ें हो रही हैं उसमें बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त। दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन जो है वो हमारे बच्चों का चलता ही रहता है, और कितना ही रोक लो लेकिन मानते नहीं हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ बाप

बच्चों के अंदर की जानते हैं कि उनके अंदर क्या कोई आर्टिस्ट छुपा है, परफॉर्मर है, या फिर कोई कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है। सो इसके लिए ये कहना चाहूँगी कि गेट रेडी रहिए दिल्ली वालों, क्योंकि इस खूबसूरत डे के तहत नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा संस्कार रंग टोली थिएटर इन एजुकेशन कंपनी लेकर आए हैं बच्चों

और सोशल इंट्रैक्शन को भी स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगी। दिल्ली के 20 स्कूलों में होने वाली इस एक्साइटिंग वर्कशॉप में 8 से 16 साल की उम्र के बच्चे बनेंगे इस क्रिएटिव जर्नी का हिस्सा। आपके आसपास का सेंटर भी हो सकता है, और अगर कोई सेंटर आपके आसपास शामिल है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ये समर एक्सपीरियंस करें, तो 22 मई से 21 जून तक का वक्त है, इसमें आप एनरोल करा सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे के अंदर अगर कोई टैलेंट है या फिर इस तरीके की कोई पर्सनैलिटी छुपी हुई है, तो उसे उजागर करने के लिए आप ये वर्कशॉप उसे ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कराएं।

0: गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

तो जी हुजूर, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सिटी लाइट्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर मेरे यानी हिना मौज के साथ। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं ज़रा से ट्रैफिक अपडेट पर, जो दिल्ली एनसीआर में और उसके आसपास के हालात बताने की हम कोशिश करते हैं ट्रैफिक के। दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव देखने को मिल सकता है दोस्तों, ख़ासतौर पर मथुरा रोड पर बदरपुर बॉर्डर से अपोलो अस्पताल की ओर जाने वाले रास्ते पर वाहनों की लंबी कतारें लगने की संभावना है। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस ने जो यात्री हैं उनसे ये कहा है कि वैकल्पिक यानी किसी और मार्ग से अगर आप जा सकते हैं तो आप इस मार्ग को छोड़कर उससे जाने की कोशिश करें ताकि आप समय से पहुंच पाएं। इसके अलावा न्यू रोहतक रोड पर पाइपलाइन निर्माण कार्य जारी होने के कारण कमल टी पॉइंट से आनंद पर्वत तक ट्रैफिक धीमी चल रही है और शाम के वक्त जब पीक आवर्स होंगे

यहाँ जाम की स्थिति बनने की उम्मीद लग रही है, तो आप उसी हिसाब से प्लान कीजिए। राजपुर रोड और कुछ संवेदनशील इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किए गए हैं। ऐसे में घर से निकलने से वैसे तो आप परहेज करें, लेकिन अगर आप निकलना ही है आपको ज़रूरी, तो आप रूट की जानकारी पहले ज़रूर ले लें, चेक कर लें, उसके बाद निकलें। और लेकिन इसी बीच राहत की एक बात ज़रूर है दोस्तों, के दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं शुरू की गई हैं, ताकि लोग सड़क ट्रैफिक से बचकर आसानी से अपना सफ़र कर सकें। तो गाड़ी निकालने के बदले आप अगर मेट्रो का उपयोग करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मौसम की वजह से भी दोस्तों इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है, जहां पर हल्की बारिश या फिर तेज़ हवाओं के चलने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में क्या होता है कि सड़क पर विजिबिलिटी जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, और वाहन जो है उसको बहुत सावधानी से चलाने की ज़रूरत होती है। और अगर आप गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद या गाज़ियाबाद की ओर जा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लेकर निकलें और ट्रैफिक अपडेट्स पर नज़र बनाए रखें। सुरक्षित चलिए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए और अपना सफ़र आरामदायक बनाने की कोशिश कीजिए। और बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

5:51, 44 सेकेंड खूबसूरत से प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, जिसका बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी है, जिसका नाम है सिटी लाइट्स। और सिटी लाइट्स प्रोग्राम में आज हम बहुत सी बातें कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर और इंटरनेशनल डेज से रिलेटेड। तो जी आज एक और बात करते हैं, जो बात है पौधों से रिलेटेड। जी हाँ, क्योंकि आज इंटरनेशनल फैसिनेशन ऑफ प्लांट्स डे भी मनाया जा रहा है। हर वर्ष 18 मई यानी आज के दिन पूरी दुनिया इंटरनेशनल फैसिनेशन ऑफ प्लांट्स डे मनाती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पौध आकर्षण दिवस। इस दिन का उद्देश्य दोस्तों ये है कि हम ये समझा सकें कि पौधों का क्या महत्व है, उनकी सुंदरता और मानव जीवन में उनकी भूमिका क्या है, और किस तरीके से पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। पौधे केवल धरती की हरियाली तो नहीं बढ़ाते दोस्तों, बल्कि हमारे जीवन का आधार भी तो होते हैं। हमारी सांसों के लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, भोजन के लिए अनाज उगाते हैं, सब्जियां, फल उगाते हैं, दवाइयों के लिए जड़ी बूटियां भी इन्हीं से आती हैं। और अगर पेड़ पौधे ना हों तो धरती कितनी सूनी और जीवन कितना कठिन हो जाएगा, ये भी सोचने की बात है। लेकिन अगर आज के दौर का जिक्र किया जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि आज के दौर में बढ़ता हुआ प्रदूषण, कटते जंगल और बदलता पर्यावरण एनवायरनमेंट हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति की रक्षा करना केवल जिम्मेदारी नहीं है हमारी, बल्कि हमारी आवश्यकता यानी ज़रूरत भी है। पौधे हमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जीवन देते हैं। वो अगर कहा जाए तो गर्मी में छाया बनते हैं, बारिश में धरती को संभालते हैं और एनवायरनमेंट को शुद्ध बनाते हैं। हम पौधों के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता को विकसित करें, आज का दिन ये हमें सिखाता है। अपने आसपास हरियाली को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुंदर पर्यावरण एनवायरनमेंट हम तैयार कर सकें। कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं, ये जिम्मेदारी समझें अपनी और उसकी देखभाल करें, और दूसरों को भी कोशिश करें इस काम को करने के लिए प्रेरित करने की। हर पौधा जीवन की एक नई उम्मीद होता है दोस्तों, और ये खूबसूरत सा एहसास और ये खूबसूरत बात कि एक पौधा हमारी तरफ से लगे और उसका हम ध्यान रखें, एक बच्चे की तरह से पालें, तो सोचिए कि वो आगे चलकर कितने लोगों की मदद करेगा और किस तरीके से उस एक पेड़ को, एक पौधे को लगाने के बाद आप कितना संतुष्ट फील करेंगे।

जी हाँ, मोहब्बत कीजिए तो ऐसी ही कीजिए कि सब कुछ आपका उसका हो जाए और उसका आपका। तो इस तरीके की मोहब्बत करते वक्त बहुत ध्यान से उस इंसान को तलाशिए जो आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से शामिल हो सके। बहरहाल चलते चलते बस यही कहूँगी कि अपना हाल अच्छा रखिए ताकि दूसरों का हाल आप अच्छा रख सकें। 5:56 और ये हुए 52 सेकेंड, यानी आप सब लोगों को टाटा बाय बाय सायोनारा कहने का वक्त आ चला। चलते चलते एक और प्यारा सा ट्रैक आपके लिए छोड़े जा रही हूँ, पर आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। अगला प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गौर स्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और

0: कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
1: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आप सुन रहे हैं म्यूजिकली और आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर और मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। और अब वक्त हो गया आपके फेवरेट प्रोग्राम का, जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। और आज ट्रिपल एम यानी कि मैसेज मसाला मिक्स के साथ स्टूडियो में मौजूद है आपका दोस्त होस्ट प्रवीण शर्मा। और दोस्तों, आज का सवाल बड़ा ही दिलचस्प है। और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है दोस्तों, आज आपको ये बताना है कि जब कभी आपको किसी ने अपने घर बुलाया और वो खुद ही वहां पर नहीं मिला, या फिर उसके घर पर ताला लगा हुआ मिला, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? जी हाँ, उस वक्त आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रिया उस वक्त क्या थी? होता है ना कभी कभी, भाई, कई लोग हमें घर बुला लेते हैं, फिर खुद ही भूल जाते हैं कि हमने उनको बुलाया था, ये टाइम दिया था, और वो खुद ही निर्धारित हो जाते हैं ना। तो आपको यही बताना है कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर होने वाला था। कुछ भी अगर ऐसी बात है तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा अपना जवाब। अब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है, नोट करें, हमारा नंबर है 9868107070 9868107070। और सुनते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे प्रोग्राम मैसी मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और ये पहला मैसेज हमें मिला है नरेंद्र सोनी का देवीगढ़ पटियाला से। कह रहे हैं गुड इवनिंग, शुभ संध्या, आपको भी शुभ संध्या। कह रहे कि हमारे साथ तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, आगे का पता नहीं। भाई बड़ी अच्छी बात है अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। वैसे सोच रहे होंगे कि जो लोग हमसे अभी भी जुड़े हैं वो सोच रहे होंगे हम बात क्या कर रहे हैं। भाई दोस्तों, अभी भी जो लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, जिन्होंने अभी भी अपना रेडियो सेट ऑन किया है, उन्हें हम कहना चाहेंगे कि आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि अगर आपके किसी दोस्त ने या किसी भी परिचित ने आपको अपने घर बुलाया, चाय पे बुलाया या दावत पे बुलाया, लेकिन वो खुद ही नदारद था, यानी कि खुद ही गायब हो गया, या फिर उसके घर पर ताला लगा आपको मिला। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ आई, अगर कोई ऐसी स्थिति आपके साथ हुई हो, कोई हालात ऐसे बने हो, तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा नंबर तो आप जानते हैं 9681070707। जी हाँ, 9868107070। तो नरेंद्र जोशी जी, नरेंद्र सोनी जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा अभी तक हमारे साथ तो नहीं हुआ, आगे का पता नहीं। बिल्कुल सही है भाई, ऐसा ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन में बड़ी ऐसी परिस्थिति हो जाती है ना।

किशन वजनानी, नीलम, स्वाति और केशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से जुड़ गए हैं। कह रहे हैं कि गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। और आज के जो है शो बड़ा अच्छा लग रहा है और इन्हें ये ट्रैक्स जो हैं, गाने जो हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। धन्यवाद आपका। शुभ संध्या रेडियो मित्र प्रवीण जी, आपको भी शुभ संध्या। सप्रेम नमस्कार, कह रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमें गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। ये हैं ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता। भाई आप सभी गुप्ता परिवार को हमारी तरफ से नमस्कार, शुभकामनाएं। लेकिन उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने अपना एक्सपीरियंस, अगर कोई आपके साथ कोई ऐसा हादसा या कोई स्थिति पेश आई हो तो।

अनिल शर्मा जी सरिता विहार से जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनिल जी कह रहे हैं कि प्रवीण जब किसी ने बुलाया मगर वो नहीं मिला तो गुस्से का पारा आसमान में चढ़ गया, तुरंत फोन लगाकर जो डांट पिलाई उस जनाब ने कारण बताकर सॉरी कहा, तब जाकर मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और बाद में कारण उसके नहीं होने का कारण सही था, यानी कि जिस वजह से वो नहीं था वो जो कारण बताया था वो सही था और मैंने भी जानकारी लेने के बाद उससे सॉरी कहा भाई, और फिर हम दोनों एक साथ डिनर पर बैठे। ऐसा अक्सर हो जाता है, बिल्कुल सही कहा अनिल जी, और ख़ास तौर पर दोस्तों में ऐसा हो जाता है ना, जाने अनजाने तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, भाई दोस्तों में तो आ ही जाता है और प्यार भी बढ़ता है, कहते हैं ना गुस्से में प्यार भी छुपा होता है कि नहीं। तो दोस्तों आप सुनते रहिए प्रोग्राम मैसी मसाला मिक्स, हम हाजिर हो रहे हैं इस प्यारे से गीत के बाद।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

वेलकम फ्रेंड्स, एक बार आपका पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो बगैर देरी के शुरू करते हैं आपके संदेशों का सिलसिला एक बार फिर से। ये हमें संदेश मिला है बंकिम दास का, डिस्ट्रिक्ट बिरहुम से, गांव बिशुपुर, पश्चिम बंगाल से। ये कह रहे हैं कि गुड इवनिंग प्रवीण जी, आज का टॉपिक जो है कि जब किसी ने हमें घर पर बुलाया और वो खुद ही वहाँ पर नहीं मिला, तो भाई वहाँ या फिर वहाँ ताला लगा मिला, अगर हम ऐसा कभी देखें तो हम उसके घर के पास से ही, वहीं से ही उसे फ़ोन मिलाएंगे और कहेंगे भैया कि आज तो हमें कुछ काम पड़ गया है, आज हम आपके पास नहीं आ सकते। ये भी अच्छा तरीका है। लेकिन बंकिम जी, ऐसा भी तो है ना कि भाई इससे उसे शर्मिंदा होने का मौका कैसे मिलेगा, है कि नहीं? जब आप खुद ही आपने बता दिया हम नहीं आ पा रहे, अगर आप वहाँ पहुँच गए, आप कहेंगे भैया हम तो पहुँच गए, आप कहाँ हैं बताइए, तो फिर बात ही अलग होगी, है कि नहीं? चलिए आपकी बात भी सही, अपनी जगह देखते हैं अगला संदेश किसने भेजा है। हीरामणि वर्मा दवरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें संदेश भेज रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे साथ भी वाकया हुआ एक बार मेरे सहकर्मी मित्र ने मुझे घर बुलाया था और मैं उसके जब कमरे में गया, रूम में गया, तो वहाँ देखा ताला लगा हुआ था। मैंने फिर जब उसे फ़ोन किया, पूछा भाई कहाँ हैं, तो वो पता लगा कि एक अन्य स्टाफ साथी को लेकर हॉस्पिटल गए हुए हैं। मैंने फ़ोन से हालचाल पूछा और दूसरे दिन जाकर मुलाकात की। ऐसी स्थिति में मुझे गुस्सा या नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती है। हो सकता है सामने वाले का कुछ विशेष कारण हो, कहीं इसीलिए कुछ कहीं चला गया हो, क्योंकि फ़ोन की सुविधा है आजकल, एक दूसरे को मुलाकात नहीं भी हो लेकिन फ़ोन से जानकारी दे ही सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने हीरामणि जी, बिल्कुल सही कहा। ऐसा होता है कभी कभी, कुछ तो लोग हैं जो हमसे कभी कभी मजाक भी करते हैं, क्योंकि दोस्त होते हैं इसलिए मजाक करना हक समझते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें अचानक कोई काम पड़ जाता है, यानी विशेष परिस्थितियों में वो चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने हीरामणि जी। बहरहाल आपका संदेश अच्छा लगा, जो आप वाक्य आपने शेयर किया, इसके लिए धन्यवाद। सुनते रहिए प्रोग्राम मैसी मसाला मिक्स। शुभ संध्या श्रीमान, विषय जरूरी नहीं मनोरंजन जरूरी है, बहुत अच्छा लग रहा है, यानी प्रोग्राम बहुत बड़ा पसंद आ रहा है। ये है शिव शंकर शर्मा, कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट न्यू दिल्ली से, आपका स्वागत है शिव शंकर जी। हिमांशु भल्ला रोनी से जुड़ गए हैं, कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो होता ही है जब कोई हमें ना बुलाए और बुलाकर खुद गायब हो जाए तो बुरा तो लगता ही है। बिल्कुल सही कहा हिमांशु जी, दिल को कभी कभी दुख भी होता है। मोहम्मद सरफराज आलम जो कि 8 दशना बाजार अररिया बिहार से कह रहे हैं, कुछ पंक्तियां ने लिखकर भेजी हैं। किसी ने घर बुलाया था बड़ी उम्मीद लेकर, मैं सजे अरमान आंखों में लिए फरियाद लेकर मैं दरवाजे पर खड़ा था, यूं धड़कता दिल संभाले ही, मगर वो घर में होकर भी न आई सामने, फिर भी हम चुपचाप, हवा चुपचाप कहती थी जरा कुछ देर ठहर जाओ, मगर तन्हाइयों ने फिर कहा अब लौट भी जाओ। वाह क्या बात है, बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत पंक्तियां लिखकर भेजने के लिए। बहरहाल दोस्तों, कहीं भी जाइएगा, सुनते रहिए प्रोग्राम मैसी मसाला मिक्स, क्योंकि हम हाजिर हो रहे हैं इस प्यारे से मस्ती भरे गीत के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसी मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा जुड़ गए हमारे साथ कस्बा गुन्नौर यूपी से। स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हमारे साथ, इन्हें प्रोग्राम बड़ा अच्छा लग रहा है। इन्होंने हाँ ये हैं जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह जी जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं। ये कह रहे हैं कि एक बार इनके सिस्टर ने इन्हें घर पर बुलाया था, मैं फटाफट साइकिल लेके निकला और जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचा तो देखा वहाँ पर वो थी नहीं, और इतनी जल्दी साइकिल में मेरी पंचर भी हो गया और मुझे बड़ा गुस्सा आया भाई। लेकिन आपको पूछना चाहिए था फ़ोन करके जोगिंदर जी कि क्या हुआ, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई, ऐसे क्या हालात हो गए कि उनको जाना पड़ा। जाना ज़रूर पूछिएगा।

इन्होंने एक हालात बयान किया है कि भुवनेश जी हैं अशोक विहार से। भुवनेश जी कह रहे हैं कि एक बार मैंने और मेरे दोस्त ने एक प्रोग्राम बनाया कहीं जाने का, लेकिन अचानक हमें अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो घर पर आ रही थी और इस वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए। हमने फिर किसी और दिन वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। क्या बात है, ये होता है, ऐसा होता है। लेकिन हमने कुछ और हालात बयान किया था कि, लेकिन आपने कुछ और जवाब दिया। बहरहाल कोई बात नहीं, आपने हालात बताए, इसके लिए धन्यवाद। हमने ये कहा था दोस्तों, कभी आपके किसी दोस्त ने या किसी परिचित ने आपको घर पर बुलाया हो और वो अचानक कहीं चला गया हो, घर पर ताला मिला हो या वो खुद ही नहीं था वहाँ पर, तब आपको कैसा लगा, ये हमने आपसे सवाल पूछा था। बहरहाल आपका मैसेज हमें अच्छा लगा, बुनी जी धन्यवाद।

कैलाश शर्मा गुरुग्राम जुड़ गए हैं। कैलाश जी आपका स्वागत है। ये कह रहे हैं कि मैं आपको एक वाक्य सुनाने चाहता हूँ कि जो मेरे साथ घटित हुआ था। होली का दिन था और होली वाले दिन शाम के समय मेरी पत्नी जो है अपने घर मिलने के लिए जब गई तो हम लोग भी साथ में ससुराल में हमारा एक ही शहर में हमारा घर है गुड़गांव में है। हम वहाँ पर शाम को तैयार होकर जब जाने लगे तो पहुँचने से पहले फ़ोन किया कि भाई हम वहाँ पर आ रहे हैं, भाई वहाँ आ रहे हैं हम। उन्होंने कहा कि हम तो सो रहे हैं भाई, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, हम तो मिलने आ रहे हैं लेकिन उन्होंने मना कर दिया तो बड़ा बुरा लगा। इसके बाद मैं कई महीने तक अपने ससुराल नहीं गया। भाई मेरी पत्नी बोलती रही चलो चलो, तो मैंने जाने से मना कर दिया। लेकिन फिर जो है कि एक दिन हमने सोचा भाई ऐसे गुस्से रहना ठीक नहीं है, बिल्कुल सही सोचा आपने। फिर उन्होंने कहा कि हम फिर उनके घर गए तो मालूम चला कि वास्तव में उनकी तबीयत खराब थी, सच में उनकी तबीयत खराब थी। तो हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो गए। भाई ऐसे कई बार गलतफहमी मन ही मन में हम पाल लेते हैं लेकिन सही बात जानने के बाद गलतफहमी दूर हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने कैलाश शर्मा जी, बिल्कुल सही कहा। कभी कभी खुद सोचते हैं कि भाई इंसान जो हमें बुलाया लेकिन खुद गायब हो गया है, लेकिन ऐसा होता जो है कभी कभी किसी मजबूरी के तहत भी होता है ऐसा। बहरहाल आपने हमें इतना अच्छा खूबसूरत संदेश भेजा, इसके लिए बहुत धन्यवाद।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

एक बार दोस्तों पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। ये हमारे नियमित श्रोता हैं हर्षवर्धन जी पन्ना मध्य प्रदेश से। हर्षवर्धन जी ने एक खूबसूरत संदेश भेजा है, बड़ा काफ़ी लंबा संदेश है। कह रहे हैं प्रवीण शर्मा जी, गुड इवनिंग। आपको आज के टॉपिक में कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसा बहुत ही कम हुआ है मेरे साथ कि मैं जब किसी घर गया और वो मुझे नहीं मिला या उसके घर पर ताला मिला। क्योंकि हम आपस में, हम जो दोस्त हैं आपस में जब जाते हैं तो फ़ोन से संपर्क कर लेते हैं, और आज के ज़माने में अगर हम फ़ोन करके जाएँ तो वो व्यक्ति हमें ज़रूर मिलेगा, ऐसा इनका मानना है। और ऐसा मेरे साथ कहने कभी नहीं हुआ। भाई बिल्कुल सही कहा आपने हर्षवर्धन जी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि अचानक किसी वजह से वो व्यक्ति कहीं चला जा, उसको कहीं जाना पड़ा हो या वो चला गया हो और आपको इतना टाइम ही ना हो उसके पास कि आपको फ़ोन कर सके, या वो भूल गया आपको फ़ोन करना, ऐसा भी होता है कभी कभी। वैसे हर्षवर्धन जी आपने बात कही, बिल्कुल सही कहा कि जब भी हम कभी जाएं, हम कभी जाएं तो फ़ोन करके जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल सही। प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से जुड़ गए हमारे साथ। प्रेमचंद जी कह रहे हैं बड़ी खूबसूरत इन्होंने पंक्तियां लिखकर भेजी हैं। बुजदिल की तरह खुद को रुलाया भी नहीं, दर्द अपना जमाने को बताया भी नहीं, और मैंने तमाम उम्र इंतजार किया उस मुसाफिर के लिए जो कभी लौट के आया भी नहीं। क्या बात है, बहुत खूब प्रेमचंद जी। लेकिन आपने ये जिक्र नहीं किया कि आपको, आपके साथ कभी ऐसा कुछ वाकया पेश आया कि आप किसी के घर गए और वो व्यक्ति ना मिला हो। रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से कह रहे हैं, रंजीत जी कह रहे हैं कि मैं किसी के घर पर जाने से पहले फ़ोन मिला लेता हूं, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा कि कभी मेरे साथ ऐसा हुआ। बिल्कुल सही रंजीत जी, आप बड़े लकी हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल अगला संदेश देखते हैं किसका।

0: मोहम्मद सरफराज आलम जो कि यार दर्शना बाजार अररिया बिहार से कह रहे हैं प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, कह रहे हैं कि इनको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, धन्यवाद। यूं ही जोड़ी रहेगा हमारे साथ, बनी रहेगा हमारे साथ। विवा गोवा, श्याम सुंदर जी गोवा से जुड़ गए हमारे साथ, मगर इन्होंने संदेश कुछ और नहीं लिखा, भाई अगली बार जरूर लिखकर भेजिएगा जो हमने सवाल पूछा आपसे। ऊपरकोट बुलंदशहर से अब्बासी, पूरा अब्बासी परिवार जुड़ गया हमारे साथ, कहने कि हम भी आपको सुन रहे हैं, गीत और गाने प्रोग्राम बड़ा अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहे हैं, धन्यवाद। गुन्नौर से आदिल अली, आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली कह रहे हैं भाई कि इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, उन पंक्तियों में इनका संदेश छुपा हुआ है। ना मोबाइल थे ना एसटीडी फोन थे, हम लखनऊ चले गए थे, जिसके घर गए थे वो हमें नहीं मिले, पूरे दिन दरवाजे पर बैठकर जो सामान लेकर गए थे वो खा रहे थे। क्या बात है, बहुत वो भाई आपका टाइम पास अच्छा हुआ, और जब वो आते, जब वो जो जो साहब जो गए हुए थे वापस लौट कर आए, तो उन्हें बताइएगा कि हमारा क्या हाल हुआ भाई। राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र जुड़ गए हमारे साथ और कह रहे हैं बड़ा सुंदर प्रोग्राम है, धन्यवाद आपका। जोगिंदर सिंह जी कह रहे हैं कि कश्मीर जुड़ गए हमारे साथ, कह रहे हैं कि उस वक्त जो है वो मैं फोन नहीं कर सका था, उस टाइम फोन नहीं था जी। दोस्तों ये कह रहे हैं प्रोग्राम बड़ा पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बहरहाल दोस्तों यूं ही जुड़े रहेंगे हमारे साथ, सुनते रहिए मैसी मसाला मिक्स, क्योंकि हम हाजिर हो रहे हैं इस प्यारे से मस्ती भरे गीत के बाद।
1: ओ वेलकम है जी, अपना ही गराज है। ट्रक्का वाला गीत है।

0: पेट्रोल ते पवाए नी।
1: कोई गल नी, साड़ी गड्डी ते गुडवेल नाल चलती है।
2: दोस्तों आपको प्रोग्राम कैसे लगते हैं, आप अपने सुझाव शिकायत हमें मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ईमेल आईडी नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है feedbackfmrainbow@gmail.com। जी हाँ, feedbackfmrainbow@gmail.com। और सुना ना भूलिए, हर महीने के तीसरे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे प्रोग्राम बिंदास बोल। फिलहाल चल रहा है प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, कहीं मजा आई क्योंकि हम हाजिर हो रहे हैं छोटे से अंतराल के बाद।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। लगभग 10 मिनट के आसपास रह गए दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है मैसी मसाला मिक्स। भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश जुड़ गए हैं, कह रहे हैं कि हम प्रोग्राम आपको सुन रहे हैं, बहुत ही पसंद आ रहा है आपका कार्यक्रम, हम तीर्थ यात्रा में सुन रहे हैं। भाई जय वाह, आप तो महाकाल की नगरी में है, बहुत बहुत आपको साधुवाद, नमस्कार। बस यूं ही जहां भी रहिए सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम मैसी मसाला मिक्स, और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। गुलफाम खान दिल्ली शाहदरा से जुड़ गए हैं, ये कह रहे हैं, भाई गुलफाम जी कह रहे हैं कि आपका आपको आदाब, आपको भी आदाब, कह रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं भाई? कह रहे हैं मैं भी एकदम अच्छा हूं, और मैं मेरा पूरा परिवार आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद आ रहा है प्रोग्राम, गाने अच्छे लग रहे हैं। और ये हैं जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर, उत्तर प्रदेश से। क्या बात है भाई, बहुत खूबसूरत गांव है आपका दुलापुर। ये है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोनी, ऋतिक और बलवीर सिंह जी भी हैं। हरियाणा से रामधारी अवाना जुड़ गए हमारे साथ, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है इनको, बहुत धन्यवाद आपका। शिवम दिल्ली से जुड़ गए हैं, शिवम जी कह रहे हैं भाई एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे किसी दोस्त ने मुझे घर पर बुलाया था और नहीं मिला, तो मैंने उसे एक बार घर पर बुलाया और मैं भी वहां से चला गया था। भाई आपने तो बदला पूरा कर लिया भाई, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए हमारे ख्याल में, क्योंकि भाई ऐसा है, हो सकता है उसकी कोई वजह रही हो आपके दोस्त के जाने की, आपने भाई उसकी वजह तो पूछी होती शिवम जी। कोई बात नहीं शिवम जी, बहरहाल आगे से ऐसा मत कीजिएगा, किसी को दुख देना अच्छी बात नहीं है, और यूं खास तौर पे यानी जानबूझकर दुख देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से जुड़ गए हमारे साथ। ये शांति नगर सोनीपत से जुड़ गए हैं, ये हैं अनीता जी, सुदर्शन जी और सिमरन जी। ये कहने कि पहले लोग मेहमान को भगवान समझते थे, लेकिन अब समय बदल गया है, जहां मन ना हो वहां जाना भी नहीं चाहिए। भाई बिल्कुल सही कहा आपने, वैसे तो जहां कहते हैं बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई जहां इज्जत ना हो वहां नहीं जाना चाहिए इंसान को, लेकिन भाई अगर कोई आपका दोस्त, आपका अजीज, आपका प्यारा, कोई आपसे आपको प्यार से बुलाता है ना, तो फिर तो जाना बनता है कि नहीं। हाँ ये अलग बात है कि वो हमें ना मिला या फिर जानबूझकर गायब हो गया, इसकी वजह हमें जाननी तो चाहिए, है कि नहीं। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं, कह रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरा स्कूल का एक दोस्त बहुत किया करता था, उसको बाहर से आवाज़ दो तो वो घर के बाहर ही नहीं आता था, और मुझे वापस अपने घर आ जाना पड़ता था। और ताले वाली बात से याद आया कि एक बार भाई के दोस्त की शादी में मैं भोपाल गया हुआ था, वहाँ मुझे मेरे साथियों साथी जो ठहरने की जो हमें साथियों को जो ठहरने की जगह दी गई थी, उस पूरे परिसर में शाम को बारात के समय कोई बाहर से ताला लगा के चला गया था और हम सभी अंदर ताले में बंद हो गए थे। ये तो काफ़ी दिलचस्प किस्सा है प्रवीण जी, हम ज़रूर सुनना चाहेंगे फिर कभी। लेकिन ऐसा हुआ तो भाई गलत हुआ, आपको आप बारात में जाना था, जब आप ही गायब हैं, यानी कि जब बाराती गायब है तो बारात का स्वागत कौन करेगा, है कि नहीं। बहरहाल दोस्तों कहीं मत जाइए, क्योंकि हम हाजिर हो रहे हैं प्यारे से गीत के बाद।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें। वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड

0: उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

और दोस्तों फिलहाल आपसे और बातें करने का वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है। फिलहाल हमसे ये कहेंगे कि आपसे फिर होगी मुलाकात, जल्द होगी मुलाकात, रात 8 बजे प्रोग्राम होगा म्यूजिक मस्ती और उसमें हम करेंगे डांस मिलकर इस डांसिंग फ्लोर पर। फिलहाल प्रवीण शर्मा आपसे लेता है, आप फिलहाल आपके ये जो आपका खास प्रोग्राम जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स, इसे लेता है इजाजत। जल्द होगी भेंट, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा ने ओस्लो में सीमित और शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तथा आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाले व्यापक अवसरों का भी उल्लेख किया। बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की राजधानी रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री सुश्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज ने दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उच्च ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजेंसी ने आज दीपक सिंगला और अन्य हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि दीपक सिंगला दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लिए टिकट पर चुनाव लड़ा था। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर ट्यून इन टू कंट्री कार्निवल विद मी मनोज अग्रवाल ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज, एंड वील बी डूइंग टॉकिंग एंड चैटिंग विद यू। बट आफ्टर दिस रियली मेलोडियस ट्रैक कमिंग योर वे, द नेम इज टैडी फ्रैंकी।
5: Let me tell you about a song that I feel explains itself. It's called Daddy Frank, the Guitar Man.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: Welcome back after the break on Country Carnival with me, Manan Thakral, on Akashwani Rainbow 102.6 megahertz. And we are more than halfway far from the timeline so far. And very less time is left with us to wind up the show. But before that, one more message I would like to take up right now. Someone is sending us message from Goa and sending an image of mango as well, as the mango season is on and we are missing you over here. Beautiful voice. Thank you so much, gentlemen. And the name of the listener is Shyam Sundar from Goa. Thank you, Shyam Sundar. Thank you very much for sending this lovely mango. And yes, someday we will eat it together. Someday for sure. And now, I want to play a track which is dedicated for baby. It's the name of the track, For Baby, by John Denver.

वेलकम है फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल इज योर्स, जी हां, आकाशवाणी एफएम 102.6 दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा दोस्तों आप अलग जगह पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं। और अब वक्त हो गया आपके अपने मस्त मस्त प्रोग्राम का, जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती। और आज म्यूजिक मस्ती के साथ आपके साथ डांस करने के लिए इस म्यूजिक फ्लोर पर, जी हाँ, इस डांसिंग फ्लोर पर प्रवीण शर्मा है आपके साथ। तो फिर लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक और करते हैं डांस।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: दोस्तों आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, आप अपने सुझाव शिकायत हमें मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ईमेल आईडी नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है feedbackfmrainbow@gmail.com। जी हाँ, feedbackfmrainbow@gmail.com। और सुनना ना भूलिए हर महीने के तीसरे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे प्रोग्राम बिंदास बोल। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती और हम कर रहे हैं मिलकर डांस। कहीं में जाइए क्योंकि हम हाजिर होने छोटे से अंतराल के बाद। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आकाशवाणी FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं अपना मस्ती भरा प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती और हम कर रहे हैं मिलकर डांस। तो आइए एक बार फिर करते हैं इस डांसिंग फ्लोर पर एक साथ डांस।

जी दोस्तों, इस तरह से डांस करते रहिए हमारे साथ। लेकिन अब फिलहाल प्रवीण शर्मा आपसे लेता है म्यूजिक मजे से इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात। लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अगले प्रोग्राम यानी कि आपकी याद आती रही सर स्टूडियो में उपस्थित है आपकी दोस्त होस्ट प्रियंका त्रिपाठी। तो आप कीजिए उनका स्वागत, और फिलहाल प्रवीण शर्मा आपसे लेता है इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।

जी हाँ, प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना, आपकी आधारती रही, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेडबो पर। देखिए, यादों के सिलसिले की बात ऐसी है ना कि अब जो ये टाइम होता है ना, ये आपका मई और जून, ये भरा ही यादों से होता है। अब अगर आप देखिए तो बाकायदा बच्चों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और उसके बाद आपके घूमने के प्लान्स बनते हैं, फिर उसके बाद कुछ लोग अपने नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, गाँव, मतलब एक जो मेमोरीज आप पिछले साल बना के आते हो ना, उन्हें ताज़ा करने का ये जो टाइम है ना, बेस्ट टाइम है, करेक्ट। घूमने का प्लान बनाते हैं लोग और उसके साथ साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। और गर्मियों का ना, दोपहर में मानती हूँ कि थोड़ी सी रहती है, लेकिन जो शाम होती है ना गर्मियों की, बेहद खूबसूरत होती है। अगर आप अपनों के साथ हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, अपने परिवार के साथ हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, इट विल क्रिएट अ मैजिक, सीरियसली। फिलहाल जो मैजिक क्रिएट करने वाला है ना, वो ये सॉन्ग है फ्रॉम द मूवी तेरे नाम। एंजॉय दिस वन, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। प्रोग्राम आपकी याद आती रही, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका।

जी हाँ, और इन छुट्टियों के समय को भी ना नाम कर दीजिए अपनी फैमिली के। यस, यही एक राइट टाइम होता है, पता है आपको। और जब आप वक्त निकालते हैं ना, तो वक्त निकालने के साथ साथ फिर नई स्टोरीज, नई यादें बनाने का भी टाइम मिल जाता है। और अगर आप ये टाइम नहीं निकाल पा रहे हो ना, सीरियसली बिलीव मी, मतलब फिर ये वक्त आता नहीं है वापस। और जब एक बार हाथ से चीज़ें निकल जाती है ना, एक बार वो मोमेंट्स हाथ से निकल जाते हैं, फिर आप सिर्फ पछताते हैं, क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उनको चाहते हैं कि वो आपके पास रहे, लेकिन वक्त निकल चुका है। क्योंकि वक्त जो है ना, वो रेत की तरह निकलता रहता है और आप सिर्फ देखते रह जाते हैं। द बेटर इज़ कि जो अभी आपके पास टाइम है उसे हाथों से पकड़ के रखिए।

और जितना भी टाइम है वो अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना एंजॉय कीजिए। तो नई मेमोरीज बनाने पर फोकस कीजिए आप, और मैं फोकस कर रही हूँ आपके लिए एक नया गाना ढूंढने के लिए। ढूंढ लिया है मैंने, दिस इज द 90s बेस्ट सॉन्ग फ्रॉम द मोबीताल। आई लव द वॉइस सुखविंदर इन दिस सॉन्ग, अलका याग्निक टू। एंजॉय दिस वन।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाए, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाए, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

फिल्म याद है आपको, ये संघर्ष? यस, प्रीति जिंटा और रक्षा कुमार, आशुतोष राणा, अमेजिंग मूवी। मतलब बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आई थी फिल्म, लोगों को बहुत पसंद आई, बट दिस सॉन्ग ऑफ दिस मूवी इज माइंड ब्लोइंग। और अगर मैं 90s का जिक्र करूँ ना, तो 90s की एक और फिल्म थी अगर आपको याद हो, मनीषा कोइराला, शाहरुख खान, यस, दिल से मूवी। हालांकि दिल से का जो सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दैट इज़ ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से। बट इस फिल्म का एक सॉन्ग ऐसा है जिसमें मलाइका का डांस है, एंड द ट्रेन के ऊपर पूरा डांस चल रहा है, पूरा शूट वहीं पर हुआ है वो। इस सॉन्ग की ना बात ज़रा डिफरेंट है, और इसमें मेरी ना फेवरेट वॉइस भी है, दिस इज सपना एंड ऑफ कोर्स सुखविंदर। एंजॉय दिस वन, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेडियो पर, शायद कुछ मेमोरीज ताज़ा हो जाए आपकी।

तो ये सॉन्ग आपने सुना जो कि गुलजार साहब के कलम से निकला था, और जी हाँ, ये जो इस गीत को जिन्होंने लिखा वो गुलजार साहब ही हैं। मैं उसके हुस्न का सौदाई आयत की तरह, मतलब ऐसे अल्फाज और कौन, मतलब कहाँ ऐसे जादुई जो मैजिकल वर्ड से कहाँ जाएंगे, ऑफ कोर्स गुलजार साहब। और अब मैं जो सॉन्ग आपको सुनाने जा रही हूँ, ये गुप्त फिल्म का सॉन्ग है और आवाज़ इसमें उदित नारायण की है, और जो लिखा है ना जिसने इस गीत को, वो है आनंद बख्शी साहब। मतलब एक मैजिक, सुपर मैजिक, ऑल मैजिक आर हियर। एंजॉय द सॉन्ग। आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर मैं हूँ, आपके साथ प्रियंका, प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

देखिए, ये तो आपने उदित नारायण जी की आवाज़ में सुना, मतलब तारीफ करना एक फीमेल की, वो एक ये एक तरीका ही हुआ तारीफ करने का, ठीक है। अब मैं आपको अभिजीत की आवाज़ में सुनाती हूँ एक अलग डिफरेंट स्टाइल तारीफ करने का। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है, बट यस, लेकिन देख सकते ना 90s के सॉन्ग में वर्सटैलिटी कितनी होती है और क्वालिटी कितनी होती है, उसके साथ साथ नयापन, कुछ नया ट्राई करने का, मतलब हर तरह का फ्लेवर मिल जाएगा आपको 90s के सॉन्ग में। और चूंकि ये प्रोग्राम 9 से 10 90s के गानों के लिए है, तो आपको इसमें सारे फ्लेवर तो मिल रही हैं। एंजॉय दिस वन, अभिजीत की आवाज़ में सॉन्ग।

अच्छा अच्छा दिस इज द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी रक्षक. यस, और इसमें सुनील शेट्टी हैं ऑफ कोर्स, और इसके अंदर करिश्मा कपूर भी है. हालांकि जो सॉन्ग पिक्चराइज हुआ है रवीना टंडन के ऊपर हुआ. अब इसी फ्लेवर में ना एक और सॉन्ग है मेरे पास, आवाज़ डिफरेंट है, ये तो अभिजीत की थी, अब कुमार शानू की आवाज़ आएगी. लेकिन

0: 11 बजे मिलना मत भूलिएगा ये सी रेडियो स्टेशन पर आकाशवाणी एफएम रेडबो पर रंगे महफिल के साथ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर।
2: नमस्कार, तो याद रखें आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर हरित शिपिंग तक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
3: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
2: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
3: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, AI, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
2: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया।
3: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
2: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजम ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये एक महत्वपूर्ण पहल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मिलेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी इस वर्ष निर्यात $863 दर्ज किया गया। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस निर्णय की घोषणा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटे में CBI ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: वेलकम बैक आफ्टर दैट लिटिल स्वीट शॉर्ट ब्रेक एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टार ऑफ द शो टुडे, इनफैक्ट द ग्लोबल स्टार टेलर स्विफ्ट ऑन द शो रेनबो शोकेस विद मी मनु टकराल ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़। टॉकिंग अबाउट द आर्टिस्ट स्विफ्ट, यस टेलर स्विफ्ट साइंड द बिग Machine Records in 2005 and debuted as a country singer in the albums Taylor Swift 2006 and Fearless in 2008. The singer's singles Teardrop of My Guitar and Love Story and You Belong With Me found crossover success on country and pop radio formats. Album Fearless won Album of the Year at Grammys and making her one of the youngest winners ever. Wow. What an achievement at a young age by the superstar. Coming your way, another masterpiece by the star, and it says, I can fix.

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रोग्राम चल रहा रंग महफिल। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेडबो पर। रंग महफिल, रंग महफिल मतलब रंग गजलों के, रंग अल्फाजों के, रंग लफ्जों के, रंग कुछ यादों के और रंग कुछ खूबसूरत, बेहद खूबसूरत आपसे जुड़ी हुई, हमसे जुड़ी हुई बेहतर कहानियों की, कुछ मुलाकातों की, कुछ नज़रों की, कुछ अधूरी किस्सों की, कुछ पूरी कहानियों की। फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल है मेरे पास, जॉगर्स मूवी का है ये, जगजीत साहब की आवाज़ है। और इसमें पिक्चर में तो थोड़ा सा अधूरापन रहा, लेकिन इस गज़ल में कुछ भी अधूरा नहीं, बेहद खूबसूरत। आपके अपने प्रोग्राम रंग महफिल में

सफ़रे मोहब्बत, या फिर ये कहिए कि जो इश्क का सफ़र है, मुश्किल तो है। और जगजीत साहब की इस गज़ल में जो उनकी आवाज़ में है, सही मैंने उस पर कहते ना एकदम क्लियर कर देना, वो कर दिया। लेकिन एक और भी पहलू है इश्क का, मोहब्बत का। एक तो ये कि सफ़र बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार सफ़र शुरू हो जाए तो दिल कई बार बार बार उसी सफ़र के पड़ाव पर, मकाम पर पहुंचता ही रहता है, भले ही वो सफ़र उस मुसाफिर से किनारा कर ले, लेकिन मुसाफिर उस सफ़र का हो जाता है। फिर रास्ते बदलते रहें या छूटते रहें, मुसाफिर बार बार उसी सफ़र पर, उसी रास्ते पर पहुंचता रहता है।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग, या ये कहिए कि कुछ ख़ास लोग ऐसे होते हैं जो कुछ इस तरीके से होते हैं कि भले ही उनसे मिले हुए, उनसे बात किए हुए, उन्हें देखे हुए ज़माने हो जाए, पर वो रहते ज़िंदगी में ही हैं, जाते नहीं कहीं, इसीलिए उन्हें भूलना बड़ा मुश्किल होता है। जिन्होंने ये जिया है वो जानते हैं, और जिन्होंने नहीं जिया उनके लिए गज़ल है रफ़ी साहब की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी चंबल की कसम। बेहद खूबसूरत गज़ल, इन्जॉय दिस वन।

कैसे करूं बयां उसका शबाब हुस्न, कभी उसे सोचता हूं कभी महताब को। कैसे करूं बयां उसका शबाब हुस्न, कभी उसे सोचता हूं कभी महताब को। जो भी देखता है उसे होश खो देता है, इसलिए रखती है वो रुख पे हिजाब को। उसकी निगाहें किसी मैखाने से कम नहीं, उसकी निगाहें किसी मैखाने से कम नहीं। कोई इल्ज़ाम नहीं लगने देती शराब को, हर एक पन्ने पे उसका ही जिक्र है, हर एक पन्ने पर उसका ही जिक्र है। एहतियातन छुपा रखा है मैंने किताब को। मेरी दुआएं कबूल हुई हैं शायद, मेरी दुआएं कबूल हुई हैं शायद। कर दिया खुदा ने बराबर हिसाब को, न जाने कब आ जाए वो गरीब खाने पे। हम भी भिजाए रखते हैं राहों में गुलाब को, मैं भूल भी जाऊं वो याद रखती है, मैं भूल भी जाऊं वो याद रखती है अपने सवाल और मेरे हर जवाब को। रग रग में बस गई है एहसास बन कर वो, अब कैसे हद में रखूं दिले बेताब को। आसमां और जमी कहाँ मिलते हैं नीरज, तुम हकीकत समझ बैठे हो ख्वाब को। बेहद खूबसूरत लाइन्स, शायर का नाम आपने सुन लिया। और अब यह गजल सुनिए जगजीत साहब की आवाज़ में।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: चिली रंगे महफिल का सफर फिलहाल यहीं तक, और ख्याल रखिएगा अपना, अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। छोड़े जा रहे हैं आपको एक खूबसूरत गजल के साथ, ख्याल रखिएगा अपना।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मत्स्य उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। वे श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी कई बड़े सुधारों की समीक्षा की। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों को तेज किया जाएगा ताकि कृषि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाया जा सके। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्ले ऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:05 और 41 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आर शो। मैं हूं एसएम शरीफ, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए

0: मिलकर प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेल्ली से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री नड्डा इस समय स्विट्जरलैंड में हैं, जहां 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कल से शुरू हुई और इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी कई बड़े सुधारों की समीक्षा की। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों को तेज किया जाएगा, ताकि कृषि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाया जा सके। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:05 और 45 सेकंड हुए हैं, शुरू करते हैं प्रोग्राम।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: सगरे गाँव की गोरिया
1: कुछ मैं छोड़ रहा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की

0: प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री नड्डा इस समय स्विट्जरलैंड में हैं, जहां 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कल से शुरू हुई और इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है। PIB ने कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। PIB ने लोगों से फर्जी दावों से सावधान रहने और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दो बजकर 5 मिनट और 35 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम बुलाए ना बने।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। श्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी

0: संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद वह कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के हालिया प्रकोप पर कड़ी निगरानी रख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति की समीक्षा की है और एहतियाती सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शुरू कर दिए हैं। इनमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को लेकर संसदीय परामर्शदाती समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि बैठक में एक व्यापक कार्य योजना पर चर्चा हुई। इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, मानव संसाधन प्रशिक्षण, राज्यों के अनुसार विशेष पर्यटन सर्किट, बहुराज्य पर्यटन पैकेज और पूर्वोत्तर के लिए एकीकृत पर्यटन ब्रांड तैयार करने जैसे विषय शामिल रहे। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के पालघर जिले के धनवारी में कई ट्रक और एक कंटेनर के बीच हुई टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक में 100 से अधिक लोग सवार थे। घायलों का इलाज कासा उपचला अस्पताल में चल रहा है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया।
2: दिस इज आकाशवाणी।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ ऐसे दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपको बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आधार कार्ड है ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: कोयल सी तेरी बोली,
8: हाय
7: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
8: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
7: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
8: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
9: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: जी, खड़े खड़े क्या देख रहे हैं?
1: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
0: तो चांद को ही देखिए ना।
1: मगर वो सांस नहीं लेता।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय

0: होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जाँच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्ले ऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज लू की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी लू चलने की आशंका है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी गर्म और उमस भरे मौसम की भविष्यवाणी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी

0: धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, एसएमएस, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा

0: मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड्स, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 118 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज लू चलने की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।